नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 21वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 12 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम DTH और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। और इस समय सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारवां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसका विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन शामिल होंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में रात्रि भोज में वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका स्वागत किया। वहीं बुरंडी के राष्ट्रपति एविरिस्ते नादियनशिमिए अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी

0: करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
0: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। ये निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चिंतन। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। ये था आज का चिंतन, और अब भक्ति संगीत।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 309। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना का भाग 12। कलाकार गायिका डॉ. शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। सुबह 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के, ये होगा युगल गीतों का कार्यक्रम। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8 बजे। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी कार्यक्रम, आलेख और स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को दिन में 2 बजे पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:30 और सुबह 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित होगा संगीतकार जयकिशन पर, आलेख और स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। पुनः प्रसारण रात्रि 9:30। आज दिन में 11 बजे सुनिए चित्रपट संगीत, 11:30 पर मैटिनी शो, पत्रकार लेखक राजेश विक्रांत से यूनुस खान की बातचीत, संपादन सहायक प्रस्तुति जुबैर खान की। दिन में 12 बजे सुनिए हिंदी में समाचार, 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। सुरीला सफर तय कीजिए विविध भारती के साथ दिन में 1 बजे, जिसमें श्रोता हमसे फेसबुक कमेंट्स द्वारा जुड़ सकते हैं। दोपहर समाचार दिन में 2:15 पर और सदाबहार नगमे 2:30 पर। मन चाहे गीतों को लेकर आज हमारे साथ आप सुनिए कार्यक्रम दिन में 3 बजे और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। नाट्य तरंग कार्यक्रम का समय होगा दिन में 3:30 पर। आज आप सुनेंगे नाटक कल आना कल, एच तुंडीराज के कन्नड़ नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक HV रामचंद्र राव, निर्देशन निर्मला अग्रवाल। दोपहर बाद 4 बजे सुनिए पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3। आज आप सुनेंगे प्रस्तुति तेजश्री कामले।

तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक। इसी बीच 6 बजे सुनिए हिंदी में समाचार। शाम 6:30 पर झरोखा के अंतर्गत दी जाएगी जानकारी आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता, शाम 7 बजे विशेष जयमाला, गीतकार हसरत जयपुरी, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए जिज्ञासा, हवा महल में सुनो कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी, कहानी का नाम पिंजर का भाग 2, वाचन ममता सिंह, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की, कार्यक्रम का समय रात्रि 8 बजे, चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 पर और समाचार संध्या 8:45 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9 बजे और 10 बजे होगा छाया गीत, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात और रात 11 बजे मैटिनी शो। ये थी जानकारी आज दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की और अब ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज सुनिए रामचरित मानस का भाग 309 लंका कांड।

अंगद की बात सुन रावण को क्रोध हो आता है। सामने खड़ा बंदर बाली पुत्र है ये जानकर रावण सकुचाया, किंतु उसे कुलनाशक कहकर उसकी भर्त्सना करते हुए बोला, तू तो अपने कुलरूपी बांस के लिए अग्नि रूप पैदा हुआ है, अपने को एक तपस्वी का दूध बताते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तेरा पिता कहाँ है और कैसा है वो? अंगद उत्तर देते हैं, कुछ दिनों बाद तुम स्वयं उनके पास जाकर उनका कुशलक्षेम पूछ लेना। सच है मैं कुल नाशक हूं और तुम कुल रक्षक हो, ऐसी बात तो अंधे और बधिर भी नहीं करते। तुम तो 10 शीश और 20 आंखों वाले हो। अंगद के वचन सुनकर रावण का क्रोध उबल पड़ता है, किंतु उसे अपने नीतिवान और धर्मपालक होने का भ्रम भी है, अतः अपने क्रोध पर काबू पाने का बड़प्पन दिखाता है। अंगद व्यंग्य करते हैं, तुम्हारी धर्मशीलता के बारे में मैंने भी सुना है। तुम्हारी धर्मशीलता का उदाहरण है कि तुमने पराई स्त्री का हरण कर लिया है। अपनी बहन के नाक कान कटे देख धर्म का विचार करके ही तो तुमने क्षमा कर दिया था। बड़े भाग हैं मेरे जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की आज 12वीं कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत है। मित्रों, इन दिनों जारी है श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, और किराना घराने की गायकी पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शकुंतला भरणे जी। शकुंतला जी, पिछली कड़ी में हम विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर जी की जो आवाज में मिठास है और जो कोमलता है उनके स्वरों में, उसकी बात हो रही थी। उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
2: आज मुझे लगता है किराना घराने की आवाज की जो मिठास रहती है, सुरों की कोमलता, ये दोनों चीजें हमारे घराने की एक पहचान है। किराना घराने में लय से अधिक
1: जी,
2: शुरू में मैंने बोला है, लय से अधिक स्वर की शुद्धता और सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
1: जी जी।
2: मधुर और कोमल स्वर का लगाव जो है हमारा, प्रत्येक स्वर को अत्यंत कोमल, मधुर और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है
1: जी,
2: जिससे गायन अत्यंत श्रवणीय बनता है। स्वर्ग का दीर्घ विस्तार, एक एक स्वर पर हम ऐसा ठहराव है, एक एक स्वर को हम ठहराव के साथ गाकर उसकी पूरी अनुगुंज और गहराई को उभारते रहते हैं। सूक्ष्म स्वरों का प्रयोग, स्वरों के बीच की सूक्ष्म श्रुतियां अत्यंत बारीकी से उपयोग किया जाता है।
1: अच्छा।
2: और जिससे गायकी में हमारे निखार आता है, हमारे यानी किराना घराने की गायकी को क्रेडिट मैं मेरे लिए नहीं लेती, घराना के लिए। मींड और आंदोलन का जो सुंदर प्रयोग हम करते हैं, स्वरों के एक दूसरे से सहजता और निरंतरता के साथ जोड़ने के लिए मींड और आंदोलन का प्रभावी उपयोग किया जाता है। भावपूर्ण अभिव्यक्ति केवल स्वर की शुद्धता ही नहीं, बल्कि उसके माध्यम से राग का भाव भी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है।
1: अच्छा।
2: अन्य घरानों से भिन्न क्या है, ऐसा अगर आप पूछे, अन्य घरानों की तुलना में किराना घराने की विशिष्टता उसकी आवाज की स्वाभाविक मिठास, सुरों की कोमलता तथा प्रत्येक स्वर को अत्यंत भावपूर्ण, धैर्यपूर्ण और मधुर ढंग से प्रस्तुत करने की शैली में निहित है। यही स्वर माधुर्य इस घराने को अन्य घरानों से अलग पहचान प्रदान करता है
1: जी।
2: मिठास जो आती है वो गा के स्वर को हम जैसा बनाते हैं, तालीम लेते हैं, वहां शुरू होता है। अगर आपकी आवाज ओरिजिनल गिफ्टेड मिठास है उनकी आवाज में, तो और भी हीराबाई जैसा आवाज और मिठास और माधुर्य बन जाता है। आज अगर आपकी इजाजत हो तो किराना घराने के गायकों ने कुछ नाट्य गीत भी गाए हैं।
1: मैं वही कहने वाला था कि बहुत से किराना घराने के मूर्धन्य गायक कलाकार महाराष्ट्र में और कर्नाटक में हुए हैं।
2: हाँ,
1: और महाराष्ट्र में

0: जो एक संगीत नाटक की परंपरा रही है, तो वो जो स्वर्णिम युग था संगीत नाटकों का,
1: ब्यूटीफुल,
0: उन दिनों में बहुत से किराना घराना के गायकों ने संगीत नाटकों में,
1: हीरा भाई बड़ोदेकर, सवाई गंधर्व, माणिक वर्मा,
0: इन सब के ये स्वरों में जो है नाटक गीत हम सुनते हैं,
1: बहुत ही अच्छा नाटक गीत,
0: कुछ नाटक गीतों की हम झलक सुने ऐसा मैं चाह रहा था।
1: हीरा भाई बड़ोदेकर प्रत्यक्ष स्टेज पर बहुत ही अच्छा नाट्य संगीत गाती थी, लेकिन बहुत सारे नाट्य गीत उनके रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन हमारी गुरुजी बोलती थी बहुत मीठा गाती थी वो।
0: जी,
1: उनका एक नाट्य गीत हम सुनेंगे।

0: विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर जी के आवाज में नाट्यगीत की झलक हम सुन रहे थे। इसके साथ साथ शकुंतला जी, क्यों ना माणिक वर्मा के गायन में बहुत से नाट्यगीत है, उसमें से किसी एक नाट्यगीत को एक उदाहरण स्वरूप हम यहाँ अगर सुनवाए अपने श्रोताओं को।
1: मान अपमान नाटक
0: जी
1: का जो खरा तो प्रेमा
0: जी जी,
1: थोड़ा सा मिश्रमांड वगैरह है उसमें,
0: हाँ।
1: वो बहुत ही अच्छा गाई है वो,
0: तो सुनते हैं इस नाट्य गीत की एक झलक।
1: हाँ।

0: मान अपमान नाटक के इस नाट्य गीत की झलक अपने श्रोताओं को हमने सुनवाई, और इसे सुनते हुए जो गीत के सुर जो है मन में, वो हृदयनाथ मंगेशकर जी का कंपोजिशन है लेकिन फिल्म से।
1: कौन सा भी गीत होने दो, उसको एक उसकी लोक संगीत की बैठक होती है। वैसा नाट्य गीत भी हम वे अलग अलग शास्त्रीय संगीत से, लोक संगीत से लिया है। ये भी जो केसरिया बालम ये जो गाना है वो राजस्थानी लोकगीत है ओरिजिनली।
0: जी बिल्कुल।
1: और उसको लेकिन
0: और ये मांड भी जो है वहाँ राजस्थानी लोक संगीत से
1: आया है,
0: आया हुआ है। तो चलिए सुनते हैं लेकिन फिल्म से ये रचना।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं।
1: हाँ जी हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। श्रोताओं, आज संगीत की दुनिया की बात करेंगे। संगीत की दुनिया में कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर बार सुनने पर दिल को उतनी ही खूबसूरती से छू जाती हैं। ऐसी ही यादगार धुनों के रचनाकार थे जयकिशन। शंकर जयकिशन की जोड़ी तो कमाल की थी ही, उनके बारे में सभी ने सुना भी है और आज उनकी यानी कि जयकिशन जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए सुनते हैं उनके संगीत से सजे कुछ सदाबहार गीत। सदाबहार नहीं, हम कहेंगे कुछ भूले बिसरे गीत जो कम सुनने में आते हैं मगर दिल को छू जाते हैं। तो आइए आगाज करते हैं बरसात फिल्म के उस गीत के साथ जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में ये गीत फिल्म आवारा से। शैलेंद्र ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन की धुन।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, आपको बता दें, शंकर जयकिशन ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार और सदाबहार धुनें दी। उनकी संगीत शैली में शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोकप्रिय संगीत का भी खूबसूरत मेल था। आइए अब आपको सुनवाते हैं अजी बस शुक्रिया, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फारूक कैसर ने इसे लिखा है, रोशन का संगीत।

ये था रोशन का संगीतबद्ध किया गीत। आगे और भी ऐसे गीत आपको सुनवाएंगे जिसकी धुनें बनाई हैं शंकर जयकिशन ने। इस समय भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं काली घटा फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। हसरत जयपुरी ने इसके बोल लिखे हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: हमारे
1: आमंत्रित कलाकार हैं
2: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
2: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
1: सुबह और शाम
2: 6:45 पर
1: सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए हम आपको सुनवाते हैं शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया ये अगला गीत। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, तलत महमूद ने स्वर दिया है, फिल्म का नाम दाग।

आ फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में, शैलेंद्र ने लिखा था, शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई थी। और अब आइए आपको सुनवाते हैं राजहट इस फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन की धुन।

आज के भूले बिसर गीत इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शंकर जयकिशन इस जोड़ी के संगीतबद्ध किए हुए कुछ नगमे। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होगा कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के, कीजिए कुछ पलों का इंतजार।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। युगल गीतों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आगाज करते हैं कार्यक्रम का किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम कल आज और कल। शैली और शैलेंद्र ने इसे लिखा है और शंकर जयकिशन की धुन।
1: हम जब होंगे 60 साल के।

लता मंगेशकर और मुकेश का गाया गीत अब सुनिए संगम। इस फिल्म से शैलेंद्र की रचना है, शंकर जयकिशन की धुन।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं आंख मिचोली इस फिल्म का गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश के स्वरों में ये गीत उजाला फिल्म से। शैलेंद्र की रचना है, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में चोरी चोरी फिल्म का गीत। इस गीत को शब्दबद्ध किया है शैलेंद्र ने और सुरों में ढाला है शंकर जयकिशन ने।

हमराही फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। आज के कार्यक्रम में आपने सुने शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध किए हुए कुछ नगमे। इसी के साथ हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम से दीजिए नेहा अगरकर देसाई को आज्ञा। कल मिलेंगे फिर इस कार्यक्रम में, कीजिए तब तक इंतज़ार और अब दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का से ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में

0: शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते निराइशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटकेओ भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
2: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
2: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। इसमें भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
0: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: ब्रिक्स वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनली ट्रेड।
4: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
3: वसुदेव कुटुंबकम।
0: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
8: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण

0: माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुंच बढ़ाने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांगी रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरेम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन की मोकी में ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी पुतिन फिजिशकियन। अमर उजाला की सुर्खी है, जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मोहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार 4th और कुल 6th खिताब पर नजरे। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है, भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल

नगर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

त्रिवेणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, अकेलापन किसी के जीवन के लिए वरदान हो सकता है तो कोई इसे अभिशाप समझ सकता है। अकेलेपन से किसी को भय होता है तो कोई इसे अपना सबसे अच्छा साथी मानता है। अकेलेपन ने किसी के जीवन को बहुत तेरे अर्थ दिए हैं, सार्थकता प्रदान की है तो किसी के जीवन में अकेलेपन ने मनोरोगों की बाढ़ ला दी है। अकेलेपन का अर्थ है किसी का साथ न होना या एकांत में होना। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य सबके साथ रहना ही पसंद करता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें अकेले ही करने भी पड़ते हैं। हमारे अंदर की क्षमता, प्रतिभा और रचनात्मकता का विकास हमारे स्वयं के पुरुषार्थ से होता है और इसके लिए हमें एकांत की आवश्यकता होती है। एकांत में व्यक्ति अपने अकेलेपन को सकारात्मक ऊर्जा से वर्षों तक साधते हैं तो वे कामयाबी तक पहुंच पाते हैं, और यदि वे नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाते हैं तो मनोरोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। जिंदगी के सफर में भी हमें अकेले ही आगे बढ़ना होता है। इस सफर में कोई साथ दे दे तो अच्छा, और ना दे तब भी प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं को ही प्रस्तुत होना पड़ता है।

अकेलेपन से मन कभी कभी अशांत होता है, बेचैनी होती है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मन को समझा बुझाकर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दुनिया में जो भी उपलब्धियां हैं, सिद्धियां हैं, वे भले ही संसार के सम्मुख हों, लोगों से घिरी हों, लोग उनका उपभोग करते हों, लेकिन उनकी उत्पत्ति एकांत के माहौल में ही होती है। एकांत में ही उनका प्रकटीकरण होता है, एकांत में ही वे अपना साकार रूप लेती हैं। इसलिए चाहे हृदय को छू लेने वाली कविता हो या प्रेरणास्पद कहानी, जीवन को आसान बनाने वाले विशिष्ट आविष्कार हो या बहुआयामी अर्थ प्रदान करने वाले चित्र, एकांत के माध्यम से ही मानवता को ये अनुपम उपहार प्राप्त होते हैं। इसलिए अकेलेपन से कभी घबराएं नहीं, बल्कि इसे हमेशा सकारात्मकता के साथ प्रस्तुत करें।

आज से 10 साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था हजारों लाखों फ्रेंड्स के बीच भी कोई अकेला हो सकता है, पर सोशल मीडिया के साथ हम इसे बखूबी समझने लगे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर हजारों फ्रेंड्स और फॉलोवर होना और बात है, जबकि वास्तविक जीवन में कोई सचमुच अपना होना दूसरी बात।

ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि सोशल साइट की धूम के चलते दुनिया भर में पल भर में संबंध बनाना आसान लग सकता है। हम अपने दोस्तों को संदेश, ईमेल भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, पर इन सब में कोई ऐसा अपना ढूंढना जो आपको आपकी अकेलेपन से निकाल सके, काफी मुश्किल होता है। इतनी सारी सोशल साइट्स के बावजूद अकेलापन अभी भी एक गंभीर समस्या है। कोई व्यक्ति अपने साथी, अपने बच्चों, माता पिता, भाई बहन के साथ रहते हुए भी अकेला हो सकता है, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है। स्वयं पर विश्वास रखना बेहद जरूरी है। सोशल साइट्स नहीं, अपने सचमुच के दोस्तों और अपनों से अपने विचार मिलकर बांटें, हंसें और हंसाएं। परिजनों, माता पिता, पार्टनर, बच्चों, भाई बहन और दोस्तों से हमेशा जुड़े रहें, उनके काम आते रहें, उनकी समस्या का समाधान जितना हो सके हमें करते रहना चाहिए और अपनी समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराते रहना चाहिए। यानी जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बेहद जरूरी है, इसलिए अगर आप मदद लेते हैं तो दूसरों के मददगार भी बने। ये बेहद जरूरी है आज के इस समय में, जब हजारों की भीड़ होते हुए भी हम कहीं न कहीं अकेलापन, तन्हाइयां महसूस करते हैं।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।

0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8:30 हो रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करेंगे योद्धा फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसे गाया है बी प्राक ने। मनोज मुंतशिर की रचना है, तनिष्क बागची ने इसकी धुन बनाई है।

शान, श्रेया घोषाल और शबाब सबरी की आवाजों में सुनिए जय हो फिल्म का ये गीत। समीर और अनजान ने इसे लिखा है और धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर.

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से और आइए अब आपको सुनवाते हैं यारियां। इस फिल्म का गीत मोहम्मद इरफान गजेंद्र वर्मा की आवाजों में, गीत संगीत मिथुन का।

0: साथियों, यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस आज है। ये हर वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच सहयोग, ज्ञान, तकनीक और अनुभवों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। दक्षिण दक्षिण सहयोग के माध्यम से देश गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसी चुनौतियों से मिलकर निपटने का प्रयास करते हैं। ये दिवस वैश्विक एकजुटता और साझी प्रगति का संदेश देता है।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और प्रोग्राम है चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं हीरोपंती फिल्म का गीत, मोहित चौहान की आवाज में कौसर मुनीर की रचना, साजिद वाजिद का संगीत।

विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ये हर वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के प्रति जागरूक करना और आपात स्थिति में सही समय पर मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना है। दुर्घटना, चोट, जलने या अचानक तबीयत बिगड़ने पर दी गई तत्काल और उचित प्राथमिक चिकित्सा कई बार जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि श्रोताओं आप भी इस बात को लेकर जागरूक नहीं है तो आप भी सीखें और अपने आसपास रहने वालों को भी बताएं, इस बात की जानकारी दें कि प्राथमिक उपचार किस तरह किए जाते हैं जो किसी भी आपातकालीन या इमरजेंसी की स्थिति में काम आते हैं और ये किसी की जान बचा सकते हैं। आइए अब सुनते हैं अगला गीत। तमंचे इस फिल्म से मोहित चौहान की आवाज़ है, गीत और संगीत कृष्णा का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: और अब सुनवाते हैं हम टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। कुमार ने इसे लिखा है, शरीफ तोशी का संगीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आइए अब आपको सुनवाते हैं हंसी तो फंसी। इस फिल्म का गीत चिन्मय श्रीपाद, शेखर रावजियानी की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है और विशाल शेखर का संगीत।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरिजीत सिंह का गाया ये गीत सुनिए जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने। सोहेल सेन की ने इसके गीत को सुरों में ढाला है और फिल्म का नाम गुंडे।

बैंग बैंग इस फिल्म का गीत अब सुनिए विशाल ददलानी की आवाज में, और गीत और संगीत, गीत है विशाल ददलानी का, संगीत विशाल शेखर का।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

हिंदी फिल्म संगीत के समुद्र में गोता लगाएं तो हाथ आते हैं कई अनमोल मोती। आज हम कुछ ऐसे बेमिसाल चमकीले मोती लेकर आए हैं जिन्हें तराशा है संगीतकार शंकर जयकिशन ने। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन हैं हमारे आज के फनकार।

दरअसल शंकर जय किशन की जोड़ी में से किसी एक को भी अलग करना मुमकिन नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से उन रचनाओं को सुनेंगे जिन्हें संगीतकार जय किशन ने तैयार किया था। हालांकि शंकर अगर आसमान है तो जय किशन है।

ये गीत संगीतकार जयकिशन को बड़ा ही प्रिय था। दरअसल जयकिशन का पूरा नाम था जयकिशन दया भाई पांचाल। गुजरात के बाजदा नामक गांव में जयकिशन जी का जन्म हुआ था 4 नवंबर सन 1932 में। जयकिशन जैसे संगीत रचने के लिए ही बने थे। उनके एक भाई बलवंत गांव के एक भजन मंडली में हारमोनियम बजाया करते थे। बस यहीं से जयकिशन की रुचि संगीत में जागी। वे उल्टे हाथ से हारमोनियम बजाते

Nih lagi. आरंभिक संगीत शिक्षा गांव के ही संगीत विशारद वाड़ी लाल जी से हुई, फिर प्रेम शंकर नायक से उन्होंने संगीत की तालीम ली।

0: का नहीं, अब किसी तो किसी पर भरोसा नहीं, अब कहाँ जाए हम।
1: रोजी रोटी की तलाश में अपने संबंधियों की मदद से जयकिशन मुंबई आए और शिवडी स्थित एक कपड़ा मिल में नौकरी करने लगे। लेकिन दिल में एक बेचैनी थी, एक जुनून था जो उन्हें हारमोनियम की धुन की ओर खींचता था।

नियति का खेल देखिए कि कुछ ही समय के बाद जय किशन पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। यहीं उनकी मुलाकात शंकर से हुई और बाद में वही उनके अभिन्न सहयोगी बने और फिर मशहूर हुई ये जोड़ी शंकर जय किशन के नाम से। शंकर उन दिनों संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के यहाँ तबला वादक के रूप में काम करते थे।

रोचक बात यह है कि राज कपूर ने जब आरके प्रोडक्शंस की स्थापना की और फिल्म आग बनाई तो उसके संगीतकार बने राम गांगुली। संगीतकार शंकर जयकिशन राम गांगुली के ऑर्केस्ट्रा में शामिल थे, लेकिन इसके बाद जब फिल्म बरसात आई तो यहां से शुरू हुई शंकर जयकिशन की सुरीली स्वर यात्रा।

फिल्म बरसात के बाद तो एक पूरी टीम ही बन गई। गीतकार बने हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन और कंपनी राज कपूर की आरके प्रोडक्शंस। आइए जरा इस टीम की कुछ रचनाओं पर गौर

सुनने वालों को ये सचमुच एक पहेली की तरह लगता होगा कि शंकर जयकिशन की जोड़ी में से कौन से गाने शंकर ने बनाए और कौन से कंपोज किए जयकिशन ने। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार आपकी ये रेडियो सखी अब आपको कुछ ऐसे गीत सुनवा रही है जिनकी धुन संगीतकार जयकिशन ने तैयार की थी।

दरअसल जयकिशन रूमानी तबीयत के शख्स थे, इसलिए नर्म नाजुक धुने बनाने में उनका कोई सानी नहीं था। अब फिल्म लव मैरिज के इस गीत की नजाकत देखिए।

जयकिशन ने प्रेम विवाह किया था। वे बड़े संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। मोहब्बत भरे तरानों को तैयार करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। धुने बनाने के साथ साथ जयकिशन शायरी और कविता के भी बड़े शौकीन थे। शायद इसीलिए शायरी और कविता की संवेदनशीलता और नाजुकी उनके मोहब्बत भरे नगमों की धुनों में खूब खूब झलकती है।

फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत, जिसे जय किशन ने अहमदाबाद की कई खिड़कियों वाली ऐतिहासिक इमारत को देखकर हसरत जयपुरी से लिखने को कहा था।

दोस्तों, ये जिक्र उन गीतों का है जिनकी धुन संगीतकार जयकिशन ने बनाई थी फिल्म दिल अपना और प्रीति पराई।

दरअसल अपनी संगीत यात्रा में शंकर जयकिशन एक दूसरे के पूरक थे। उन्हें अलग करके देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गीतों की रचना प्रक्रिया की दृष्टि से ये जानना बड़ा रोचक लगता है कि कौन से गीत कंपोज किए शंकर ने और कौन से जयकिशन ने।

दोस्तों, संगीतकार जय किशन एक सीधे सादे इंसान थे, लेकिन थे बड़े मेहनती। वे खाने के बड़े शौकीन थे, न सिर्फ खाने के शौकीन बल्कि वो खुद बहुत अच्छा खाना भी पकाते थे। दोस्तों के साथ बैठकें जमाना उन्हें बड़ा पसंद था। जय किशन अलग सुबह उठकर अपने गानों की धुनें बनाने में लग जाते थे।

दोस्तों, संगीतकार शंकर जयकिशन हिंदी फिल्म संगीत संसार के सुर समुद्र थे। उनका काम सचमुच बड़ा व्यापक रहा है। अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों में संगीत देने के बावजूद शंकर जयकिशन की जोड़ी ने सबसे हिट नगमे दिए हैं। यहाँ तक कि एक दौर में उनकी लगभग हर फिल्म के नगमे गली गली में गूंजा करते थे और लोगों के दिलों पर राज करते थे।

सन 1971 में 39 वर्ष की छोटी आयु में संगीतकार जय किशन ने इस संसार को अलविदा कह दिया।

संगीत का जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन को हमने याद किया आज के फनकार में। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस प्रोग्राम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
4: हाँ जी।
3: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
5: हाँ जी, हाँ।
3: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
5: नहीं नहीं, अभी नहीं।
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
6: कुछ लिखा
3: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
5: करो वादा,
4: हाँ जी वादा।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
8: गीतों भरी कहानी में आज सुनिए अरुण शेखर की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में, आवाज ही पहचान है।

आज जब दूसरी पाली में माया क्लिनिक के लिए निकली तो उसका मूड कुछ ऑफ था, कारण कि आज फिर उसके ब्याह को लेकर घर में बकझक हो गई थी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर माया दुनिया

अभी बंधन में बंधना नहीं चाहती थी और ऐसा भी नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई प्रवेश कर गया था। वो भी आज की नई सोच के मुताबिक पहले सेटल हो जाना चाहती थी। आज शायद ही कोई लड़की चाहती है कि वो अपने खर्चों के लिए अपने पति पर निर्भर रहे, उसे अपनी हर जरूरत के लिए पति का मुंह देखना पड़े। इसी सोच में वो भी थी। नए क्लिनिक की शुरुआत की थी, वह भी चल नहीं रेंग रहा था। कोई भी बिजनेस सेट होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। माया इसीलिए अभी विवाह जैसे बंधन में बंधने के लिए मन नहीं बना पाई थी। पर हर बार मां को मना करना उसके लिए भारी होता जाता था, क्योंकि हर मां इस बात के लिए चिंतित रहती है कि उसके रहते उसके बच्चों का विवाह हो जाए। यदि लड़की है तो और चिंता रहती है। माया क्या करे क्या न करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसी उधेड़बुन में वो क्लिनिक पहुंच गई। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह रेडियो ऑन किया। कुछ पेशेंट बाहर इंतजार कर रहे थे। उनका उसे ध्यान ही न रहा, क्योंकि उस समय उसके पसंदीदा आरजे का प्रोग्राम चल रहा था। चिट्ठी आई है, मुझ तक अपनी खबर न भेजो, ये बात मुझे मंजूर नहीं। दिल के तुम्हारे बात न पूछूं, ऐसा भी मगरूर नहीं। दिल की तुम्हारे बात न पूछूं, ऐसा भी मगरूर नहीं। थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी चलती रहती है रिश्तों में। अब जिद छोड़ो, मुंह ना मोड़ो, खत लिख छोड़ो, ऐसी क्या रुसवाई है। चिट्ठी आई है।

डॉक्टर माया की असिस्टेंट ने उसे आवाज दी तो उसकी तंद्रा टूटी। उसे याद आया कि वो क्लिनिक में है, वरना वो गाने के साथ किसी और ही दुनिया में विचरण कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक मीठी मुस्कान खिल गई। वो बोली, हाँ भेज दो।

पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वरना इतनी देर प्रतीक्षा करना मुश्किल हो जाता। खैर, मैंने उसकी नाड़ी देखी, पूछा क्या प्रॉब्लम है। पेशेंट ने कहा, सिर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती। माया ने मन ही मन कहा, नींद तो उसे भी नहीं आती, पर वो किससे कहे। जिस दिन आरजे समीर का प्रोग्राम सुनती है, वही ख्वाबों ख्यालों में रहता है। उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसके गानों की पसंद, सब कुछ कमाल है। समझ में नहीं आता कि उसके लिए दीवानगी सुकून है या दर्द। पेशेंट से बोली, आप नींद ठीक से लिया करें, नींद न लेने से एसिडिटी रहती है और इसी कारण सिर में दर्द रहता है, और कोई खास बात नहीं है। लेकिन लंबे समय तक अगर एसिडिटी रही तो दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। खाने में छाछ यानी कि मट्ठा का अधिक इस्तेमाल करें, सलाद में ककड़ी जरूर खाएं, रात में देर तक बिल्कुल मत जागिए, समझ रहे हैं आप, और आप ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। पेशेंट ने जी और धन्यवाद के साथ विदा ली। माया ने रेडियो की आवाज फिर तेज कर दी। FM के दीवानों, मैं आपका दीवाना समीर आपकी नजर करता हूं ये गीत।

ऐसे गाने सुनकर हमेशा उसे लगता कि वो गाने उसी के लिए बजाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से चित्र होते हैं जिनको देखने से लगता है कि वो आपको ही निहार रहे हैं। उसी प्रकार माया को भी लगता कि समीर भी कहीं ना कहीं उससे प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके हर प्रोग्राम को सुनती और खत लिखती, खत में बहुत कुछ जाहिर करती। वो पत्र केवल गीतों व कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहते, वो उसमें अपने दिल की दास्तान भी बयान करती। वो जैसा सोचती कहीं न कहीं वही भावनाएं उसे गानों के द्वारा सुनाई पड़ती। वो जो सोचती सच्ची तो है। इस प्रकार धीरे धीरे माया को समीर की आवाज का एडिक्शन हो चला था, यानी कि नशा हो चला था। समीर हमेशा तो रेडियो पर रहता नहीं था, उसने इसके लिए तरकीब निकाली। वो उसके कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके रख लेती और उसे बार बार सुनती, लेकिन संडे के कार्यक्रम को वो बिल्कुल मिस नहीं करती। उसमें श्रोताओं के पत्र पढ़े जाते, जिसमें श्रोता अक्सर उसकी आवाज की तारीफ करते, कुछ गानों का जिक्र होता। यह सुनकर माया को भी

डॉक्टर माया को जलन तब और होती जब वो किसी और महिला का पत्र हंस हंस कर पढ़ता और उसकी लिखावट की तारीफ करता, उसको शुक्रिया कहता, कहता कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मतलब आप अच्छे हैं, अच्छी चीजें देखने वाले की नज़र अच्छी होती है, उसके पत्र भी पढ़े जाते। परंतु कई बार ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर माया ने अपने खत के इंतजार में पूरा कार्यक्रम सुना परंतु उसका पत्र नहीं पढ़ा गया। समीर के मुंह से अपना नाम सुनने की प्रतीक्षा में उसने न जाने कितने लोगों की तारीफों के दर्द को झेला। मन तो किया कि रेडियो को उठाकर पटक दे परंतु वो ऐसा नहीं कर सकी। उसे रियलाइज हुआ कि वो डॉक्टर है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। कई बार हमारी बनाई हुई सीमाएं ही हमें बोझ लगने लगती हैं पर वही हमें बचाती भी हैं। इस बीच कार्यक्रम समाप्त होने का वक्त आ गया। समीर ने शेर पढ़ा। एफएम के दीवानों में आपका दीवाना समीर। चलते चलते कुछ शेर आपकी नजर करता हूं। कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ अमृत है और कुछ मधुमय गरल है जिंदगी। नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, और फिर यह जुल्म ताशों का महल है जिंदगी। और एक गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूं, तो खुश रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। इस शेर ने माया को खुद में झांकने को विवश किया।

0: कभी तो हंसाए।
1: इन्हीं सवालों को खोजती खोजती माया घर पहुंच गई। कोई हल नहीं था। कई बार सवाल का हल खोजते खोजते हम और उलझ जाते हैं। ऐसे में हमें सोचने की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, यानी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। माया खाना खाकर सीधे बिस्तर पर आई। हमेशा वो खाने के बाद थोड़ा वॉक करती थी, परंतु आज मन अनमना था तो सीधे सोने के कमरे में आ गई। किसी से ज्यादा बात नहीं की, वो अपने में ही खोई रही। वो क्यों खोई है, वो क्या खोज रही है, इसका कोई तर्क संगत जवाब उसके पास भी नहीं था। माँ ने बेटी को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, इतना खोई खोई सी क्यों है? तूने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना? माँ सब कुछ समझती है, उसे झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वो तुमसे सुनना चाहती है। माँ जानना चाहती है कि उसकी बेटी की जिंदगी में कौन है। पर माँ को वो क्या बताए कि उसने ख्वाबों की नींव पर प्रेम का महल बनाया है, उसी में रह रही है। वो जिससे प्रेम कर बैठी है वो उसे जानती तक नहीं, उससे कभी मिली नहीं। उसकी आवाज की दीवानी है, उसके अंदाज की दीवानी है, उसी के साथ जीवन के सपने बुन लिए हैं, उसी के साथ शामें गुजारती है।

0: गुजर जाए दिन।
1: आज जब वो क्लिनिक के लिए निकली तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। हालांकि उसके घर से क्लिनिक बहुत दूर नहीं था, यही कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी रही होगी, परंतु आज उस रास्ते से कोई रैली निकल रही थी इसलिए इतना ट्रैफिक था। उसे बहुत झुंझलाहट हुई, अपनी स्कूटी इधर उधर जैसे तैसे काट कर क्लिनिक पहुंची। स्कूटी साइड स्टैंड पर लगाई, सीट खोलकर हेलमेट रखा, तभी आसमान में पक्षियों की मंडली गीत गाते हुए उधर से गुजर गई। उसे बड़ा भला लगा, वो एक पल को ठहर गई। उसकी नजर डाल पर बैठे हुए नीलकंठ के जोड़े पर पड़ी। इन छोटे छोटे दृश्यों से वो लसित हो उठी। उस उल्लास को उस आवाज ने कई गुना बढ़ा दिया। डॉक्टर माया लिखती हैं कि आपके कार्यक्रम के इंतजार में हमारा हर पल गुजरता है। आपकी आवाज कानों में गूंजती रहती है और कुछ सुनाई नहीं देता। अरे डॉक्टर माया जी, ऐसा मत कीजिए, आपके ऊपर लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। अगर आप इस प्रकार बेखबर हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? वैसे इंतजार तो मुझे भी रहता है आपके मीठे मीठे खतों का, यही तो मेरी लाइफ है। आपके शब्दों में जो प्रेम है वो अद्भुत है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत होगी। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो आपको मुस्कुराते हुए देखते होंगे। और हाँ, मुझे तो लगता है कि आपके मरीज तो ठीक होना ही नहीं चाहते होंगे। और मेरी आवाज तो इसलिए आपको अच्छी लगती है क्योंकि आप दिल से सुनती हैं, लोग सुनते होंगे कानों से। अभी और खत, और भी बातें।

माया को यकीन हो चला था कि उसकी बात उस तक पहुंच गई। आज जोर से चिल्लाना चाहती थी, समीर आई लव यू। ये तब की बात है जब सोशल मीडिया जैसी चीज नहीं हुआ करती थी, मोबाइल भी इतना कॉमन नहीं हुआ था। माया से अब नहीं रहा जा रहा था कि कैसे भी करके वो समीर से मिलना चाहती थी। टेलीफोन डायरेक्टरी से उस रेडियो स्टेशन का नंबर निकाला, उसमें उसे 3 नंबर मिले। पहला ट्राई किया, आवाज आई, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। दूसरा ट्राई किया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ये संदेश किसी महिला की आवाज में था। एक बारगी माया को लगा कि जोर से गाली दे, पर वो बोली, चुप कर, समीर को बुला। पर वो रिकॉर्डेड आवाज थी, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बड़ी कोशिशों के बाद तीसरा नंबर लग गया। उसका धैर्य काम आया। किसी ने फोन उठाया और बोला, कौन? माया, डॉक्टर माया, क्या समीर जी से बात हो सकती है? रूखी आवाज में उत्तर मिला, आप उनसे बात नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? माया ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। क्योंकि वो नहीं है। नहीं है मतलब? अभी कुछ देर पहले तो थे। हाँ थे, पर अब नहीं है, वो चले गए, उनका शो खत्म हो गया। अब कब आएंगे? ये हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? ऐसा रूल है, आपका मैसेज दे देंगे। अच्छा ठीक है। माया उदास हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें।

माया का क्लिनिक कुछ खास नहीं चल रहा था, वो उस तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। अधिकतर समय सपने बुनने में निकल जाता। उसकी शादी, बच्चे, न जाने क्या क्या सोच लिया करती थी। जब भी वो किचन में खाना बना रही होती, उसे लगता अभी अचानक समीर आएगा और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेगा। वो चौंक उठेगी, फिर खुद को ही समझाती, ये क्या पागलपन है, वो यहां कैसे आ सकता है, मुझसे तो वो कभी मिला भी नहीं, मेरे घर का पता भी उसे पता नहीं है। फिर वो सोचने लगती कि ठीक है, वो मुझसे नहीं मिला, मैं उससे नहीं मिली, पर मेरे खत तो उसे मिले ही हैं, उसकी आवाज में मैंने उसको महसूस किया है।

ये बात माया अच्छी तरह जानती थी कि वह अपने साथ छल कर रही है। जिन ख्यालों के सहारे वो जिंदगी जीने के सपने देख रही है वो संभव नहीं है। भोजन की खुशबू से पेट नहीं भर सकता, बल्कि वो भूख को और बढ़ा देती है। मोहब्बत के एहसासों से जिंदगी नहीं चलती, हकीकत की जमीन पर उतरना ही पड़ेगा। डॉक्टर माया ने सोच लिया अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाना ही है, कुछ भी हो जाए। वो समीर से बात करके रहेगी। एक बार फिर उसने ऑफिस में कॉल किया, फिर से वही आवाज।

आज जब माया क्लिनिक जाने को तैयार हो रही थी तो माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाना, कुछ लोग आने वाले हैं। पहले तो माया को लगा कि कह दे आप भी ना किस किस को बुला लेती हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप मिल लेना। परंतु माया ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठहर कर माँ को बड़े इत्मीनान से देखा, मुस्कुराई और कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी, कुछ लाना है तो बता देना। माँ ने कहा, अरे तू आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगी।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है अलग अलग।

चित्रपट संगीत का अगला गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी, संगीत है राहुल देव बर्मन का, और फिल्म का नाम है शक्ति।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला और शिकायती गीत सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है नगीना।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए अमित कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है तेरी कसम।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रपट संगीत में अगला और अंतिम गीत सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का और फिल्म का नाम है चालबाज।

0: दोस्तों नमस्कार, मैटिनी शो इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं पत्रकार और लेखक राजेश विक्रांत से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने पत्रकार और लेखक राजेश विक्रांत जी। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका सर।
1: राजेश जी, जो आपका सबसे बड़ा काम है वो मुंबई को लेकर है। आपकी कई किताबें हैं, जो मेरी नजर सबसे ज्यादा पड़ी वो आमची मुंबई सीरीज की दो किताबों पर पड़ी है। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप मुंबई कब आए, और दूसरा ये कि ये जो मुंबई पर काम करने का सिलसिला एक के बाद एक मुंबई पर आपकी किताबें आ रही हैं, ये कैसे शुरू हुआ?
2: देखिए, मैं 1989 में मुंबई आया, अमेठी से, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से। तो जो मेरा पहला ठिकाना बना, चर्चगेट इलाके में, और वो है मुंबई यूनिवर्सिटी के राजाबाई टावर के ठीक सामने महर्षि कर्वे रोड पे वो बिल्डिंग है।
1: अच्छा,
2: क्वींस कोर्ट। और अगर आप देखें तो जो वास्तविक मुंबई है वही इलाका है चर्चगेट के 1.5 किलोमीटर के रेडियस में। जितनी चीज़ें हैं मुंबई को लेके, चाहे इतिहास से जुड़ी हो या संस्कृत से जुड़ी हो या राजनीति से जुड़ी हो या मुंबई के विकास के जुड़ी हुई, सारी की सारी चीज़ें उसी 1.5 किलोमीटर के अंदर आपको मिलेगी। चाहे विक्टोरिया टर्मिनस हो, चाहे और भी चीजें हो, लायन गेट हो जहां नौसेना विद्रोह हुआ था,
1: रीगल टॉकीज
2: हो, ओवल मैदान हो, क्रास मैदान हो, आजाद मैदान हो, ये सारी की सारी चीजें वही हैं। तो उस इलाके में रहते रहते मुंबई के बारे में मुझे प्रेम जगा, एक मोहब्बत जगी।

0: जिसको आप इश्क कह सकते हैं। तो मैं मूल रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी करने के लिए आया था।
1: अच्छा।
0: तो मेरे बैच के जितने भी लोग थे वो एक एक करके समय आने पर मुंबई से ट्रांसफर करवा के अपने गांव की ओर चले गए, लेकिन मुंबई के प्रति प्रेम की वजह से मैं रुका रहा और 1990 के आसपास फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो पहला मतलब मेरी नज़र में आया कि जिस शहर ने मुझे रोजी रोटी दी है, उस समय तो रोजी रोटी ही थी, नाम और सम्मान की कोई बात ही नहीं थी, संघर्ष का दिन था, तो मैंने सोचा कि मुंबई पे लिखना शुरू करना चाहिए। और आप ये देखिए, विसंगति देखिए कि मैं गंभीर लिखता हूँ मुंबई पे, लेकिन जो मैंने पहला लेख लिखा था वो जो था ये था, यह है बॉम्बे मेरी जान, और वो व्यंग लेख था मुंबई पे, वो मेरी शुरुआत थी।
1: जी, जिस इलाके से आपने शुरू किया, आपने बताया कि क्वींस कोर्ट वाला इलाका था जहां आपकी रिहाइश बनी, साउथ बॉम्बे का वो इलाका जहां चारों तरफ इतिहास बिखरा हुआ है, और भारतीय जीवन बीमा निगम का जो मुख्यालय है वो भी उसी इलाके में है, तो आपका जो आना जाना, आपका जो काम काज है वो पूरा साउथ मुंबई में हुआ। वो कौन सी चीजें थी दक्षिण मुंबई की जिन्होंने आपको बहुत फैसिनेट किया?
0: वो सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि मेरे सामने वो राजाबाई टावर मुंबई यूनिवर्सिटी का, और उससे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपको पता होगा वाटसन होटल,
1: बिल्कुल, जहां मुंबई का पहला सिनेमा दिखाया।
0: यस, पहला ल्यूमियर्स ब्रदर्स ने वहां पहला सिनेमा दिखाया। और दूसरी बात है कि बड़े बड़े लोग मोहम्मद अली जिन्ना से लेके मार्क ट्वेन तक उस वाटसन होटल में ठहरे। और एक बात और भी, आज तो 5 स्टार 7 स्टार का जमाना है सर, उस जमाने में जब स्टार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो ये वाटसन होटल जो है 7 स्टार के तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करता था। जब मैं वाटसन होटल से गुजरता था 1990 के दशक में, तो मुझे जब मैं लगता था उसकी हालत देख के, बाद में तो उसका रिनोवेशन होने लगा, तो मैं देखता था तो मैं सच में अंदर से रोता था कि जिस होटल ने, जिसमें ल्यूमियर्स ब्रदर ने पहली फिल्म दिखाई, और जो होटल इतिहास का गवाह है, आप देखिए उसकी दुर्दशा,
1: ना लोगों को ये पता है कि ये वो जगह है, ना कोई बोर्ड
0: कुछ
1: है,
0: नहीं। और या आप क्रॉफर्ड मार्केट की ओर अगर थोड़ी दूर पे जाएं, चर्चगेट इलाके से 1.5 किलोमीटर दूर, तो क्रॉफर्ड मार्केट की भी दुर्दशा। इस तरह की चीजों को देख के जो मेरे मन में आया कि मुंबई पे लिखना चाहिए। और थोड़ी दूर पे लायन गेट था,
1: जी,
0: आपको पता है कि रॉयल नेवी का जो बहुत बड़ा विद्रोह था अंग्रेजों के जमाने में, उसकी शुरुआत वहीं से हुई,
1: बॉम्बे और कराची वाला।
0: यस, वो जो विद्रोह था बॉम्बे वाला, और वो एक साथ कई जगहों से हुआ है। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, आप सब पता होगा क्योंकि आप भी मुंबई के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कि वो जहां पे ये महाराष्ट्र पुलिस का मुख्यालय है, वो जगह पहले कब्रिस्तान थी, मेडम पॉइंट एक जमाने में, क्योंकि इस इलाके में पूरा का पूरा इतिहास बिखरा है। हालांकि सर, मैं इतिहास का विद्यार्थी कभी नहीं रहा, मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, लेकिन वहां से जो मुंबई को लेके एक रुचि उत्पन्न हुई वो बराबर चलती रही। 2012 में मुंबई पे मेरा पहला काम आया, एक मराठी पुस्तक का हिंदी अनुवाद।
1: मराठी, क्या पुस्तक थी?
0: मराठी पुस्तक थी मुंबई तील गुनेगारिंचा एनसाइक्लोपीडिया, मेरे मित्र श्री प्रभाकर पवार जी की मराठी में पुस्तक, वो दैनिक सामना से जुड़े थे, और 1993 से मैं दोपहर का सामना से जब जुड़ा तो मैंने 2012 में उसका अनुवाद किया, मुंबई माफिया एक एनसाइक्लोपीडिया। मुंबई पे मेरा पहला
1: मतलब क्राइम वाला पूरा काम, जितने डॉन हुए हैं।
0: जी, मेरी दिलचस्पी थी, और फिर उसके बाद चलता गया, और 2015 से लेकर 2020 तक, यानी कि पूरे के पूरे 5 सालों तक दोपहर का सामना में मेरा एक कॉलम छपता था आमची मुंबई, मुंबई के इतिहास पे।
1: उसमें आप लगातार इतिहास पर काम करते थे
0: लगातार, और 2019 में मेरी पहली किताब आई आमची मुंबई।
1: जी,
0: और जब आमची मुंबई आई, आपने बात की आमची मुंबई 2 की, जब आमची मुंबई आई 2019 में, तो वो आमची मुंबई जो है वो अखबारी लेखन था। अखबारी लेखन की एक सीमा होती है, और मुंबई पर काम करने की सर मेरी भूख इतनी थी कि किसी अखबार के कॉलम से वो मिट नहीं सकती थी। तो 2019 से, क्योंकि कई कई कहानियां इतनी रोचक थी, इतनी बड़ी थी,

0: क्यों अखबार के कॉलम में समाहित हो नहीं सकती थी, तब मैंने 2019 में आमची मुंबई 2 पे काम करना शुरू किया, जो पिछले साल 2025 में आई।
1: क्या बात है। तो दो बड़ी किताबें मुंबई के इतिहास पर ये नजर आती हैं, और उसके अलावा मुंबई के माफिया पर भी आपकी किताब है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश की जाए कि मुंबई के इतिहास पर काम करना इतना आसान नहीं है, तो किन लाइब्रेरीज की और ग्रंथों की खाक छानते हुए आपने तथ्य जमा किए, और ये कितना मुश्किल था?
0: वो एक बड़े इतिहासकार ने कहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम उससे कोई सबक नहीं लेते। जब हम इतिहास पे शुरू करते हैं तो हमको अपना जो नजरिया है बहुत विस्तृत करना पड़ता है, और ज्यादातर अगर देखा जाए तो आज इंटरनेट का जमाना है, हमारे पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं जो है अगर किसी पे भरोसा करता हूँ इस मामले में ग्रंथालय की, तो दो है। पहले नंबर पे एशियाटिक लाइब्रेरी है, दूसरे नंबर पे हिंदुस्तानी प्रचार सभा की लाइब्रेरी है, और जो मेरे संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम का पुस्तकालय भी है वो बहुत समृद्ध है।
1: अरे गजब।
0: वहाँ हिंदी अंग्रेजी मराठी की बहुत सारी दुर्लभ पुस्तकें हैं, रेफरेंस की पुस्तकें हैं, तो वहाँ से मैंने शुरू किया। इस बारे में मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, लगातार रिसर्च करता हूँ। मैं सर आपको रिसर्च का एक उदाहरण देना चाहूँगा
1: जी,
0: कि आम धारणा है कि मुंबई जो है 7 द्वीपों से बनी है, उसमें मुंबई द्वीप जो मुख्य द्वीप है और माहिम है, फिर कोलाबा है, मझगांव है, वर्ली है, ओल्ड वुमन आइलैंड है, लिटिल कोलाबा है, इस तरह के 7 द्वीप हैं, आम धारणा है। लेकिन हकीकत यह है कि आप किस तरह से कहते हैं कि मुंबई में सचमुच 7 द्वीप थे, मेरी पुस्तक आमची मुंबई 2 का पहला लेख है वह 7 द्वीप जिनसे मिलकर मुंबई बनी, लेकिन उसी पुस्तक में 7वां लेख है क्या मुंबई में सचमुच 7 द्वीप थे। हकीकत में आप 7 द्वीप कहते कैसे, वो थियरी आई कहां से? मुंबई पे इतिहास के शोध किया है मिस्टर टिम राइडिंग ने, बहुत बड़ा शोध है उसने, उनका कहना है कि 7 द्वीप नहीं थे। जो 7 द्वीपों की बात है तो वो 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में जो मिथक और भ्रांति से आई, एक्चुअली वो जो द्वीपों की संख्या है 4 से 6 है ओरिजिनल। रॉबर्ट मर्फी ने इस प्रश्न को उठाया भी, उन्होंने एक नक्शा भी बनाया जिसमें 4 या 6 द्वीप, क्योंकि वो 2 को गिनते नहीं थे, मझगांव और परेल उनकी नजर में द्वीप अलग अलग नहीं थे,
1: वो लैंडलॉक एरिया है।
0: हाँ, लेकिन उसके बाद हकीकत में जो 7 द्वीपों की थियरी आई सर, वो ईस्वी सन 150 में टॉलेमी का एक ग्रंथ है ज्योग्राफिका, पूरा नाम है लेंडास द ज्योग्राफिका, यानी कि भूमि का भौगोलिक शास्त्र, उसमें जो है मुंबई यानी पूर्व में स्थित एक जगह का जिक्र जो है हेप्टानेशिया के रूप में किया गया है। हेप्टानेशिया का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है 7। तो जो 7 का मिसकंसेप्शन है वो उधर से आया, ओरिजिनल वो 6 द्वीप से ज्यादा नहीं थे। तो हमको इस चीज को खोजने के लिए जो टिम राइडिंग का शोध था, बहुत लंबा चौड़ा शोध था, तो मैंने कम से कम उसकी 3 जगहों पे क्रॉस चेकिंग की, जो यहाँ लिखा है वो सच है क्या, क्योंकि जब हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं किताब के जरिए तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि कहीं ऐसा नहीं कि कभी किसी पाठक ने ये बताया कि सर ये आपने गलत लिखा है। तो उसमें मैंने 2-3 लाइब्रेरी की खाक छानी और कई कई चीजें हमको मिली, तो उससे लगा कि नहीं, जो टिम राइडिंग का शोध है वो अपनी जगह पे सही है, रॉबर्ट मर्फी का भी शोध सही है, जॉन थॉर्नटन का एक नक्शा था वो भी सही है। तो इस ढंग से इस शोध में होता है। एक सिर्फ छोटी सी घटना, एक छोटे से प्रसंग को लेके मैं इस शोध की बात और आगे बढ़ाऊंगा कि 1857 की जो क्रांति हुई, आजादी की पहली लड़ाई, तो वो और जगहों की तरह मुंबई में

भी हुई। मुंबई में हुई का मतलब यह है उसको करने की कोशिश की गई। मरीन बटालियन के कुछ लोगों ने, कुछ सिपाहियों ने मिलके ये योजना बनाई। उनकी योजना थी कि नाना साहब पेशवा के नेतृत्व में हम विद्रोह करेंगे मुंबई में। लेकिन उस जमाने में मुंबई का कमिश्नर था चार्ल्स फोरजेट। फोरजेट का जो इंटेलिजेंस था वो बहुत गहरा था, बहुत अच्छा था। तो सोनापुर यानी मरीन ड्राइव के इलाके में, मरीन लाइंस के इलाके में क्रांतिकारियों की, सैनिकों की बैठक होती थी। फोरजेट खुद भेष बदल के उसमें गया उस बैठक में, और वहां से ये योजना जो है, इस योजना का पर्दाफाश हो गया। मुंबई पुलिस ने, चार्ल्स फोरजेट ने उस क्रांति को जो है उसको एकदम उसका पर्दाफाश कर दिया, और कई लोगों को उसमें सजाएं मिली, जिसमें दो लोगों को आजाद मैदान में, उस जमाने में कांपा का मैदान कहा जाता था, तोप से तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दिया गया। दो सिपाही, मंगल गडरिया और सैयद हुसैन, चूंकि वो

0: इंटेलिजेंस था वो बहुत गहरा था, बहुत अच्छा था। तो सोनापुर यानी मरीन ड्राइव के इलाके में, मरीन लाइंस के इलाके में क्रांतिकारियों की, सैनिकों की बैठक होती थी। फोरजेट खुद भेष बदल के उसमें गया, उस बैठक में, और वहां से ये योजना जो है, इस योजना का पर्दाफाश हो गया। मुंबई पुलिस ने, चार्ल्स फोरजेट ने उस क्रांति को जो है उसको एकदम उसका पर्दाफाश कर दिया, और कई लोगों को उसमें सजाएं मिली, जिसमें दो लोगों को आजाद मैदान में, उस जमाने में कांपा का मैदान कहा जाता था, तोप से तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दिया गया। दो सिपाही, मंगल गडरिया और सैयद हुसैन, क्योंकि वो अंग्रेजों का जमाना था, ब्रिटिशों का शासन था, तो किसी भी पुस्तक में मंगल गडरिया और सैयद हुसैन का कोई भी जिक्र नहीं मिलता, सिर्फ नाम मिलता है। मुझे खोजबीन के दौरान कम से कम एक ही मुद्दे पे मैं 6 महीने लगा था, तो कहीं से सिर्फ इतना पता चला कि मंगल गडरिया जो था वो मूल रूप से गोंडा के गांव का निवासी था, और सैयद हुसैन लखनऊ के आसपास के। तो ये मेरी, अभी भी मुंबई के कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इन दोनों क्रांतिकारियों का ओरिजिन अगर किसी ने खोजा या थोड़ी सी ही जानकारी मिली तो वो मुझे बोलते हैं कि आपने खोजा, लेकिन उसमें 6 महीने सिर्फ एक ही तथ्य खोजने में चले गए। इतिहास के साथ सर ये होता है
1: जी। तो इतनी मशक्कत करने के बाद तथ्य आपने जमा किए, इन दिनों आप किस किताब पर काम करें?
0: इन दिनों का ये है मेरी पुस्तक साहित्य और मुंबई। और एक्चुअली मुंबई के बारे में बहुत सारे लेखकों ने लिखा है कि यहाँ साहित्य सृजन की, लेखन की बहुत सारी संभावनाएं मौजूद है, और ये शहर प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है। तो साहित्य और मुंबई में मैंने 5 भाषाओं पे फोकस किया है, जैसे मुंबई के साहित्य, संस्कृति और इतिहास पे लिखी गई पुस्तकें, नॉन फिक्शन, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी। इसी तरह मुंबई को लेकर लिखे गए उपन्यास, इन 5 भाषाओं में उनका जिस्ट, उनका सारांश। मुंबई पे लिखी गई कविताएं इन 5 भाषाओं में, मुंबई पे लिखी गई कहानियां इन 5 भाषाओं में। मतलब इस तरह के काम हुए हैं, हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, सन 1817 में शहर की पहली शहरी जीवनी उर्दू में छपी।
1: बाबा,
0: लेकिन वो छपी कहाँ? मुंशी नवल किशोर प्रेस लखनऊ।
1: अरे क्या,
0: शहर की पहली जीवनी। हाँ हाँ। तो आप उसमें इस तरह की किताबों का जिक्र देखेंगे, बुक ऑफ बॉम्बे को पढ़ेंगे, मुंबई चा वृत्तांत पढ़ेंगे, मुंबई चे वर्णन गोविंद नारायण माडगांवकर की किताब है
1: जी।
0: और जेम्स मैकलिन की गाइड टू बॉम्बे, इस तरह की किताबों पे पढ़ेंगे, और बहुत सारी हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी की किताबों, कहानियों और कविताओं की चर्चा उस पुस्तक में आप पढ़ेंगे
1: जी। तो ये भी बहुत मशक्कत का काम है, इसके लिए भी बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है।
0: पिछले साल जुलाई से चल रहा है उस पे शोध, और अभी 3-4 महीने और लगेंगे सर।
1: तो क्या देश के अलग अलग इलाकों में जाना पड़ता है
0: या नहीं? मुंबई, मुंबई पे काम, मुंबई की लाइब्रेरियों में काम, मतलब इस तरह के विद्वानों से मिलना जो साहित्य के बारे में जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, उर्दू के विद्वानों से, लाइब्रेरियों में जाना, पढ़ना, उधर से तथ्य निकालना।
1: मुंबई माफिया पर जो आपने काम किया है, ये इतिहास कितना पुराना है?
0: ये बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि जब से ये मोस्टली जो इतिहास है 1950 के दशक से, आजादी के बाद के दशक का, तब छुरे और गुप्ती वाले थे, उन्होंने शुरू किया, और दूसरी बात 60-70 के दशक में वो गोल्डन गैंग वगैरह लोग आए, और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 80 के दशक से मुंबई माफिया का प्रभुत्व तो बहुत तेजी से शुरू हुआ। हाँ, जब वो हाजी मस्तान, करीम लालदा, शुक्र नारायण बकिया, दाऊद वगैरह का तो बहुत बाद में प्रवेश हुआ, फिर मतलब धीरे धीरे आज भी है, लेकिन अब हम ये, एक जमाने में मुंबई को हम माफिया सिटी बोल सकते हैं, लेकिन अब नहीं बोल सकते। अब तो बहुत शांत और बहुत सुव्यवस्थित और बहुत समृद्ध महानगर है आमची मुंबई, जिससे मुझे बहुत गहरा प्रेम है। तो इसलिए मुंबई के माफिया पक्ष की या मुंबई के निगेटिव पक्ष को मैं बहुत सिंबॉलिक रूप से कहता हूँ, उसकी बजाय मेरी नज़र में मुंबई के और जो सर्वसमा

0: विदेशी संस्कृति है, मुंबई की समृद्धि है, सबको अपना बनाने की एक जो यहाँ की मिट्टी में तासीर है, मैं उसको बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ।
1: मुंबई सदा से मिनी हिंदुस्तान रहा है, इसका फूड कल्चर, सिनेमा की संस्कृति, इन सब पर लिखा आपने?
0: हर तरह से, जब मैंने मुंबई पे कॉलम लिखता था तो मैंने मुंबई की नाइट लाइफ पे लिखा, सिनेमा पे लिखा, फिल्म स्टूडियोज की सोकांतिका पे मैंने 2-3 आर्टिकल लिखे, अमची मुंबई 1 में वो लिखेंगे, और खान पान की जो संस्कृति है उस पे, उन सब पे भी मेरी कोशिश रही कि हर चीज यहाँ पे मुंबई का जो भाषाई परिदृश्य है मेरी, उस पे भी एक पुस्तक आई है, मुंबई और हिंदी,
1: जी
0: हिंदी
1: तो
0: को लेके।
1: मुंबई में हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, ये भाषाएं मुख्य रूप से चलती हैं, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो ये एक मिनी हिंदुस्तान है। इसके अलावा देश के तमाम हिस्सों के लोग यहाँ पाए जाते हैं, इस पर आपने गौर किया?
0: बिल्कुल गौर किया, मुंबई में मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के अलावा कुल 16 भाषाएं हैं जिनको मुंबई की मुख्य भाषा होने का दर्जा प्राप्त है।
1: 16 भाषाएं?
0: हाँ, 16 जो मुख्य भाषाएं हैं। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि मुझे जैसे आपने मिनी हिंदुस्तान की बात की, मैं वो कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मुंबई या महाराष्ट्र और मुंबई पूरे देश में इस वजह से अलग है कि मुंबई की सर्वसमावेशी संस्कृति है। दुनिया में जितने भी प्रमुख धर्म हैं, यहाँ पर आपको उन धर्मों के लोग मिल जाएंगे, और उनमें एक जो भाईचारा है, जो सद्भावना है, उनके दर्शन होंगे। इसलिए मैं मुंबई को मिनी हिंदुस्तान से ज़्यादा एक लघु विश्व का दर्जा देता हूँ, जहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, हर देश के लोग मिल जाएंगे।
1: ये जो लघु विश्व शब्द का इस्तेमाल किया है, इसे पकड़कर हम दूसरी दिशा में जरूर जा सकते हैं, जहां मुंबई में दूसरे देशों के लोगों की रिहाइश बहुत रही है, इजरायली, ईरानी और ब्रिटिश, अमेरिकन, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे। आपका एक काम है आजादी की लड़ाई और मुंबई, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसमें सबसे बड़ा माइलस्टोन आता है 9 अगस्त 1942 या 8 अगस्त 1942,
0: हाँ,
1: कह ले हम, जो ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। लेकिन कांग्रेस रेडियो, या मैं ये कहता हूं कि 20वीं सदी से पहले की लड़ाई क्या थी आजादी की?
0: नहीं, मुंबई का आजादी की लड़ाई में जिसका आपने जिक्र किया अगस्त क्रांति, उसके अलावा भी है,
1: एक उषा मेहता का कांग्रेस रेडियो,
0: हाँ,
1: था
0: उषा मेहता जी और लोगों ने मतलब उसको शुरू किया था। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि किस ढंग से जुड़ा है, ये जो नारे हैं क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, या करो या मरो, या साइमन गो बैक, ये 2-3 महत्व

0: से संबंधित है। एक बहुत बड़ा कोटेशन है, बहुत महत्वपूर्ण, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है,
1: जी
0: मैं इसे लेकर ही रहूंगा।
1: वाह वाह
0: ये कहा जाता है कि लोकमान्य तिलक का नारा है।
1: जी
0: लोकमान्य तिलक जी ने इसको फेमस किया, इसको विख्यात किया, लेकिन ओरिजिनली इस नारे को लिखा और गढ़ा जोसेफ काका बैप्टिस्टा ने। मझगांव में उनके नाम पे गार्डन है। तो मुंबई में इस तरह की कहानियां हैं। और मैंने
1: ये तो
0: आपको,
1: बहुत शॉकिंग है।
0: हाँ यस, मैंने आपको क्या बताया, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे 1857 में मेरठ में और जगहों पे क्रांति, मुंबई की क्रांति का जिक्र इतिहास के पन्नों में नहीं आता,
1: जी
0: लेकिन वो बॉम्बे प्लाट के नाम से, अगर आप इतिहास को
1: हाँ
0: खंगालेंगे
1: यस
0: तो
1: यस
0: बॉम्बे प्लाट के नाम से ये पूरी की पूरी क्रांति, जो मैंने सैयद हुसैन और मंगल गडरिया की कहानी बताई आपको, जो प्रसंग बताया वो पूरा का पूरा है। और अक्टूबर 1857 में, 10 अक्टूबर 1857 को मंगल गडरिया और सैयद हुसैन को आजाद मैदान में तोप से बांध के उड़ा दिया गया था। तो मुंबई का बहुत बड़ा योगदान है।
1: जी अच्छा, भारत में जो रेलवे मूवमेंट शुरू हुआ
0: हाँ
1: वो तो जाहिर है कि मुंबई से शुरू हुआ, और 1853 में जो मुंबई से ठाणा तक ट्रेन चलाई गई थी, और इस रेल मूवमेंट के बारे में कुछ बताएं।
0: हाँ रेल मूवमेंट के बारे में ये सपना था कि एक रेलवे होना चाहिए। और हमारे लिए गर्व की बात है कि जगन्नाथ शंकर सेठ, नाना सेठ ने इस बारे में बहुत सारा काम किया था। उन्होंने एक इंडियन एसोसिएशन बनाई, उसके बाद इंडियन रेलवे एसोसिएशन बनी, जिसका विलय ब्रिटिश सरकार की संस्था में हुआ और वो 1853 में वो ट्रेन चली। लेकिन ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि मुंबई सीएसटी से लेके थाना तक उस जमाने में, मतलब रिहाइश जो है एकदम ये थी, और दूसरी पहाड़ियाँ थी छोटी छोटी, और जो इलाका है मझगांव वगैरह या जहाँ से रेल गुजरती थी, या आगे चल के पुल बनाना है, बहुत कठिन काम था। और लोग ये कहते हैं कि ये सब ब्रिटिश सरकार की वजह से ही संभव हुआ। अगर ब्रिटिश सरकार न होती तो 1853 में जो मुंबई से थाना तक पहली ट्रेन चली वो ट्रेन चल नहीं पाती।
1: जो रेलवे स्टेशंस थे वो तो आज जहां हैं वहां से बहुत अलग जगहों पर हुआ करते थे, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए।
0: तब के जमाने का जो भौगोलिक वो डेमोग्राफी थी सर, तब के जमाने की अलग थी और आज के जमाने की अलग थी।
1: तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस बात
0: हाँ,
1: की।
0: तब कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मतलब इस तरह की जगहों पे रेलवे स्टेशन होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हार्बल के बहुत सारे रेलवे स्टेशन जमीन से बहुत ऊपर हैं, तो वो इसी कॉन्सेप्ट का नतीजा है।
1: जी बहुत बढ़िया, आपसे तो बातें जो हैं वो कभी ना खत्म होने वाली हैं, पर बहुत अच्छा लगा मुंबई के इतिहास पर जिस तरह से आपने काम किया है। आमची मुंबई 1, आमची मुंबई 2, मुंबई माफिया, मुंबई और हिंदी, मुंबई और साहित्य, ये तमाम चीजें जो हैं ये बहुत दिलचस्पी जगाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए, और मुझे लगता है कि जब हमने सब चीजों की बातें की तो चलते चलते मुंबई पर एक फिल्मी गाना भी आपकी पसंद का सुनवा लिया जाए।
0: सिर्फ यही है, जरा हटके जरा बचके, ये है मुंबई मेरी जान, इससे
1: सीआईडी
0: है
1: फिल्म का ये गाना
0: ये।
1: मजरू सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज है,
0: यस
1: सुनते हैं ये गाना।

0: मेरी जान।
1: बहुत बहुत शुक्रिया राजेश विक्रांत जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे ढेर सारी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद सर।
3: मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पत्रकार और लेखक राजेश विक्रांत से यूनुस खान की बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
4: ये विविध भारती है, दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ये चर्चा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी तथा क्षमता निर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 18वें ब्रिक्स शिखर

0: सम्मेलन में इथियोपिया की भागीदारी की सराहना की और कहा कि इसकी उपस्थिति से ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को और मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी आज देर शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बेलारूस के विदेश मंत्री मार्क्सिम रिजनकोफ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, फिनटेक, महत्वपूर्ण खनिजों तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले आज सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस बीच सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अलमंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। और इस बीच खबर मिली है कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज शाम उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सलमा का सप्रेम नमस्कार। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है महान संगीतकार शंकर जयकिशन जोड़ी के संगीतकार जयकिशन की यादों से। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के महान संगीतकार जयकिशन दयाभाई पांचाल को, जिन्होंने शंकर के साथ मिलकर शंकर जयकिशन की सबसे सफल और लोकप्रिय जोड़ी बनाई थी और भारतीय संगीत का नक्शा बदला।

0: चल दिया था। तो आज हम याद कर रहे हैं और आज हम सुनेंगे महान संगीतकार शंकर जयकिशन के संगीत से सजे सवरे कुछ यादगार गीत। यादों की महफिल कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है जंगली।
1: जंगली कहे

कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे

0: कोई मुझे जंग भी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है श्री 420।

यादों की महफिल कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है कन्यादान।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर. सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा.
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी. मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई. उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं. बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ.
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
3: साथियों आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में. इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है धरती.

0: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार है शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का और फिल्म का नाम है बेटी बेटे।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की, और फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मुकेश और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा है शैलेंद्र।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: गीतकार हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है दीवाना।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है राज हट।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है अमन।

दिल की धड़कन महसूस

यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने सुने शंकर जयकिशन के संगीत से सजे कुछ यादगार सदाबहार गीत। आज शंकर जयकिशन जोड़ी के संगीतकार जयकिशन की याद का दिन है। साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

संगीत के इस सुरीले सफर में बनके हमारे हम सफर चलने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर आपको बता दें आज की इबारत। एक चीज कयामत है लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देखा तुम्हें देख के माना वो ठीक कहा करते थे। जिंदगी में रस्में ये कस्में सभी तोड़ के चले आओ, लेकर मौजों का सहारा बना लेंगे हम तूफान में किनारा। वहां सच होंगे सपने बनेंगे गैर भी अपने, आती है जब ये रुत मस्तानी बनती है कोई ना कोई कहानी। अब के बरस देखे बने क्या फसाना, कितनी खुशियां कितने गम इस जिंदगी के दिन कितने कम, दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं। हमसे मत पूछो।

वो कैसे ये किस्सा है अपनों का, गहरी नदी से ज्यादा मन में शोर, सबको किनारे पहुंचाकर माझी तो किनारा कभी पाएगा। तो सुरीला सफ़र के हमारे बहुत सारे साथी हम सफ़र बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो उन सारी बातों को संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफ़र में बन के हम सफ़र आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम पढ़ देते हैं पहले कुछ संदेश और कमेंट्स। हम सफ़र वही है जो मुश्किलों में भी कहे तुम मुस्कुराओ बस एक बार, पलकें उठाओ जब भी सावन की फुहार बरसती है, मन मयूरा नाच उठता है और दिल का सूनापन दूर हो जाता है, शाम ढलते ही जब दिए जलते हैं तो गम के बादल छट जाते हैं और उम्मीद की एक नई सुबह मुस्कुराने लगती है। अधूरी ख्वाहिशें अपने सपने बुना करती हैं जो गाहे बगाहे दिल की उमंगों को जगा देती हैं, फिर दिल ये महसूस करने को मजबूर हो जाता है काश ये सपने साकार होते, सपनों की दुनिया क्षणिक ही सही एक सुखद एहसास तो दे जाती है। जैसे सीता राम राधा श्याम मिले, कभी ना कभी तो मिलन होगा तुमसे हमारा, माझी नैया ढूंढे किनारा। जब जीवन में कोई चाहत अधूरी रह जाती है तो मन उसे भूलने के बजाय कल्पनाओं में जीवित रखता है, मन में जो अधूरापन होता है वो सपनों और उमंगों से भरी एक दुनिया बनाता है जहाँ कोई बंदिश बंधन नहीं होते, बस उमंगों का सैलाब होता है जो हमें जीने की आशा देता है। और आज़ाद रहिए विचारों से, बंधे रहिए संस्कारों से। एक दोस्त ने हमें मैसेज लिखा है, कहीं मोहब्बत की आहट, कहीं सपनों की उड़ान, कहीं जिंदगी के गम और कहीं किनारे की उम्मीद। बहती जाती है ये नदी कल कल गाती नदी, खेतों को पानी देती है सबकी प्यास बुझाती है, पर्वत से ये निकलकर रास्ता अपना बनाती है सागर तक जाने की धुन में, कभी ना थकती है चलती जाती आगे आगे, दुख सारे सबके ये भोगे, जीवन का संदेश यही है बढ़ती जाना आगे आगे। इतनी सुंदर कविता भेजने के लिए आपका धन्यवाद। तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में कार्यक्रम की, जिसमें आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी। आनंद जी, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले। राजा एक सीधा सादा हाउस बोट चलाने वाला लड़का और रीता एक अमीर लड़की, दोनों के विचार अलग अलग, सादगी खुलापन रहन सहन का अंतर, अमीर गरीब वर्ग की सामाजिक दूरियाँ टकराव, कई उतार चढ़ाव और गलत फहमियों के बाद होती है प्यार की जीत और राजा और रीता हो जाते हैं एक। तो हमें बताइए कि राजा और रीता की भूमिकाएं निभाने वाले कलाकार कौन थे और इस गीत को कहाँ फिल्माया गया वो भी बताएं। साथियों साथ में हमें ये भी बताइए कि नदी में, नाव में, शिकारे में, नदी किनारे में इस वक्त आपको कौन कौन से गीत और फिल्में याद आ रही हैं वो भी हमें बताएं।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। शशि कपूर, नंदा आगा, शमी, कमल कपूर और इस गीत की शूटिंग कश्मीर के श्रीनगर इलाके की खूबसूरत वादियों और डल झील में की गई थी। आपके कुछ कमेंट्स हम और पढ़ेंगे। आज की इबारत में नदी, तालाब, शिकारी पर गीतों का संगम है जो एक बेहद खूबसूरत भावनात्मक और रूमानी रिश्ता कहलाता है। आजकल शहरों की भागदौड़ और समाज के बंधनों और तनाव से दूर नदी की लहरों में नाव पर सवार होकर एक अलग सुकून का एहसास होता है। जब आप अपने हम सफ़र के साथ कश्ती पर सवार होकर कुछ पल के लिए प्यार भरी वादियों में अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हे गुजारते हैं तो रिश्तों का जुड़ाव बहुत गहरा हो जाता है। जिस रेडियो में विविध भारती चैनल ना हो उस रेडियो को हमें सुनना नहीं। विविध भारती का साथ है तो मुझे क्या कमी है, दुख में भी मिल रहा सुकून है। जी शुक्रिया। प्रेम रूपी गहरी नदी में जो शोर रूपी लहरों के साथ नैया हिचकोले खाती नजर आती है, तब किनारे पर ले आता है साथी का साथ और तूफानों से गुजर कर किनारे लग ही जाता है सच्चा प्यार। हमारे सभी साथी जो प्यारे प्यारे संदेश लिखते हैं वो भी हमें सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा भी किसी ने हमें लिखा है। अगला कमेंट है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सुकून सुने जाने में नहीं, समझे जाने में छिपा है। जीवन में सुनना एक दवा है, आधी दुनिया का दर्द सिर्फ सुनने से मिट जाता है। अंतर शब्दों में नहीं, उसके कहने

के ढंग में होता है। मन उस नाविक जैसा है जो सबको किनारे तक पहुंचा देता है, लेकिन खुद अपने किनारे की तलाश में रहता है। फिर भी उम्मीद बनी रहती है, क्योंकि यही उम्मीद हमें हर दिन आगे बढ़ने की आशा देती है। नदी थी खामोश, किनारा भी अनजान था, नाव में बैठा कोई दिल का अरमान था। माझी ने पतवार थामी तो समझ आया, हर सफर को मंजिल से ज्यादा अपनों का साथ चाहिए। साथियों, हिंदी फिल्मों में नाव, बोट या कश्ती में बहुत सारे मशहूर और सुरीले गीत फिल्माए गए हैं, तो आज हम ऐसे ही गीत आपके लिए लेकर आए हैं जो नाव में बैठे कलाकारों पर फिल्माए गए। तो आपको ऐसे कौन से गीत पसंद हैं या फिलहाल आपको याद आ रहे हैं, तो लिख दीजिए हमारे FB पेज पर। और ये भी बताइए कि आपने कश्ती में बैठकर कहां कहां की सैर की। इसके अलावा आपके इलाके, शहर, गांव, कस्बे में कौन सी नदी बहती है, क्या नाम है उनके, और आप भारत में बहने वाली कितनी नदियों के नाम जानते हैं। और जब नदी, झील, नाव, कश्ती, शिकारा की बात हो तो बताएं कि कभी हाउस बोट में रहे तो कैसा लगा। और अब बात अमर प्रेम की, एक ऐसे पवित्र और अनकहे रिश्ते की कहानी जो समाज के बंधनों से परे है। दो लोगों के दरमियान एक गहरा और कोमल रिश्ता जो आत्मिक और मानसिक जुड़ाव बन जाता है। तो हमें ये बताएं, इस फिल्म का कौन सा संवाद है जो अमर हो गया। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के फिल्म में निभाए गए किरदारों के नाम लिख दें। और साथ में ये भी बताएं कि इस फिल्म के पहले हिस्से में जो बाल कलाकार का किरदार था नंदू, तो बड़ा होने पर नंदू का ये किरदार किस अभिनेता ने निभाया था।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए। पुष्पा और आनंद बाबू, मशहूर डायलॉग था पुष्पा आई हैड टीयर्स, और बड़ा होने पर नंदू का किरदार निभाने वाले अभिनेता का नाम है विनोद मेहरा। बाल कलाकार थे मास्टर बॉबी, जिनका असली नाम था मासूमा, और साथी कलाकार थे बिंदु मदनपुरी, सुजीत कुमार और फरीदा जलाल। आपके कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं हम। जिंदगी के कई रंग हैं, कई सपनों की खूबसूरत दुनिया, कहीं अपने और पराए हैं, कहीं खुशियों की आहट है तो कहीं मन में उठता तूफान। एक माझी सबको नदी पार कराता है पर खुद किनारे की तलाश में रहता है, पर एक दिन समझ आया किनारा बाहर नहीं मन के भीतर है। वक्त के साथ इंसान खुशियों और गमों की धूप छांव से गुजरता हुआ अपनों से मिले अनुभवों के साथ थोड़ा संजीदा हो जाता है। दिन कितने भी कम हो, ख्वाब देखने की और तूफान को किनारा बनाने की चाहत ही इंसान को जिंदा दिल बनाए रखती है। एक साथी ने लिखा है, मैं पिछले सप्ताह ही कश्मीर की वादियों में समय गुजार कर आया हूँ। मैंने डल झील में पत्नी के साथ गाना भी गाया, माझी नैया ढूंढे किनारा। गाने हमें रास्ता दिखाते हैं, जैसे हिम्मत हारे व्यक्ति के लिए तुझको चलना होगा। एक साथी ने लिखा है कि जब जब फूल खिले, शशि कपूर नंदा और कश्मीर के डलहौजी में इसे फिल्माया गया था। आवास की दुनिया के दोस्तों, मन चंगा तो कठौती में गंगा और नेकी कर दरिया में डाल। मानो तो गंगा हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा में डूबा ना जमुना में डूबा।

डूब गया मेरा मन तेरी दो आंखों में, हुस्न पहाड़ों का। ऐसे मुहावरे और बहुत सारे गाने गीत जिसमें किसी नदी पहाड़ का नाम आया है तो लिख दे। और एक एक अभिनेता बैलगाड़ी चलाते हुए नदी सागर की बातें करते हुए नदी नदी ताल तलैया का गीत गा रहे हैं, तो बता दीजिए कि कौन से अभिनेता हैं वो। एक गैम्बलर और उसका तेज तर्रार हमशक्ल सीआईडी पुलिस अधिकारी, दोनों की पहचान को लेकर रोमांचक और भ्रमित करने वाले मोड़ आते हैं। अंत में गैम्बलर और इंस्पेक्टर दोनों मिलकर खतरनाक अपराधियों की साजिश को नाकाम कर देते हैं। तो बताइए कि द ग्रेट गैम्बलर में अमिताभ बच्चन की दोनों भूमिकाओं के नाम क्या थे और उनकी दोनों नायिकाओं के नाम भी बताइए। और ये जो गीत अभी आप सुनने वाले हैं, ये किस देश में, किस लोकेशन पर इसे फिल्माया गया था, और इस गीत में जो गायक गा रहे हैं उनका नाम भी जरूर लिख दें।

0: छतवा तानी सही बात है, बड़ा आनंद आए जब खुद बरसात में चले और पीछे से छाता के और लेके चले, तो मन तो वाकई में एकदम
1: खुश हो
0: गदगद हो
1: जाता
0: जाए।
1: है। बिल्कुल सही कहो सत्या। और देखा गीत गाओ नहीं और बातचीत हमारे सबका सब चलते रही, तो वही के बीच देखे एक और बातचीत है कि हाथों में मोबाइल और परिवार से दूरी।
0: अरे बहनी, ई बातचीत तो बहुत ही सही बताऊ कि आजकल हमें लगत है ये हर जगह ही चीज हो रहा
1: हाँ,
0: बा।
1: अभी तोहरा देखा केहू खिया केहू जाता है, चार सदस्य बैठा है हाँ? तो ओमे जौन बा बातचीत मनाई कम करा था, अपन अपन मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, तो बताओ वहाँ जाए से का मतलब हुआ? भाई तू गई हो कि हो कि यहाँ बातचीत करे कि मोबाइल चलावे गए?
0: बिल्कुल सही कहती हो,
1: तो यही से संबंधित है वो देखा बातचीत, हाथों में मोबाइल और परिवार
0: मोबाइल
1: से
0: पहनी
1: दूरी,
0: मोबाइल
1: निर्जा निसाद से अभिलाषा श्रीवास्तव को बातचीत है, तो चला सुन लिया जाए।
0: मोबाइल पहनी मोबाइल आजकल ऐसा चीज हो गई बा जोन हर घर में हर लोगन के पास रहता। कहे के मतलब अगर कहीं बाहर जा रहा है तो साथ में मोबाइल, घर में जो व्यक्ति हैं उनके हाथ में मोबाइल। मोबाइल एक ऐसा चीज हो गई बा जिस पर लोगन का बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पे आश्रित हो गए हैं। कहे के मतलब ये है कि मोबाइल के बिना काम भी कुछ रुक जाते हैं, जैसे आजकल बहुत महत्वपूर्ण काम है मोबाइल से, जो परदेश में भैया हरे रह रहे हैं या बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनके लिए अगर पैसा पहुँचावे के है तो ऑनलाइन के जोन बटे बैंकिंग के द्वारा बड़े आसानी से पैसा पहुँच जाता है, और ओके साथ साथ कई सुख सुविधा भी मोबाइल से मिलत हैं। मुन्ना मोबाइल आजकल ऐसा चीज़ हो गई बा बहनी जो दूर देश विदेश की जानकारी हर तरह तो हम लोगन के देथिन, मुन्ना घर ही रहे वाले लोगन से कैसे की दूर बना देथिन और पता भी नहीं चलते। मतलब एक साथ रहते हुए भी, एक साथ जुड़े होते हुए भी एक दूसरे से कितने परे हो जाथिन। यही सब विषय पर आज चर्चा करे के लिए हमारे बीच आई हैं निर्जा निषाद बहनी, तो चले इन्हीं से चर्चा की जाए कि हाथ में मोबाइल और परिवार से दूरी

0: क्या तरह का है। तो सबसे पहले नीरजा जी, आपका हमारे पनघटे पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप बतावें कि हाथ में मोबाइल और परिवार में दूरी का है।
1: एक दौर रहा जब शाम होते ही परिवार के लोग साथ बैठत रहे, दिन भर की बात होत रही, बच्चे अपन छोटी छोटी बात बतावत रहे और बड़े अपन दिन भर का अनुभव साझा करत रहे। लेकिन आज के तो तस्वीरें बदल गई है। आज हर घर का कहानी एक जैसे हो चुकल है। घर में चार लोग यदि एक के कमरा में रहत हैं तो वो एक दूसर से बात करे के बजाय अपने अपने मोबाइल के स्क्रीन पर उंगली चलावत रहत हैं। सोशल मीडिया के आभासी दुनिया में हम लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स बटोरे की होड़ में इतना अंधे हो गए हैं कि हमें अपने पास बैठल अपन माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और बच्चन के मौजूदगी का एहसास से ना होता।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहो बहनी। जैसे कि हम अभी कहा थोड़ी देर पहले कि देश विदेश में जोन भैया हरे हैं वो अपने माता पिता का हाल चाल ले लेती। और देखा मोबाइल से तकनीकी का कितना सुविधा बा। अगर बाहर रहे वाले हैं तो आवाज़ से फ़ोन से अगर बात करतीन तो माँ अपने बेटे के आवाज़ से परख लेतीन कि आज हमारा बच्चा कहे इतना दुखी दुखी बोल रहा है। तो तुरंत पूछतीन का भैया कहे इतना दुखी है। मुना जो बच्चे घर ही में हैं वो उनके मन में का चल रहा बा, कैसन बात है, एक ही विषय पर वो अपने माता पिता भाई बंधु से चर्चा ही नहीं करते।
1: बात सही है। आज एक के छत के नीचे रहते हुए भी लोग जौन बाटे मानसिक और भावनात्मक रूप से एक दूसरे से कोसों दूर हो रहते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहूँ।
1: तकनीक जौन बाटे ना दुनिया के दूसरे कोने में बैठल व्यक्ति के तो हमारे करीब ला दिया, लेकिन जो हमारे बिल्कुल पास बैठा है वो भी हमसे कोसों दूर कर दिया। तो इसमें कोनो संदेह नहीं बा कि दूरी के कम करे बनाएल गए मोबाइल कहीं न कहीं अपनों के बीच दूरी बढ़ावे लगा है। ये सच है कि मोबाइल हमारे जीवन के एक बड़ी आवश्यकता है।
0: बिल्कुल सही कहती हो।
1: उसने हमार जिंदगी बहुत आसान बना दिया। दूर बैठल अपने प्रियजन से हम तुरंत बात कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बैंकिंग और खरीदारी जैसा अनेक काम हो सकते। मोबाइल ने तो दुनिया के हम हथेली में ला दिया।
0: हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मोबाइल अगर आपके हाथ में है तो समझे दुनिया आपके हाथ में। आप एक छोर से विश्व के, भारत के या बाहर विदेश में कहीं भी आप कोई जानकारी झट से अपने मोबाइल के द्वारा पता कर सकते हैं। और ओकरे अलावा कोई नई चीज है तो ओकरे विषय में जानकारी भी मिल जाता, पढ़ाई लिखाई संबंधित भी ज्ञान हासिल हो जाता। यहाँ तक कि हम लोग यदि कोई दवा वगैरह डॉक्टर की सलाह से ले आए के करत है या कोनो समस्या है तो वो मोबाइल के द्वारा पूछा जा सकता था कि कोनो चीज में है कैसे। ये बात तो बिल्कुल सही है कि मुट्ठी में आपके इतनी समय विश्व समाया है। मुना इतना जान लें कि हर चीज का सकारात्मक के साथ कुछ नकारात्मक भी हो, जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
1: ये तो बात सही है कि मोबाइल जो है दुनिया का मेरे मुट्ठी में ला दे लेगा, लेकिन यह बात झुटलावल नहीं जा सकत है कि दुनिया के हथेली पे लावत लावत जौन बा हम अपन घर परिवार और अपने उनके जो है पीछे छोड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहते हैं। और सबसे पहले आपसे हम ये पूछब कि पहले के समय में देखा कैसन संझा होत रही और आज के समय में कैसन संझा होता, और संझा वैसन होता मुना संझा के हम लोग शाम के समय में जोन समय बितावत रहे उस समय बितावे में कितना बदलाव आएगा बा पहले में और अब में।
1: पहले परिवार में जो शाम का समय होत रहे ओकर एक अलग महत्व रहे। बच्चन स्कूल के दिन भर के बात बतावे, दादी दादा से कहानी सुने, पिता के आवे का इंतजार करत रहे, एक तरफ परिवार के लोग साथ बैठत रहे, चाय पियत रहे, दिन भर के बात साझा करत रहे, एक दूसरे के सुनत समझत और समय देत रहे। पर आज के समय में परिवार के साथ मोबाइल के साथ होता, सब चाय पे साथ तो होत हैं पर बात नहीं होत, सब अपने अपने मोबाइल में मगन रहत हैं। यदि कोनो सदस्य कुछ पूछत या बात करत है तो ये जवाब आवत है अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, अभी देख ली, फिर मोबाइल देखत देखत कितना समय निकल जाता है
0: पता ही नहीं चलता।
1: ये तरह शाम के साथ साथ बात तो चली जाता है और यही हम सब के आदत बनत जाता है। हमारे अपने के बात अनकही और अनसुनी रह जाता है और हमें तनको आभास सुनाई हो।
0: देखा अगर देखा जाए बनी निर्जा बनी तो शाम के वक्त बहुत ही अच्छा समय होता अपने परिवार के लोगन के साथ बैठ के चाय और थोड़ थोड़ नाश्ता कुछ भी आनंद लेते हुए बतकही करते हुए जोन बटे हंसी ठिठोली करत भय, वो समय वाकई में बीतत चला जाता।

0: हमें लगता आगे आवे वाली पीढ़ी इस सब के बारे में पता नहीं जान पही ही आना जान पही। कहे कि आजकल बच्चे अपने कमरे में उन्हें अकेला लगबे नहीं करते, बच्चन के या बड़े भी
1: सही
0: थक
1: बात
0: गए
1: है।
0: उन्हें अकेलेपन की जरूर जैसे महसूस ही नहीं होते। कहे कि साथ में मोबाइल है, उनके मन में जौन तरह के भाव हैं, जौन तरह के सवाल हैं वो मोबाइल से ही पूछ लेती।
1: सही बात है। अपन भावना अपन बात जो है मोबाइल से पूछ तो लेते हैं, लेकिन उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए लोगन के टच में रहना बहुत जरूरी है। अब धीरे धीरे जोन बाटे ये मोबाइल का प्रभाव हमारे जो है सामाजिक जीवन पे और पारिवारिक जीवन पे बहुत पड़े लगल बा।
0: हाँ बिल्कुल सही कहें।
1: रिश्ता जो है ना अचानक नहीं टूटी टूटेला, वो अक्सर छोटी छोटी उपेक्षाओं से कमजोर होतला, जिसका प्रभाव हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर पड़ेला।
0: बिल्कुल।
1: जरूरत से ज्यादा मोबाइल में लगे रहने से जरूरत से ज्यादा हम मोबाइल में लगे रही तो परिवार में आपसी संवाद में कमी आ जाला। जब बातें चीत कम हुई तो एक दूसरे के भावना के भी समझल मुश्किल हो जाई।
0: बिल्कुल सही कहती हूँ। जब हम एक दूसरे से बातचीत करी था तो उनके मन में का चल रहा वह उथल पुथल होके आदमी समझ सकत है। मुना जब एक दूसरे से कौन तरह का संप्रेषण है ना हुई, वार्तालाप है ना हुई, तो फिर कैसे पता चले कि उनके मन में का चल रहा बा।
1: सही बात है। तो ये कारण है कि आजकल छोट छोट बात पर परिवार में गलत फहमी और विवाद और दूरियां बढ़त रहा था। अब माता पिता काम में व्यस्त रहे ना, फिर फोन में लगे ओकरे बाद से फोन में लगे रहे, जेके कारण बच्चन के ना उस समय काल संस्कार मिल पा रहा है जोन जोन बच्चन के मिले के चाहिए। अकेलापन से बच्चे खाती कमे उम्र से जोन बा मोबाइल का आदि हो जाते हैं, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास खातिर घातक बाटे।
0: ये बिल्कुल सही कहें कि हमारे परिवार और समाज के जीवन में, समझ ला हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में इतना बदलाव आ जा रहा बा कि एकर प्रभाव सीधे तरीके से हमारे लोगन के बच्चन पे पड़ रहा बा,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: तो ई समस्या का, मोबाइल की समस्या जोन बन रही बा, एक निदान का कारण है और ये समस्या का मुख्य कारण है।
1: ये मोबाइल रूपी समस्या का मुख्य कारण तरह तरह का एप्लीकेशन जो है ना मोबाइल में लोगन के अपने ओर आकर्षित करके रखेला। और ओके देखत देखत लोगन के समय का आभासे ना होत था। और घंटों बीत जाला। यही तरह इंटरनेट में का चलत बा, इंटरनेट की दुनिया
0: बिल्कुल।
1: में कहीं हम पीछे न रह जाएं, ये चक्कर में भी लोग ऑनलाइन रहता ना। ये तरह इंटरनेट भी एक मुख्य कारण में से एक बा। यही तरह वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल वर्क जन जेमे लोग घर में तो रहे ला, लेकिन अपने काम के कारण फोन और लैपटॉप से चिप रहे ला, जिसे परिवार वाले लोगन से जो है संपर्क और बातचीत कम हो पावेला।
0: बिल्कुल सही कहती हैं कि देखो काम तो जरूरी है ना, लेकिन काम की रफ्तार इतनी तेज ना कह दें कि अपने आप के अंदर थोड़ा सा ठहराव भी ना ले आ पाएं।
1: बात
0: और
1: सही
0: ये
1: है।
0: ठहराव ज्यादा जरूर, जैसे आप अबहिन वर्क फ्रॉम होम का बात करें कि घर में रहते हुए भी काम भाई जरूरी है, और उन्हें भले घर से काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें एक शांत माहौल की जरूरत होता है। मुना बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, जैसे चाय के लिए समय निकाल लें, या थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी देर के लिए उठ करके अपना थोड़ा टहल घूम लें, उमन थोड़ा सा परिवार से लोगन से बात करें। कहे के मतलब कि अगर आप खाना खाए रहा हैं, आप चाय पी रहा हैं, या फिर कोनो और काम कर रहा है, तो हाथ में जो मोबाइल है ऊपर जो अंगूठवा खसकत रहता है, इतना आसानी से खसकत रहता है बहनी कि चाहे बात करत रहा चाहे जौन करत रहा वो अपन काम करत है। तो कहे कि मतलब उतनी समय थोड़ा ये अंगूठा के विराम देवे के
1: बिल्कुल
0: चाहिए,
1: बिल्कुल
0: उंगलियन के विराम देवे के चाहिए। कहे से कि मोबाइल की जो समस्या है ना, ये हमें लगा था कि हर काम के समय करत रहे से ज्यादा होता।
1: लेकिन एक बात यहाँ स्पष्ट कही जरूरी बा कि मोबाइल दुश्मन नहीं है, मोबाइल हमारे जीवन की बहुत आसान बनावला। समस्या मोबाइल नहीं बल्कि ओकर अनियंत्रित उपयोग है। जे तरह भोजन हमारे लिए जरूरी है लेकिन ओकर अति करत है, वही तरह मोबाइल भी जरूरी है लेकिन ओकर अत्यधिक इस्तेमाल हमारे समय और रिश्ते के प्रभावित करत है।
0: बिल्कुल सही कहती हैं। अच्छा ये बता मैं कि मोबाइल रूपी

0: कैसा
1: बड़ा
0: लगी है?
1: नेक गीत सुनाओ बहनी,
0: मन
1: है
0: खुश
1: ना?
0: होएगा ना?
1: बैरी बिछुआ, बिल्कुल सही कहती हो। और एक बात बताओ बहनी,
0: हाँ बोलो।
1: देखा इतनी समय, चाहे हर समय बहनी, अरे चाहे जितना व्यस्त रहें चाहे जितना खाली रहें, मुना घर का एक ऐसा मेन जगह रहता है जहाँ सवेरे संझा होना ही होना बा, जाना ही बा हुआ जगह जोन बटे। और वहाँ से क्या समझ ले, वह जगह बच्चन का भी ध्यान लगा रहा था, बड़न का भी लगा रहा था, और कि का आज रसोई घर से बढ़िया खुशबू आए।
0: हाँ तो तू रसोई घर के बारे में बात कर रहा था ना, तो आज हम सोचा थे कि अपने बहनी हरन के और तोहके राजस्थानी भरवा हरी मिर्च का रेसिपी बताई,
1: बिल्कुल
0: और
1: बहनी।
0: जैसे कलम से उठाई ले और सामग्री जौन जौन बोला थी फटाफट लिखे जा। तो सामग्री है जैसे मोटी हरी मिर्च 8-10 ठे ले लिया, 3 ठो बड़े चम्मच बेसन के ले लिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जौन बा एक छोटा चम्मच सौंफ, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा थोड़ा, आधा आधा एक एक चम्मच, जीरा आधा चम्मच, हींग, नमक और तेल आवश्यकता अनुसार। अब क्या करे सत्या, कि मिर्च के धोए के अच्छी तरह से सुखा ले, और बीच में लंबा चीरा लगाए के ओमे जोन बीजा बाटे ओके बाहर कर दे निकाल के, और कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के बेसन के धीमी आँच में सुनहरा होए तक, खुशबूदार होए तक ओके भूनत रह, धीमी आँच कह के। हाँ, जब ओमे खुशबू निकले लगे और सुनहरा हो जाए तब जौन बाप तू अपन गैस बंद कर दे। अब एमा धनिया जौन जितना सामान बताए रहे, धनिया है, सौंफ है, अमचूर है, हल्दी है, लाल मिर्च है, नमक है, और थोड़ा सा हींग डाल के मिलाए दे। हाँ, मिलाए के धीरे धीरे चलाए के, और एकरे बाद हाँ ये सब मिलाए के बाद तब फिर तू गैस बंद कर दे, ठीक है। अब तैयार मसाला थोड़ा जब ठंडा हो जाए तो हर मिर्च में अच्छी तरह से भर दे, जौन जो चीरा लगाए रहो ना, बिया निकाले रहो, तो ओ में जौन बो के अच्छी तरह से भर दे। एकरे बाद कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा डाला, और भरा हुआ जौन मिर्च जौन में भरे हो ओके सावधानी से उनमें रख दे।
1: तल्ले।
0: हाँ, आराम से रख दे, फिर ढककर धीमी आँच पर 8 से 10 मिनट पकावे, बीच बीच में ओके हल्का हल्का पलटते रहे ताकि हर जगह से उसे
1: हाँ,
0: खाई जाए।
1: अच्छा से हो
0: हाँ,
1: जाए।
0: जब मिर्च गर्म हो जाए और मसाला हल्का कुरकुरा हो जाए तो गैस के बंद कर दे, और गर्मा गर्मा राजस्थान

0: राजस्थानी भरवा मिर्च दाल है, बाटी है, रोटी है या पराठा के साथ खूब स्वादिष्ट लगा था, खुद खाए और परिवार के भी खिया हुए।
1: बिल्कुल सही कहती हो बहनी, लाल वाला भरवा अचार तो अच्छा लगबे करत है ना। मुना जाना थू कि ई हर मौसम में जो है नहीं बन पौते लाल वाला, वो तो ठंडके के मौसम में बना था, मुना हरा मिर्चा वाला तो हर मौसम में बन सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखा तो के तो हम जौन बा राजस्थानी भरवा मिर्च के बारे में जौन बा बताए, तो अब तुम्हें गाना ना सुनो वो।
1: बिल्कुल सुनवाओ, तो हो के सुनवाओ, अपने बहनी और इनके श्रोता भैया बहनी और इन भी सुनी है। तो चलो फिल्म गंगा जमुना से तो सुनाओ थी लता मंगेशकर जी की आवाज में,
0: चलो सुना जाए।

0: दगाबाज तोरी बतिया ना मानो रे।
1: देखा बहनी, हमार बतिया तह के मानन पड़े। और हम अपने बहनी भरन से उम्मीद करी था कि बहनी भरे अपन बात हम लोगन तक कौनो न कौनो माध्यम से पहुँचाई दी है, है ना। देखा हम लोग अपने बहनी भरन के पास बैठी था, बातचीत करी था, तो जरूरी है कि ये संदेश सुन लें बहनी हरे, ताकि ओकरे माध्यम से हम लोगन तक जुड़ सकें।
0: बिल्कुल, तो चला सुना जाए।
2: पनघट, जहाँ बातन में होत है अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी है।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़ा चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
4: हमार ईमेल एड्रेस है
5: panghatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है panghatprogram@gmail.com।

0: एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई। सारे अक्षर छोटी एबीसीडी या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-492-6250। तो सखियन देर कोने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सबके
2: बेसब्री से इंतजार रही।
3: हाँ,
4: इंतजार तो वाकई में रही, हम हो के रही कि हमार बहनी हरे कार्यक्रम सुनिए और आपन जो है विचार ईमेल के माध्यम से हम लोगन तक पहुँचाई हैं।
3: हाँ, और देखा अभी देखा संदेश में व्हाट्सएप नंबर भी जौन बतावा गया है, तो देखा अब घड़ी जौन पर इशारा करा था विदा लेवे बिना, तो
4: बहनी हरन से राम राम की इंजाय। राम राम बहनी।

0: New York later tonight. Top seed Belarusian Sabalenka booked her place in the final with a 7-5, 6-2 victory over third seed American Jessica Pegula, while Rybakina from Kazakhstan defeated fourth seeded Coco Gauff in the semi-finals. Rybakina and Sabalenka have met 17 times, with Sabalenka leading their head-to-head record 10-7. In Grand Slam finals, the two have also faced each other at the Australian Open, with Rybakina winning in 2026 and Sabalenka claiming the title in 2023. Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and Lok Sabha Speaker Om Birla have extended their wishes to the countrymen on the occasion of Prakash Purab of Sri Guru Granth Singh Sahib today. In a social media post, Mr. Shah said that the sacred scripture encompasses invaluable teachings on service, sacrifice and equality. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS summit under India's presidency to begin shortly in New Delhi. Focus on global governance, multilateralism, trade, security and supply chains. World leaders assemble for two-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping this evening. Prime Minister Modi holds bilaterals with his Malaysian, Vietnamese and Ethiopian counterparts. Also confers with Crown Prince of Abu Dhabi. Houthi rebels in Yemen see strategic islands tightening grip on Red Sea shipping route. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Orange alert for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, Telangana and Vidarbha for today. And in hockey, Indian women team enters Junior Asia Cup 2026 final, defeating South Korea 5-1 in Mochi, China. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत की अध्यक्षता में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबू धाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोखी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित।
2: जी जागृति, देखिए।
1: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं।
2: जी जागृति, देखिए इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे।

0: इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। ये नेता इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह यह भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति
1: जी, धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी जिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं, और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
2: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
1: जी,
2: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया और मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनफिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति।
1: जी आनंद, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगशो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थीं, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की

0: सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
2: India's innovation, भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जल डमरू बध्या दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गो में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल AGTF और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा OFTEC ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक विक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
3: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश जी।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबुधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। आइए सुनते हैं कृति श्रीवास्तव के स्वर में देवी गीत।

हमारी गोदी जन्म लियो तभी गोद लियो जब जाई बोली लगी कलेजे माँ के वहाँ ठैयावा।

राम मिल गए मुनि नारद जी कहाँ लगे समझाई, राम मिल गए मुनि नारद जी कहाँ लगे समझ

अरे उमरिया भी लड़ी कही चले जहाँ वहाँ दुनिया के गोसैया प्रभु से मिलवैया चले चले जहाँ वहाँ दुनिया के गोसैया।

लोकगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं। ये सभा अब समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजे हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम धरती के गीत। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम धरती के गीत। आज के कलाकार हैं

0: इस कहरवा के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम धरती के गीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में युवचन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी।

0: आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। शाम का ये वक्त कुछ ऐसा होता है ना, जब दिन भर की भागदौड़ थोड़ी धीमी पड़ने लगती है। चाय का कप हाथ में आ जाता है और दिमाग में एक साथ 10 सवाल घूमने लगते हैं। आज का दिन कैसा गया, कल क्या करना है, करियर का क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए करना क्या है। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसे ही कुछ सवाल चल रहे हैं तो उन्हें थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि श्रीवास्तव। आज की शाम हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसका कनेक्शन सीधे हमारी पढ़ाई, करियर और फ्यूचर से है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात सोचिए कि मान लीजिए आपके घर में कोई नया स्मार्टफोन आया, ठीक है, फ़ोन महंगा है, ब्रांड भी अच्छी है, कैमरा एकदम शानदार, लेकिन अगर आपको उसे प्रॉपरली चलाना ही नहीं आता तो फ़ोन की सारी स्पेसिफिकेशंस होने के बावजूद उसका फ़ायदा कितना होगा। अब इसी तरह कभी कभी हम अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करते रहते हैं, वेदर इट इज़ डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, कोर्सेज, लेकिन क्या सिर्फ उन्हें हासिल कर लेना ही काफ़ी है। और ये सवाल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, एक जॉब करने वाले इंसान से लेकर फ्रीलांसर तक, एंटरप्रेन्योर से लेकर आर्टिस्ट तक, हर जगह एक चीज़ बार बार सामने आती है, आपके पास क्या है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आजकल कि आप कर क्या सकते हैं। और शायद आपने भी अपनी डेली लाइफ में इसका कोई ना कोई एग्जाम्पल देखा होगा। किसी क्लास में एक स्टूडेंट बहुत अच्छा मार्क्स लाता है लेकिन प्रेजेंटेशन देने में नर्वस हो जाता है। वहीं कोई दूसरा स्टूडेंट हो सकता है, वो शायद टॉपर नहीं होगा लेकिन वो कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखता है, लोगों से कम्युनिकेट करता है और किसी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाल देता है। अब सवाल ये है कि वर्क स्पेस में, रियल लाइफ में, इन दोनों में से कौन ज़्यादा आगे जाएगा, क्या सिर्फ मार्क्स या डिग्री, या फिर कुछ और भी है जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो। यही सवाल आज की हमारी शाम की कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इसका जवाब अभी नहीं, थोड़ी सी अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। पहले हो जाए एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद लौट कर इसी सवाल पर करेंगे खुल के बात।

दोस्तों वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे उस चीज़ की जो आज के समय में हमारी पढ़ाई और करियर के बीच एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज बनती जा रही है, और अब समय आ गया है वो टॉपिक रिवील करने का। आज का हमारा टॉपिक है सफलता का नया मंत्र, डिग्री नहीं स्किल कितनी ज़रूरी। जी हाँ, एक समय था जब करियर की शुरुआत अक्सर एक सिंपल फॉर्मूले से होती थी, डिग्री लो, नौकरी ढूंढो, करियर शुरू। लेकिन आज पिक्चर थोड़ी सी बदल गई है। आज एम्प्लॉयर्स सिर्फ ये नहीं देखते कि आप कहाँ से पढ़ाई की है आपने या आपके पास कौन सी डिग्री है, वो ये भी देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं या कर भी पाते हैं या नहीं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं या नहीं, और टीम के साथ काम कर सकते हैं या नहीं, नई चीज़ सीख सकते हैं, या सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो नॉलेज आपने हासिल करी है उसे प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अब बात आती है डिग्री वर्सेस स्किल की, असली फ़र्क क्या है। देखिए, सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि डिग्री की इम्पॉर्टेंस ख़त्म नहीं हुई है। डिग्री अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई प्रोफेशंस में तो डिग्री बेसिक रिक्वायरमेंट ही है। डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल एजुकेशन चाहिए, लॉयर बनने के लिए लॉ की क्वालिफिकेशन, अकेडमिक करियर में भी स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। लेकिन डिग्री आपको दरवाजे तक पहुँचा सकती है, और स्किल उस दरवाजे के अंदर आपकी जगह मजबूत करती है। मान लीजिए दो कैंडिडेट्स हैं, किसी जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के पास सिमिलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन एक कैंडिडेट को प्रेजेंटेशन बनाना आता है, वो कॉन्फिडेंटली बात कर सकता है, बेसिक टेक्नोलॉजी समझता है, प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकता है और नई चीज़ें जल्दी सीख लेता है, और दूसरे के पास भी वही सेम डिग्री है लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम है। तो नेचुरली एम्प्लॉयर ये सोचेगा कि कौन मेरे काम को बेटर

बेहतर तरीके से कर पाएगा। यहीं से स्किल की इम्पॉर्टेंस सामने आती है। स्किल का मतलब सिर्फ हम जनरली सोचते हैं ना कि कंप्यूटर सीख लेते हैं, ये बहुत ही कॉमन सी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि स्किल का मतलब सिर्फ कोडिंग सीख लेना, कोई सॉफ्टवेयर चला लेना या कोई टेक्निकल कोर्स कर लेना नहीं है। स्किल्स कई तरह की हो सकती हैं। कम्युनिकेशन स्किल टू बिगिन विथ, अपनी बात को आप क्लियरली कैसे रख सकते हैं, कैसे अपने वर्ड्स को आर्टिकुलेट कर सकते हैं सो दैट द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड यू वेल। क्रिटिकल थिंकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम आजकल ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग टेल्स अस कि कोई भी इंफॉर्मेशन को हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें, उसके बारे में सवाल करें और फिर उसको एक्सेप्ट करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज येट अनदर स्किल, समस्या आने पर सिर्फ शिकायत नहीं करना बल्कि सॉल्यूशन भी ढूंढना। और टाइम मैनेजमेंट, काम को प्रायोरिटी के हिसाब से मैनेज करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हेन वी टॉक अबाउट कोई भी जॉब, तो टीम वर्क इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ मिलकर काम करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है बिकॉज अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, तो यू शुड हैव दैट सेंस ऑफ टीम वर्क। और अडेप्टेबिलिटी सिचुएशन, मतलब कोई भी हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है तो उसमें हम खुद को अडेप्ट कर पाएँ, उसमें हम खुद को बदल पाएँ। और आज के डिजिटल दौर में डिजिटल लिटरेसी और टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल होना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये बढ़ता जा रहा है। यानी स्किल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुझे ये काम आता है, बल्कि ये भी है कि नई सिचुएशन आए तो मैं सीख सकता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब ये क्या है, अब आप क्वेश्चन करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो ये बात आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं क्या करूँगा, क्या स्किल डेवलप कर सकता हूँ। आप अपने आसपास से शुरुआत कर सकते हैं। कॉलेज में प्रेजेंटेशन है, सिर्फ प्रेजेंटेशन कंप्लीट मत करिए, कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिस कीजिए। ग्रुप प्रोजेक्ट है, सिर्फ अपना हिस्सा पूरा करके अलग मत हो जाइए, टीम वर्क सीखिए। असाइनमेंट मिला है तो सिर्फ इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट मत करिए, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना सीखिए। और अगर कोई नया सॉफ्टवेयर टूल या टेक्नोलॉजी सामने आती है तो ये मत सोचिए कि ये मेरा काम नहीं है, कभी कभी वही चीज़ फ्यूचर में आपकी सबसे बड़ी यूजफुल स्किल बन सकती है। तो सक्सेस का नया फॉर्मूला आज के टाइम में थोड़ा सा बदल रहा है दोस्तों। आज की दुनिया में शायद सक्सेस का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो गया है कि डिग्री प्लस नॉलेज प्लस स्किल प्लस एक्सपीरियंस प्लस लर्निंग एटीट्यूड। और इन सब में एक चीज़ कॉमन है, कंटिन्यूअस लर्निंग, क्योंकि आज जो स्किल आपको आगे ले जा रही है, हो सकता है कुछ साल बाद वही बेसिक रिक्वायरमेंट बन जाए। टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स बदल रही हैं, वर्क कल्चर बदल रहा है, इसीलिए सिर्फ ये कहना कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली शायद अब इनफ नहीं है, हमें ये भी कहना होगा कि मैं सीखना अभी भी जारी रख रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी बातचीत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है या डिग्री की वैल्यू कम हो गई है। नो नो, नॉट दैट, यू गॉट दैट रॉन्ग। डिग्री आपकी मेहनत, नॉलेज और एकेडमिक जर्नी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन डिग्री को अपनी मंजिल मत समझिए, उसे अपनी फाउंडेशन बनाइए, उस फाउंडेशन पर स्किल्स डेवलप कीजिए, क्योंकि आखिरकार सर्टिफिकेट ये बता सकता है कि आपने कुछ सीखा है, लेकिन आपके स्किल ये सिखाती हैं और ये दिखाती हैं कि आप उस लर्निंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अगली बार जब आप अपने करियर के बारे में सोचें तो सिर्फ ये मत पूछिए कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, एक सवाल और पूछिए, मेरे अंदर कौन सी ऐसी स्किल है जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है। और अगर आज उस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्किल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास पैदा होते ही आ जाती है। इट इज़ अ थिंग दैट जो हम एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और समय के साथ ये बेहतर होती जाती है। तो डिग्री लेते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए, लेकिन स्किल्स को भी अपनी जर्नी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि आज की दुनिया में शायद सबसे वैल्यूएबल क्वालिफिकेशन यही है कि मैं सीख सकता हूँ, मैं अडाप्ट कर सकता हूँ और मैं करके दिखा सकता हूँ। सुनते रहिए युववाणी, जुड़े रहिए अपने सपनों से, और विल बी राइट बैक आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक।

तो दोस्तों, गीत के उस पार अभी हमने बात की स्किल्स की, और एक स्किल ऐसी भी है जिसे शायद हम अपनी करियर लिस्ट में कभी लिखते ही नहीं हैं। सोचिए, अगर आपके सामने अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को चोट लग जाए या किसी को अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, तो उस वक्त आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा? शायद आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी अवेयरनेस और ये बेसिक नॉलेज कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि इमरजेंसी कभी अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती है, और कई बार तो डॉक्टर या एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले के कुछ मिनट बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वहीं अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन मौजूद हो जिसे मेडिकल ट्रेनिंग मिली हो या उसकी एजुकेशन और प्रोफेशनल नॉलेज भी उस समय बेहद

इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. यानी इमरजेंसी की सिचुएशन में नॉलेज, ट्रेनिंग और सही समय पर सही एक्शन, तीनों की अपनी अलग इम्पॉर्टेंस होती है. और आज की हमारी अगली चर्चा इसी बेहद ज़रूरी अवेयरनेस से जुड़ी है. दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की. हर साल वर्ल्ड फर्स्ट एड डे सितंबर के दूसरे सैटरडे को मनाया जाता है और 2026 में ये 12 सितंबर यानी कि आज मनाया जा रहा है. और इस साल की थीम है फर्स्ट एड इन माइग्रेशन कॉन्टेक्स्ट, यानी उन लोगों तक भी फर्स्ट एड की नॉलेज और हेल्प पहुंचाना जो माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट या ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशंस के कारण एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. इस थीम का फोकस है दोस्तों कि फर्स्ट एड एक्सेसिबल, इंक्लूसिव और अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अडैप्टेबल हो, ताकि मुश्किल समय में लोगों को अपनी और दूसरों की मदद करने का कॉन्फिडेंस मिल सके. अब सवाल ये है कि आखिर फर्स्ट एड है क्या और इसकी बेसिक नॉलेज हमारे लिए क्यों इतनी ज़रूरी है. फर्स्ट एड आखिर है क्या? अब फर्स्ट एड सुनते ही शायद आपके दिमाग में आ जाए कि एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स आता होगा जिसमें बैंडेज, कॉटन, एंटीसेप्टिक और बस. लेकिन फर्स्ट एड सिर्फ फर्स्ट एड बॉक्स तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों. फर्स्ट एड का मतलब है कि किसी का इंजरी या अचानक हुई हेल्थ इमरजेंसी में प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प मिलने से पहले दी जाने वाली शुरुआती मदद. इसका उद्देश्य मेडिकल ट्रीटमेंट को रिप्लेस करना नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य होता है कि जो सिचुएशन है उसको और बिगड़ने से रोकना और जो इंसान है उसको सुरक्षित रखना और प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प मिलने तक उचित सहायता देते रहना. और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सही इन्फॉर्मेशन. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फर्स्ट एड हमको देखने को मिलता है और हम सोचते हैं कि बस कुछ भी ऐसी दिक्कत हुई तो हम सामने वाले को हेल्प करने से हेसिटेट करते हैं, बट इट इज़ मच मोर देन दैट. अब सोचिए, आप किसी पब्लिक प्लेस पर हैं और अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी को खेलते हुए चोट लग जाती है, या घर में किसी को अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है. ऐसे समय पर आसपास के लोग नेचुरली परेशान हो जाते हैं. कोई कहता है जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, कोई कहता है इसे यहाँ बैठाओ, कोई कहता है थोड़ा पानी दो, और कई लोग मदद करना चाहते हुए भी वो थोड़े कन्फ्यूज होते हैं कि अगर सही कदम आखिरकार क्या होगा या क्या होना चाहिए. यहीं पर फर्स्ट एड की बेसिक नॉलेज यूज़फुल हो जाती है, क्योंकि इमरजेंसी में सिर्फ जल्दी करना ज़रूरी नहीं है, सही तरीके से जल्दी करना ज़रूरी है. और पैनिक नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए. इमरजेंसी सिचुएशन में पैनिक होना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन जितना पॉसिबल हो खुद को काम रखना ज़रूरी है. सबसे पहले सिचुएशन को असेस करना चाहिए कि क्या आसपास का एनवायरमेंट सेफ है, क्या जो इंजर्ड पर्सन है उसको इमीडिएट डेंजर से दूर करना तुरंत ज़रूरी है, क्या इमरजेंसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हमें उस इंसान को मूव करना चाहिए या नहीं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर सिचुएशन में एक जैसा एक्शन नहीं चाहिए होता. इसलिए फर्स्ट एड का पहला लेसन यही है कि पहले सिचुएशन को समझिए और फिर एक्शन लीजिए. हेल्प बुलाना भी फर्स्ट एड का हिस्सा है. कई बार हमें लगता है कि फर्स्ट एड का मतलब सिर्फ खुद कुछ करना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. इमरजेंसी सर्विसेज को भी समय पर कॉन्टैक्ट करना और सही इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो लोकेशन बताना, सिचुएशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देना और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना भी मदद का सही हिस्सा है. और अगर आसपास कोई मेडिकली ट्रेन्ड इंसान मौजूद हो तो उसकी गाइडेंस लेना भी बेहद यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि हर इमरजेंसी को अकेले हैंडल करने की कोशिश करना समझदारी नहीं होती दोस्तों, जब आपको उसके बारे में आइडिया ना हो. तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे बर्न की सिचुएशन हो जाती है ना, वो बहुत ही कॉमन है, हमारे घरों में अक्सर हो जाता है. घर में खाना बनाते समय या किसी गर्म चीज़ के कांटेक्ट में हम आ जाते हैं तो किसी को बर्न हो गया मान लीजिए, तो ऐसे समय में लोग कई तरीके के घरेलू उपाय बताने लगते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, लेकिन हर घरेलू नुस्खा सेफ नहीं होता दोस्तों. माइनर बर्न में जो अफेक्टेड एरिया होता है उसको कूल रनिंग वाटर के नीचे रखने की सलाह दी जाती है, और कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव भी होता है. लेकिन अगर बर्न गंभीर है, बहुत बड़ा एरिया अफेक्टेड है, या इंजरी गंभीर लग रही है, तो प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लेना ज़रूरी होता है. यानी फर्स्ट एड में सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये भी जानना है कि क्या नहीं करना है. और ब्लीडिंग की सिचुएशन अक्सर होती है ना, तो मान लीजिए किसी को चोट लगी है और ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे समय में घबराने के बजाय ट्राई टू काम योरसेल्फ, अगर पॉसिबल हो तो साफ़ कपड़े या स्टराइल ड्रेसिंग जो होती है उससे वुंड पर डायरेक्ट प्रेशर देना ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में मदद करता है. लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, लगातार जारी है, या इंजरी गंभीर है, तो मेडिकल हेल्प लेना तुरंत ज़रूरी होता है. और यहाँ भी वही बात, फर्स्ट एड का उद्देश्य ट्रीटमेंट करना नहीं है, बल्कि इमरजेंसी के शुरुआती समय में सही सहायता देना है. और अक्सर होता है ना कि जैसे हम अपने स्कूल में भी देखते थे कि हम अपने ग्राउंड

हुए हैं, ठीक है, प्रेयर चल रही है, धूप बहुत तेज़ है, तो बच्चे बेहोश हो जाते थे. तो ऐसी सिचुएशन में सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी सीरियस हो जाती है. अगर कोई इंसान है वो अचानक गिरकर अनकॉन्शियस हो जाए तो सबसे पहले रिस्पॉन्स और ब्रीदिंग को चेक करना ज़रूरी है और इमरजेंसी मेडिकल हेल्प बुलानी चाहिए. अगर जो वो पर्सन है वो नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर रहा है तो इमरजेंसी सर्विसेज से गाइडेंस लेते हुए अगर आप ट्रेंड हैं तो CPR जैसे लाइफ सेविंग सहायता दी जा सकती है. इसीलिए CPR और फर्स्ट एड की प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत वैल्यूएबल हो सकती है, क्योंकि सिर्फ इमरजेंसी के बारे में पढ़ लेना और उसे प्रैक्टिकली हैंडल करना दोनों अलग अलग बातें हैं. ट्रेनिंग प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस देती है. और यूथ के लिए फर्स्ट एड इतना क्यों ज़रूरी है, अब सवाल है दोस्तों, यूथ को फर्स्ट एड सीखने की ज़रूरत क्यों है आखिर? क्योंकि हमारी लाइफ सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है. हम कॉलेज जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं, इवेंट्स अटेंड करते हैं और रोज़ अलग अलग सिचुएशन का सामना करते हैं. और इमरजेंसी ये देखकर नहीं आती है कि सामने वाला मेडिकल स्टूडेंट है या किसी और सब्जेक्ट का स्टूडेंट है. इसीलिए बेसिक फर्स्ट एड अवेयरनेस हर यंग पर्सन के लिए यूज़फुल हो सकती है. और अगर कोई स्टूडेंट प्रॉपर फर्स्ट एड या CPR ट्रेनिंग लेता है तो ये उसके लिए एक जेन्युइनली यूज़फुल लाइफ स्किल बन सकती है. वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हमें सिर्फ फर्स्ट एड की डेफिनेशन याद करने के लिए नहीं है दोस्तों, ये हमें एक लार्जर मैसेज देता है कि हर इंसान को बेसिक इमरजेंसी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इमरजेंसी में आसपास मौजूद ऑर्डिनरी लोग ही सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं. लेकिन साथ ही एक बात हमेशा याद रखिए कि हेल्प करने की कोशिश ज़रूर कीजिए लेकिन अपने लिमिट्स को समझते हुए. अगर सिचुएशन सीरियस है तो प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर आपने फर्स्ट एड या CPR की ट्रेनिंग नहीं ली है तो गेस वर्क से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. जो कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर्स ऑलरेडी होते हैं उसके बजाय इमरजेंसी प्रोफेशनल्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बेहतर है. तो दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात आपने ज़रूर सीखी होगी और अपने साथ आप लेकर जाइए कि हम लाइफ में बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं, करियर के लिए स्किल्स, कम्युनिकेशन के लिए स्किल्स, टेक्नोलॉजी के लिए स्किल्स, लेकिन कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो किसी एग्जाम या जॉब से कहीं आगे की चीज़ है. फर्स्ट एड अवेयरनेस उन्हीं में से एक है, क्योंकि हो सकता है आपको इससे ज़रूरत ना पड़े, आज नहीं पड़ रही है, लेकिन कभी किसी पब्लिक प्लेस पर, घर में, कॉलेज में या ट्रैवल के दौरान कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके सामने आ जाती है और इस वक्त आपकी कामनेस, अवेयरनेस और सही इन्फॉर्मेशन किसी के लिए बेहद वैल्यूएबल हो सकती है. इसीलिए इस फर्स्ट एड डे पर एक सिंपल सा रिजोल्यूशन क्यों ना लें. इमरजेंसी में पैनिक नहीं करेंगे, स्थिति को समझेंगे, सही हेल्प बुलाएंगे और जहाँ तक हमारी ट्रेनिंग और नॉलेज अलाउ करे रिस्पॉन्सिबली मदद करेंगे, क्योंकि किसी की मदद करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, एक जिम्मेदारी भी है. अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए और प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि सही समय पर मिली सही मदद बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है. तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे इससे पहले लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक.

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: तो दोस्तों, अब समय है हमारे प्रेरणा पुंज सेगमेंट का। प्रेरणा पुंज यानी ऐसे व्यक्तित्व यात्रा से रूबरू होना जिससे हमें कुछ सीखने को मिला और जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज के प्रेरणा पुंज में हम बात कर रहे हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। हिंदी साहित्य में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका नाम लेते ही उसकी एक रचना सबसे पहले याद ना आती हो, और वो रचना है उसने कहा था। लेकिन गुलेरी जी का केवल उसने कहा था, जो कि 1915 में आई थी, के लेखक के रूप में उन्हें याद करना उनके व्यक्तित्व को बहुत छोटा कर देना होगा। 7 जुलाई 1883 को जयपुर की पुरानी बस्ती में जन्मे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिवार मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव से जुड़ा था। बचपन से ही उन्हें संस्कृत भाषा, वेद और पुराणों के अध्ययन का वातावरण मिला। लेकिन उनकी शिक्षा केवल पारंपरिक ज्ञान तक सीमित नहीं रही, उन्होंने आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त करी और आगे चलकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा भी प्राप्त करी। गुलेरी जी की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी कि उनके ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों के प्रति जिज्ञासा। वे संस्कृत को के विद्वान थे और संस्कृत के साथ पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी

और बांग्ला जैसी भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच जैसी भाषाओं से भी परिचित थे। दोस्तों, एक इंसान और इतनी सारी भाषाएं, उनकी रुचि केवल भाषाओं तक सीमित नहीं थी। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनके प्रिय विषय थे और भाषा विज्ञान में भी उनकी गहरी रुचि थी। यानी एक तरफ वे साहित्य और भाषा को समझ रहे थे, तो दूसरी तरफ इतिहास, पुरातत्व और दूसरे ज्ञान के क्षेत्रों में भी उनकी जिज्ञासा बनी हुई थी। उन्हीं यही बहुआयामी प्रतिभा उन्हें अपने समय के दूसरे साहित्यकारों से अलग पहचान देती है। 1904 से लेके 1922 तक उन्होंने अलग अलग महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्यापन का कार्य किया। उनकी विद्वत्ता के कारण उन्हें इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया और पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े और 11 फरवरी 1922 को वहाँ प्राच्य भाग के प्राचार्य बने। गुलेरी जी का साहित्यिक योगदान भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने निबंध लिखे, आलोचनाएं की पत्रिकाओं की, संपादन से जुड़े कार्य भी देखे और कहानियां भी लिखी। कहानी के क्षेत्र में उनकी तीन प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, सुखमय जीवन, बुद्धों का काटा। उसने कहा था उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है दोस्तों, और इसी ने उन्हें हिंदी कहानी साहित्य में स्थायी पहचान दिलाई। लेकिन दोस्तों, उनकी रचनात्मक दुनिया सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं थी। कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाऊं उनके चर्चित निबंधों में शामिल हैं और उनकी रचना पुरानी हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़े उनके गंभीर अध्ययन और विद्वत्ता को सामने लाती है। सुमिरिनी के मन के नाम से उनके तीन लघु निबंध बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ठेले चुन लो को भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। और दोस्तों, इन निबंधों में उन्होंने शिक्षा, धर्म और समाज को मौजूद अंधविश्वास जैसी समस्याओं से आगे बढ़े और उन पर विचार रखे अपने। यानी गुलेरी जी केवल साहित्य रचने वाले लेखक नहीं थे, बल्कि अपने समय के समाज को देखने, समझने और उस पर विचार करने वाले चिंतक भी थे। उन्होंने इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, धर्म, संस्कृति और साहित्य जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन और लेखन किया। यही कारण है कि उनका व्यक्तित्व केवल एक कहानीकार का नहीं, बल्कि एक बहुमुखी विद्वान का व्यक्तित्व है। और दोस्तों, यहीं से एक सवाल आता है कि आखिर आज के प्रेरणा पुंज के लिए हम पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को ही क्यों चुना हमने? इसका बड़ा कारण ये है कि उन्होंने सीखने की जिज्ञासा हमें सिखाई। आज हम अक्सर अपने लिए एक फील्ड चुनते हैं और फिर खुद को उसी तक लिमिटेड कर देते हैं, लेकिन गुलेरी जी का जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। भाषाएं सीखने से लेकर इतिहास और पुरातत्व समझने तक, साहित्य से लेकर भाषा विज्ञान तक उनकी रुचि लगातार फैलती रही। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में अपनी क्यूरियोसिटी को मेनटेन करते रहें। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपनी मेन फील्ड तक आप कन्फाइन न रहें और चीज़ें सीखें और चीज़ें जानें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और आप जैसे जैसे चीज़ें सीखते जाएंगे, वैसे वैसे अपने जीवन में चीज़ें ऐड ऑन करते जाएंगे। तो ये था हमारा प्रेरणापुंज सेगमेंट। और दोस्तों, प्रोग्राम के एंड में, जैसा कि आपको पता है कि हम Q&A सेशन लेके आते हैं, तो कल का हमारा प्रश्न था, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित होता है? इसका उत्तर था अनुच्छेद 352। और आज का हमारा प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है? आप इसका उत्तर दे सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर 800-492-6250 पर, और इसी नंबर पर, और हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com पर आप आज के प्रोग्राम के रिव्यूज़ भी दे सकते हैं। तो चलते चलते दोस्तों, प्रोग्राम के एंड में सुनते जाइए ये गाना।

तो दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम, मिलेंगे आपसे फिर अगले कार्यक्रम में नई बातों के साथ, नए गीतों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अंजलि श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी युवजन अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6 बजने वाले में कुछ ही पलों में आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है।

0: न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद आकाशवाणी संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, दिल्ली घोषणा पत्र में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है?
2: देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव पर ब्रिक्स देशों ने चिंता जताई। ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने दुनिया में सैन्य खर्च में लगातार हो तेज बढ़ोतरी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा नेताओं ने कहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान बहुपक्षीय सहयोग के जरिए होना चाहिए, जिसमें सभी देशों के अलग अलग विचारों और हितों का जो है सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा सतत विकास, भूख और गरीबी खत्म करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर भी जोर दिया गया। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी ब्रिक्स देशों ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। वहीं आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई रूप आपराधी के पूरी तरह अनुचित है। देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों के भी कड़े शब्दों में निंदा की, जिसमें लगभग 20 लोगों की जान चली गई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। जी दीपेंद्र।
1: जी धन्यवाद दीपेंद्र। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं द्वारा इस अवसर पर 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। इससे पहले समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने पर आधारित सत्र के पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने समूह की संस्थागत नीति गति सुनिश्चित करने के लिए ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए एक नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया समूह की अपनी कार्यप्रणाली से शुरू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बीच कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और यूरेशियन आर्थिक संघ के अध्यक्ष कासिम जोमार्त तोकायेव ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्यकुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और बीमारियों के खतरे का समय रहते पता लगाने की क्षमता मजबूत होगी। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि इस क्षेत्र में आजीविका का साधन रहे फलों के बाग अब एक ऐसी नीति के तहत विनाश के कगार पर हैं जो भूमि और आजीविका दोनों के लिए खतरा है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो घड़ी में 6:05 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी।

पहले आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे पत्र का कार्यक्रम संस्कृति भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे परिवार कल्याण की बात के अंतर्गत डॉक्टर विजय शंकर शर्मा से बातचीत, दांतों की देखभाल जरूरी क्यों, और दिनेश

कुमार और साथियों के स्वर में लोकगीत। किसान वाणी प्रायोजित कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे 6:50 पर। हिंदी कार्यक्रम होगा 7:31 पर। आज सुनेगा प्रोफेसर मुश्ताक अली की वार्ता, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता की अंश। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर सुनेगा रमा सेन के स्वर में गीत। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा 8:00 और सबरस कार्यक्रम सुनेगा 8:30 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब एक नज़र कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल शाम 7:30 से आपको सुनाएंगे भारत और श्रीलंका के मध्य दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के फाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। इसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना से शुरू होगी हमारी पहली सभा सुबह 6 बजे। 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर रामचंद्र से घनश्याम सिंह की बातचीत एलोवेरा की वैज्ञानिक खेती। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा 6:45 पर। कल सुनेगा डॉक्टर पारितोष मिश्र से अभिनव प्रज्ञा पांडे की बातचीत मोबाइल की लत में फंसते बच्चे और समाधान। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ आप रोज सुनते हैं सुबह 7 बजे, कल सुनिएगा इसका 58वां भाग। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनवाएंगे पंडित जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन और दिन में 12:15 पर सुनवाएंगे पंडित रविशंकर उपाध्याय का पखावज वादन। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम होगा 8:45 पर। अमृता मालवीय के स्वर में भजन और गीत सुनवाएंगे सुबह 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी होगा 10:05 पर। कलाकार होंगे संगीता मिश्रा, राम सखा यादव और साथी। और दिन में 2:30 पर कलाकार होंगे सूर्य प्रकाश पटेल और साथी, प्रीति मिश्रा और नन्हे लाल बिंद और साथी। एक ही कलाकार पर आधारित फिल्म संगीत 10:30 पर। 11 बजे आपको सुनाएंगे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट, स्वर होगा रितेश शुक्ल का। बच्चों का कार्यक्रम बाल संघ 11:15 पर। बच्चे सुनेंगे विनय श्रीवास्तव और गुंजन दीदी से रोचक जानकारियां। आपकी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीत आप तक पहुंचेंगे हेलो अनुरोध के साथ दिन में 1:15 पर। ग्रामीण बच्चों के कार्यक्रम बाल गोपाल से शुरू होगी हमारी सायंकालीन सभा 5 बजे। बच्चे सुनेंगे उमेश चंद्रा की वार्ता कहानी मानसून की। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी 5:15 पर होगा। पंचायत घर में 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे अवधेश चंद्र यादव से बातचीत डेयरी उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी। और किसान चर्चा में अनूप ओझा से बातचीत होगी कृषक साक्षरता पर। ये थी जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। रक्तदान महादान, रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता। आपके रक्त की एक बूंद किसी को जीवन दान दे सकती है, इसीलिए जब भी आवश्यकता हो रक्तदान के लिए आगे आएं।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य प्रथम दिवसे सर्वसम्मत्या नवदेहली घोषणापत्रम् अंगीकृतम्। घोषणापत्रस्य अंगीकारः सदस्य राष्ट्राणां समन्वितानां संकल्पानां कृते स्पष्ट मार्गदर्शकः इति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना मलेशिया, वियतनाम, इथियोपिया प्रधानमन्त्रिभिः तथा अबुधाबी युवराजेन सह द्विपक्षीय वार्ता संचालिताः। अद्य सायं चीन राष्ट्रपतिना शी जिनफिंग वर्येण सह संभाषणं विधीयते। षड्वर्षीय स्थगनं समापयता चीन देशेन अस्य मासस्य 21 दिनांकात् ग्वांगझोउ नवदेहली मध्ये नियमित यात्री विमान सेवाः पुनः प्रारप्स्यन्ते।

0: अपि च महिला हॉकी क्रीडायां चीनस्य मोकिनगरे आयोजितायां कनिष्ठ एशिया चषक स्पर्धायां दक्षिण कोरिया देशं 5-1 इति अंकैः पराभूय भारतं अंतिम चरणं प्राविशत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य नवदेहल्याम् 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इथियोपिया मलेशिया वियतनाम इत्येतेषां देशानां प्रधानमंत्रिभिः अथ अबुधाबिनः युवराजेन सह द्विपक्षीय गोष्ठीनां श्रृंखलां प्रारब्धवान्। कूटनीतिक वार्तानां अस्याम् आवृत्तौ प्रधानमंत्रिणा सर्वप्रथमं इथियोपिया देशस्य प्रधानमंत्रिणा डॉ. आबी अहमद अली सन्निधेन सह उच्चस्तरीय संभाषणं विहितम्। विदेश मंत्रालयेन विज्ञप्तौ संसूचितं यत् उभौ नेतारौ द्वयोः देशयोः विशेष रणनैतिक संधिं नूतनां औन्नतिं नेतुं संकल्पं गृहीतवन्तौ। गोष्ठ्यां मुख्यतया आर्थिक सहयोगस्य रक्षा सुरक्षा संबंधानां तथा क्षमता संवर्धनस्य क्षेत्रेषु प्रगतेः समीक्षणं कृतम्। एषा महती सम्पूर्तिः गतवर्षस्य दिसंबर मासे असिस अबाबा नगरे प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक प्रवासस्य परिणामस्वरूपेण सञ्जाता। भारतस्य अध्यक्षतायां नवदेहल्यां समायोक्ष्यमाणस्य 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य अवसर अन्तराले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मलेशिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा अनवर इब्राहिम इत्यमुना सह उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तां सञ्चालितवान्। अस्यां गोष्ठ्यां द्वयोः देशयोः नेतारौ व्यापार निवेश रक्षा सुरक्षा तथा जनसंपर्कः इत्येतेषु बहुविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य प्रगतेः समीक्षणम् अकुरुताम्। उभौ नेतारौ अस्मिन् वर्षे प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः मलेशिया प्रवासस्य संकल्पानां निष्पत्तेः अपि सूचनां गृहीतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना आसियान भारत सम्बन्धानां सुदृढीकरणे तथा क्षेत्रीय सहयोगे मलेशिया देशस्य निरन्तर समर्थनस्य भूरिशः प्रशंसा कृता। अत्रावधेयं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वियतनाम देशस्य प्रधानमन्त्रिणा ले मिन हुंग इत्यनेन सह उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। अस्यां गोष्ठ्यां ब्रिक्स सम्मेलने वियतनामस्य सहभागिदेशत्वेन सहभागिता सविशेषं स्वागतीकृता। विदेश मंत्रालयेन संसूचितं यत् अस्मिन् वर्षे वियतनाम राष्ट्रपतेः तोलम वर्यस्य भारत प्रवास वेलायां उच्चस्तरे समुन्नीतायाः संवर्धित व्यापक रणनैतिक संधेः प्रगतेः समीक्षणम् अस्मिन् उपवेशने विहितम्। अनेन सहैव प्रधानमन्त्रिणा अबुधाबिनः युवराजेन शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जयद अल नहियान इत्यनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धाः समीक्षिताः। उभौ पक्षौ राजनैतिक सांस्कृतिक वाणिज्यिक ऊर्जा क्षेत्रेषु तथा जनात् जनसंपर्के आधारितस्य भारत UAE व्यापक रणनैतिक सहयोगस्य पुनरुच्चारणं चक्रतुः। अद्य सायमन्तराले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना सी चिनफिंग इत्यमुना सहापि द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। नवदेहल्याः ऐतिहासिक भारतमण्डपे आयोज्यमानस्य 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य प्रथमदिवसे एव सदस्यदेशैः सर्वसम्मत्या नवदेहली घोषणापत्रम् अङ्गीकृतम्। सत्रस्यास्य समापने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्य घोषणापत्रस्य स्वीकाराय प्रस्तावम् उपस्थापितवान्, यं सर्वे नेतारः एकस्वरेण सर्वसम्मत्या च अङ्गीकृतवन्तः। स्वकीय समापन उद्बोधने प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना संसूचितं यत् अद्य अङ्गीकृतं नवदेहली घोषणापत्रं ब्रिक्स सदस्यदेशानां सन्धिसंकल्पानां कृते एकां स्पष्टां कूटनीतिकदिशिम् अङ्कयति। तेन विशेषतः प्रतिपादितं यत् एतेषां सर्वसम्मत संकल्पानां प्रत्यक्षमूर्तपरिणामेषु परिवर्तनम् इदानीं सर्वेषां सदस्यराष्ट्राणाम् उत्तरदायित्वं वर्तते।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है।

0: न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सबलं प्रोक्तं यत् अद्यतनेन विचार विनिमयेन एतत् स्पष्टं भवति यत् परिवर्तनशीलस्य विश्वस्य मार्गदर्शनं पुरातनैः अप्रासंगिकैश्च संस्थानैः विधातुं न शक्यते। तेन प्रतिनिधित्वेन संवेदनशीलतायां नियम निर्माण प्रक्रियासु च आधारभूत परिष्काराणां महती आवश्यकता प्रतिपादिता। प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् ब्रिक्स नेतृभिः भावि प्रौद्योगिकीनां विकासे तथा तासां नियमन विधानेषु ग्लोबल साउथ देशानां समान सहभागिता भवेत् इत्यस्यां नीतौ विशेष बलः प्रदत्तः। तेन प्रतिपादितं यत् निर्णयानां तेषां निष्पत्तीनां च मध्ये विद्यमानं अन्तरालं केवलं सामूहिक कार्यप्रणालीभ्यां समापयितुं शक्यते। भाषणस्य अन्ते प्रधानमन्त्रिणा ब्रिक्स अध्यक्षरूपेण सर्वेषां राष्ट्राध्यक्षाणां रचनात्मक योगदानाय निष्ठापूर्ण सहयोगाय च हृदयेन कृतज्ञता प्रकटीकृता। ब्रिक्स मञ्चस्य स्थापनायाः 20 वर्षपूर्तिं स्मरणीयां विधातुम् अस्मिन् मञ्चे सदस्य देशानां नेतृभिः द्वे स्मारक डाक चिटिके आधारिकरूपेण विमोचिते। नवदेहल्याः भारतमण्डपे आयोज्यमानस्य अस्य शिखरसम्मेलनस्य समावेशी वैश्विकशासनं बहुपक्षवादस्य दृढीकरणञ्च इति विषयकसत्रे स्वकीये उद्घाटन उद्बोधने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रिक्स निरन्तरता क्रियान्वयन प्रणाल्याः एकं क्रान्तियुगं प्रस्तावम् उपस्थापितवान्। श्रीमोदिना संसूचितं यत् प्रतिवर्षम् अध्यक्षतायाः परिवर्तने सत्यपि संघस्य संस्थागत गतिशीलता तथा पूर्वं तिष्ठेत् तदर्थं ट्राइका प्रणाल्याः माध्यमेन सर्वेषां संकल्पानां निष्पत्तीनां च निरन्तरं पुनरीक्षणं विधास्यते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना बलपूर्वकं प्रोक्तं यत् ब्रिक्स देशैः आगामि 20 वर्षाणां कृते एका नूतना सुदृढा महत्वाकांक्षी च कार्यसूची रचयितव्या, यस्याः आरम्भः संघस्य स्वकीयात् कार्यप्रणाली परिवर्तनात् एव भवितुमर्हति।
0: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: प्रधानमन्त्री कठिन समये साहाय्यं सुकरं कर्तुं सम्बद्ध देशानां समुद्रीय प्राधिकारिणः कूटनीतिक लक्ष्यं च योजयितुं सिफेयर्स आपत्कालीन समर्थन जालस्य स्थापनायाः प्रस्तावम् अपि अकरोत्। श्रीमोदी अवदत् यत् वैश्विक व्यापारे नाविकानां महतीं योगदानं भवति, तथापि कष्टकाले ते प्रायः स्वसमर्थनस्य अभावम् अनुभवन्ति। चाइना सदर्न्स एयरलाइंस इत्यनेन अद्य उक्तं यत् ते अस्मिन् मासे 21 दिनांकात् ग्वांगझौ नवदेहली नगरयोः मध्ये नियमित यात्री विमानयानानि पुनः आरभ्य 6 वर्षाणां स्थगनं समाप्यते। 20-अधिक-2000 वर्षे कोविड 19 महामार्याः आरम्भात् अनन्तरं भारत चीन देशयोः मध्ये विमानसेवाः स्थगिताः आसन्। महिला हॉकी क्रीडायां चीनस्य मोकी नगरे आयोजितायां कनिष्ठ एशिया चषक स्पर्धायां दक्षिण कोरिया देशं 5-1 इति अंकैः पराभूय भारतम् अंतिम चरणं प्राविशत् इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ज पर। अब ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुने पंचायत घर।

पंचो राम राम। किसान भैया, देखा हो यही समय खेत में बढ़िया ललहा धान हो। दौ राजा भी खूब पूरा सहयोग कर देना, बढ़िया समय पे पानी।

और भैया हो हर जगह निरोगी धान दिखाई देत हो, बढ़िया हो, पैदावार अच्छा हो, दो पैसा हर किसान भाइन के मिले, इसे बड़ी अच्छी बात का हो सकेले। लेकिन किसान भाई एक बात आप लोगों से जरूर हम कहब कि देखा जब धान का कटाई हो जाला तो कुछ लोग तो ओके सही ढंग से हंसिया के माध्यम से काटत हैं, सटकत हैं और उसे धान अलग करत हैं और पियारा जो नौकर पुआल हो के अलग करत हैं। कुछ मशीन के द्वारा कटाई होला, पुआल खेत में भी पड़ जाला आ उसे जौन हो कि धान अलग कह जाला। किसान भाई बहुत अधिक मात्रा में ही देखे में आवला कि जौन पुआल हो ओके खेत में लोग जला देना। भैया देखा हो एक बात ही समझा कि खेत में जलावे से समस्या का समाधान ना हो, समस्या बढ़त है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। ऐसे भैया हो अगर पर्यावरणीय प्रदूषण हर मौसम के जीव जहान के और पशु पक्षी के सबके परेशान करेला। सही ढंग हो देखा वैज्ञानिक भैया लोग भी बतावन है बहुत अच्छा अच्छा तरीका, ये पुआल का कई तरह से लाभ लेवल जा सकेला। जैसे हमार किसान भाई हैं तो पहले तो ये करे कोशिश की पुआल के कुछ ऐसा तौर तरीका हो कि ओके खेत में माटी के नीचे दबा दा, कल्टीवेटर से दबा दा, मट्टी पलट वाले हल से दबा दा, और भैया हो सड़ के देखा माटी का संरचना भी बढ़िया कर देता है और खूब मजबूत माटी जब हो जाता है तो उसे पैदावार भी बढ़िया मिलता है। कुछ किसान भाई ओके चारा के रूप में भी ले सकते हैं, भाई बारीक बारीक ओके काट ले, काट के रखें, पशुओं का चारा के रूप में भी ओकर प्रयोग कर सकते हैं। तमाम हो कि जैसे गोबर हो, गोबर का खाद हो, जैविक जीवांश हो, ओकरे साथ भी ओके सड़ा के खूब बढ़िया खाद बना सकते हैं। इससे का फायदा हुई कि रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम हो जाए और दो पैसा का बचत हुई। तो भैया हो ऐसा काम करे कि जौने से अपन पर्यावरण भी दुरुस्त रहे और ये पुआल का सही ढंग से प्रबंधन करके अपने खेत के माटी के मजबूत कैल जा सके और खर्च होए में दो पैसा का बचत भी कैल जा सके। उम्मीद बा किसान भाई आप लोग हमार बात समझले हुई हैं और आसपास में भी अगर यह तरह के किसान लोग अगर पुआल जलावत हैं तो उनके जाके समझावा, उनके बतावा कि पुआल जलावे से उनकर समस्या का समाधान तो ना हुई लेकिन जीव जंतु के लिए पर्यावरण के लिए समस्या बन जाए। किसान भाई देखा आज अपने कार्यक्रम में परिवार कल्याण की बात हुई और दांत का देखभाल काहे जरूरी हो इस पर थोड़ी जानकारी आप तक पहुंची डॉक्टर विजय शंकर शर्मा और शैलेंद्र भैया के बतकही से। लेकिन देखा दिनेश कुमार उनका संघातीन ढोलक मजीरा लेके बैठल हुए, अब भैया से अब पहले एक विकास गीत सुनल जाए। सुना भैया

0: मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: हाँ भैया हो देखा, बढ़िया गौनई होई गेल, सनेस होई गेल। आ एक बात देखा, जो कहते हैं ना कि आज परिवार कल्याण का बात वाला दिन हो, तो आज देखा एक बहुत जरूरी बात कही बा कि दांत के देखभाल क्यों जरूरी। भैया डॉक्टर विजय शंकर शर्मा से शैलेंद्र प्रताप बातचीत के लिए हुए, आवाज के सुनल जाए।
4: पंचों शरीर में मुंह का अपन महत्व होता है, देखे में अच्छा लगे, खाए पीछे में भी मुंह साथ दे, दांत अच्छा रहे, मुंह से कोनो बदबू ना आवे, गंदगी ना आवे, दांत में खून ना आवे, पायरिया न होए, एकर बड़ा महत्व होता। खास तौर पे भाई खान पान से लेके पाचन तक में दांत का और मुख का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता। तो दांत का कौन कौन सा बीरामी हो सकत है, जैसे कैसे बचा जा सकत है, सावधानी का कुछ बरते के बाटे, का कुछ पथ्य परहेज करे के बाटे, ताकि हमारे मुंह के रोग से और खासतौर पर दांत के रोग से बचाव हो सके। ये कुल विषय पे चर्चा के बारे अपने बीच में डॉक्टर विजय शर्मा भैया हैं, आप दंत रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहब कि दांत में कौन कौन सा रोग हो सकते हैं और कौन स्थिति में कौन दशा दिशा में पता चला था कि मुंह में रोग हो गया है, दांत में दिक्कत हो गया है, एक बचाव करे चाहिए।
5: धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने स्वयं कहा कि मुंह और मुंह का वातावरण हमारे शरीर के बहुत सारे चीजों को प्रदर्शित करता है, स्वास्थ्य से लेके उसके और गुण अवगुण के बारे में पता चलता है, तो हमें मुंह के स्वास्थ्य के बारे में काफी ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम अगर जिनकी साफ सफाई अच्छी है तो उनके मसूड़ों से अगर किसी प्रकार की समस्या है तो खून आने की समस्या प्रदर्शित होती है। यह जब सही समय पर ठीक किया जाएगा तो फिर ये बदबू के रूप में भी प्रदर्शित होने लगती है। खास करके कुछ व्यक्ति जो गुटखा पान मसाला तंबाकू सिगरेट इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनके में ये समस्या और भी बुरे तरीके से प्रदर्शित होती है और समयानुसार ये मसूड़ों की समस्या उसके अगल बगल के हड्डियों तक में पहुंच जाती है, जिससे मसूड़े ढीले होने लगते हैं, दांतों के बीच में गैप बनने लगता है और समय के हिसाब से ये हिलना भी शुरू कर देते हैं और कुछ समय के बाद ये अपने समय से पहले गिर जाते हैं
4: जी।
5: मुंह में अगर दांत नहीं है तो निश्चित सी बात है चबाना इतना आसान नहीं होगा खाने
4: जी, पर जी, तो पाचन पर असर होए भाई
5: और वो पाचन पे असर डालेगा
4: जी जी। तो कहा कि मतलब ये भाई कि पहली बात यह है कि मुंह का दांत का खूब अच्छे से साफ सफाई करें। अब साफ सफाई कैसे करें ये महत्वपूर्ण बात होता
5: जी।
4: जैसे पहले अपने यहाँ कह रहा कि परंपरा से दातून किन जाता रहा नीम का
5: जी।
4: या बबूल का, लेकिन आजकल वो मुफीद ना है भाई, वो सुविधाजनक ना है बाटे, व्यवहारिक ना है बाटे। तो आदमी क्या करे थे ब्रश उठाए को मंजन ले कई के लगा के ब्रश कर लिए थे सवेरे संध्या दिनों समय कर लिए थे। एक तो ई बात बा काओ से पर्याप्त सफाई हो जात हो, सफाई करे के बड़े पर्याप्त मतलब पूरी तरीके से मुख का शुद्धि हो जाए करे बड़े ब्रश कैसे करें भैया।
5: देखिए पहले जब मोटा अनाज इंसान खाता था तो दांतों की साफ सफाई आपके मंजन से या दातून से करना आसान था क्योंकि मोटे अनाज हुआ करते थे। अब समय के हिसाब से अनाज जो भी इस्तेमाल कर रहा है वर्तमान समय का इंसान वो महीन है, तो उसके लिए हमें प्लास्टिक के बने हुए ब्रशेस जो आसानी से मार्केट में उपलब्ध हैं उससे दांत साफ करना चाहिए। ध्यान ये देना चाहिए कि वो मुलायम हो, कड़े ना हो। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि काफी कड़े ब्रश से हम ब्रश करेंगे तो बढ़िया बांझ लेंगे, दांत साफ हो जाएगा।
4: तो कतहुन कतहुन छिलाई देते हो भैया,
5: मसूड़े को छील देगा, समय के साथ साथ दांत कट जाते हैं, उससे ठंडा गर्म लगने की समस्या शुरू हो जाती है और एक वो फिर कठिन ऐसा समय आ जाता है जब आप दर्द से बहुत पीड़ित हो जाते हैं। तो नंबर एक तो आप बहुत ही मुलायम और महीन ब्रशेस का इस्तेमाल करें। नंबर दो, दांतों पे ब्रश को कभी रगड़िए मत,

0: कोशिश मत करिए दांतों को साफ करने की
1: जी।
0: आप केवल जो फूड पार्टिकल्स फंसे हुए हैं या इस तरह के जो भी अवयव आपको लगते हैं कि बाहरी हैं उस पर चिपक रहे हैं उनको दांतों की संरचना के हिसाब से ऊपर नीचे करके ब्रशों को साफ करिए।
1: खासतौर पर जो गंदगी दांतन के बीच में फंसा है उसका निकारित प्रयास
0: बस बस बस आप ये सोचे कि हम दांतों को साफ कर सकते हैं तो ये गलत अवधारणा है। आप केवल सफाई मेंटेन कर सकते हैं। सही तरीका यह है कि हर 2 से 3 साल के अंतराल पे अपने दंत चिकित्सक से दांतों की सफाई करानी चाहिए।
1: जी।
0: एक बहुत बड़ी अवधारणा यह है कि दांतों की सफाई कराने

0: सकते हैं। सही तरीका यह है कि हर 2 से 3 साल के अंतराल पे अपने दंत चिकित्सक से दांतों की सफाई करानी चाहिए। एक बहुत बड़ी अवधारणा यह है कि दांतों की सफाई कराने से दांतों का नुकसान हो जाता है।
1: हाँ भाई, समझ में आवा था कि फिर दांतों के ऊपर का जो
0: चमक है वो हट जाएगी,
1: वो हट गया था,
0: परत हमारी कट जाएगी
1: और पानी
0: पानी लगने लगेगा। हकीकत में यह होता है कि हमारे मुंह में जो लार बनाने वाली ग्रंथियां हैं ऊपर के जबड़े के पहली दाढ़ के पास आके खुलती हैं, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और दूसरे नंबर की जो ग्रंथि है वो हमारे नीचे के दांतों में अंदर की तरफ आके खुलती है, सामने के दांतों के ठीक पीछे। तो ये 2 जगह पे जो भी हमारे मुंह का लार है, सलाइवा जिसको मेडिकल भाषा में कहते हैं, उसके मिनरल्स डिपॉजिट होंगे ही होंगे, आप उनको रोक नहीं सकते, तो वो ये पत्थरनुमा जमना शुरू हो जाते हैं। अब आप जब हर 2 से 3 साल में इनकी सफाई कराते रहोगे तो ये दांतों का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने देंगे,
1: मतलब वो गंदगी हट जाए और दांत
0: साफ हो जाएंगे। कुदरती भगवान ने हमें दांत ऐसे दिए हैं कि इसके ऊपर कुछ भी चिपकना इतना आसान नहीं है
1: जी,
0: लेकिन समय के साथ साथ शुरुआती दौर में प्लाक जमता है, फिर वो मिनरलाइज्ड होता है और उसको
1: खासतौर पे भैया जो पान गुटखा ज्यादा खाते हैं उनके दांत पे गंदगी जम जाता है,
0: निश्चित तौर पे जम जाता है।
1: तो एक तो भाई नशा पत्ती का तो सूचित ना आया है, नुकसान कर रहा था। दूसरी बात यह है कि अगर जमा है तो उसका साफ सफाई करा ले। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात यह हुआ था कि जैसे परंपरा सी रहा कि फिटकरी बाटई सरसों को तेल है या नमक है, ऐसे भी ब्रश करे के बाद आदमी दांत का माज लेत रहा या मुहिम कुल्ला कर लेता है तो मुख को शुद्धि हो जाती रही, तो ये कितना सही है?
0: आयुर्वेदिक पद्धति में इन चीजों को पहले भी बढ़ावा दिया गया है और आज भी बढ़ावा दिया जा रहा है। नमक तेल का कुल्ला करना गलत नहीं है, मालिश करना गलत नहीं है, लेकिन नमक के कण बारीक होने चाहिए,
1: एकदम पीस लें,
0: एकदम बारीक होने चाहिए, और उसके साथ आप नमक ले लें जो बारीक हो और कोई सा भी तेल ले लें।
2: हाँ भैया, हो देखा कितनी बढ़िया जानकारी रहा है डॉक्टर विजय शंकर शर्मा से शैलेंद्र प्रताप के बातचीत में। आ किसान भाई, देखा अपने शरीर का अपने स्वास्थ्य का अगर ऐसे देख रेख करबे तो स्वस्थ रहबा, मस्त रहबा और खेती किसानी भी बढ़िया हुई। लेकिन खेती किसानी के साथ साथ अपने खेत का माटी भी बढ़िया होए के चाहिए, दुरुस्त होए के चाहिए, मस्त होए के चाहिए। तो सरकार जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भैया चलावत बा, एकरे अंतर्गत आप लोग अपने खेत के माटी का जाँच समय पर करावा, वही अनुसार आप अपने उर्वरक का व्यवस्था करा और उसे 2 पैसा का बचत भी करा। किसान भाई देखा, समय अब आपसे विदा लेव को हो गल हो, तो अब चली चला के इंजा। अच्छा तो पंचों राम राम।

0: ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: सरकार एक योजना लाई है जीके द्वारा, सीधे किसान भाई के खाते पर पैसा आ रहा है। उम्मा चिंता चली गई है, अब योजना का नाम बताओ भैया।
1: हाँ भैया, योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
0: बिल्कुल, अब देखो तमाम पंच भाई अभी वो अपन केवाईसी केवाईसी तक ना कराए पाए हैं, तो या उनकी भी ये जिम्मेदारी है, अपने बैंक का जाओ, अपने लेखपाल से मिलो और देखो केवाईसी कराओ, में कौनो एक पैसा का खर्चा ना होते है।
1: हाँ भैया, जाए के अपने जो नजदीकी जनसेवा केंद्र है उनमें जाए भैया, बड़ी आसानी तरह करावा जा सकते है। और देखो तुम्हारे खाता मियाँ भैया सीधे पैसा आ जाते 2000 रुपया।
0: बिल्कुल सही कहो भैया, और यू एकदम ना आवत है, यू साल में 3 बार आवत है।
1: हाँ, और अपूर्व भैया हम तो यू कहबे कि देखो जौन पैसा भैया आवत है वो अपन जौन काम काज खाते हैं खेती के वही मा लगाओ, यू नहीं भैया तिलक मुंडन बस ही वही मा जाए के खर्चा कर रहो।
0: बिल्कुल सही कहो भैया, देखो इससे पहले कहा होता रहा है हम पंचन का साहूकार नजदीक जाए पड़त रहा है पैसा की खातिर अपनी खेती बचाओ माँ, लेकिन जब से यह योजना आई है हमका साहूकार के पास जाए की आवश्यकता ना है, बशर्ते कि हम इसका सदुपयोग करी।
1: हाँ, और अपूर्व भैया देखो सदुपयोग तब हो जाते हैं जब हम पंचन के यहाँ खबरें जो है पता चल जाए।
0: बिल्कुल सही कहा भैया,
1: तो भैया आज की खबरें जान ली जाए अभिषेक सक्सेना भैया तेरे।
2: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कृषि विभाग की ओर से बीज बुकिंग की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसान घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से बीज की बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए किसान उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर जाकर पीएम कुसुम योजना के बीज बुकिंग पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस ऑनलाइन व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को बीज बुकिंग की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना है, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े। किसानों को सलाह दी जाती है कि बुकिंग से पहले पोर्टल पर उपलब्ध दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आवेदन करें। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट है agriculture.up.gov.in।

0: पंचो जय हिंद।
1: अपूर्व भैया,
2: हाँ भैया,
1: देखो ये बेरा कितना नीक मौसम हो गया है। अपने ख्यातन तन जाओ तो मन एकदम प्रसन्न हो जाते। कहे तेरे भैया अपनी फसलें ये बेरा देखो लहलहा रहे।
2: बिल्कुल सही कहा तो भैया, चाहे धान हो या अन्य कोई फसलें हो, सम्मा देखो समय से अगर जो सिंचाई हो जाते है, उर्वरक मिल जाते है, तो उम्मा कोनो दिक्कत ना आओ, एक बढ़िया फसल के रूप में उसका उत्पादन होते है।
1: लेकिन अपूर्व भैया देखो, जब फसलें ख्यातन में यहाँ है तो भैया बहुत जरूरत हो जाते है ये बेरा खाद की, पानी की और जोनी चीजें जरूरत की होती है।
2: बिल्कुल सही किया भैया। और देखो यू कहूँ ना कहूँ देखो चिंता का विषय बन जात रहा है इसे पहले, लेकिन अब देखो जब से

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: भैया
7: हाँ पूर्विया,
6: देखो भैया बारिश का मौसम तो चल रहा है, जहाँ यू एक तरफ हम लोगों के लिए फायदे का है हुए, दूसरी तरफ देखो यू थोड़ा बहुत चिंताजनक भी रहते हैं, चाहे वो अपने प्रति हो या अपने जानवरन के प्रति।
7: हाँ बिल्कुल भैया सही कहा, तो अपने हरहा गोरुन का सब ध्यान रखा है, और ऐसे मियाँ देखो भैया चारा की बड़ी कमी हो जाती है।
6: हाँ।
7: और वो जो है अगर सही तरह अपने हरहा गोरुन का चारा मिल नहीं पावत है तो बहुत तना करी बीमारी हो जाती है। तो भैया देखो आज की जो बात है वही मैं अपने पंच बहन का सुनवाया दिन जाए आग बत कही कि बरसात में पशुओं का खान पान और रख रखाव आई के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्र भैया, तो आओ जाना जाए।
6: बिल्कुल,
8: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहां पशुपालन आप कर रहे हैं वहां बरसात के मौसम में पशुओं का खान पान और रख रखाव कैसे रखें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश से उप निदेशक पशुधन विकास डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में पशुओं का खान पान कैसा हो?
9: पशुपालक भाइयों बहनों नमस्कार, बरसात के मौसम में नमी, कीचड़ और दूषित पानी के कारण पशुओं में कई संक्रामक बीमारियां और पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में पशुओं के खान पान और रख रखाव में कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना अत्यावश्यक है।
8: जैसे
9: बरसात में नया हरा चारा ज्वार, मक्का, बाजरा आदि अत्यधिक मात्रा में न दें, क्योंकि बरसात में केवल हरा चारा देने से पशु में अपच अर्थात इंडाइजेशन, पेट फूलना जिसमें टिम्पैनी और ब्लॉट आते हैं और दस्त की समस्या हो सकती है। हरा चारा 60% के साथ

0: सूखा चारा या भूसा 40% मिलाकर दें।
1: यानी संतुलन बना रहे,
0: हाँ, चारे में हरे चारे और सूखे चारे के बीच में संतुलन रहना चाहिए
1: 60-40 का।
0: 60-40 के अनुपात में। सड़ा गला एवं भीगा हुआ चारा न दें, क्योंकि सड़े गले और भीगे चारे में फंगस यानी फफूंदी लग जाती है, और ये फफूंदी जो है पशुओं में जहर फैलाने का काम करती है, जिसको एफ्लाटॉक्सिकोसिस कहते हैं। और यह एफ्लाटॉक्सिकोसिस न केवल पशुओं के लिए बल्कि पशु के दूध में भी उत्सर्जित होता है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।
1: डॉक्टर साहब, कभी कभी अफरा हो जाता है पशुओं में, वही है क्या?
0: हाँ, अफरा हो जाता है वही है जो गैस भर जाती है। दो तरह की अफरा होता है, एक तो गैस वाला अफरा होता है, एक होता है फ्रॉदी ब्लॉट, झाग वाला अफरा। झाग वाला अफरा ज़्यादा खतरनाक होता है बजाय गैस वाले अफरा के।
1: तो डॉक्टर साहब, सूखे चारे और हरे चारे में आपने संतुलन की बात की कि 60%
0: हरा
1: हरा
0: चारा,
1: चारा हो और 40% सूखा चारा
0: सूखा
1: हो।
0: चारा हो जी,
1: साफ पानी जरूरी है।
0: बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए, क्योंकि पशुओं की नांद वगैरह जो है और चरही पानी की जो होती है उसकी नियमित सफाई होनी चाहिए, क्योंकि काई लग सकती है जो आगे चल के बीमारियों का कारण बन सकती है।
1: या बासी उसमें भूसा या चारा न रहे।
0: ना रहे, नित्य प्रति सफाई करनी है। पशुओं को हमेशा पोखरों या जमा पानी के बजाय साफ सुथरा नल का या हैंडपंप का पानी पिलाना चाहिए, स्वच्छ
1: जी
0: और ताज़ा पानी।
1: जी
0: बारिश में पसीने और नमी के कारण पशुओं के शरीर में खनिज लवण कम हो जाते हैं,
1: हाँ
0: अतः दाने के मिश्रण में 1 से 2% मिनरल मिक्सचर और नमक जरूर मिलाएं। यदि ऐसा संभव न हो तो चारे के साथ साथ 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण पशु के भार के अनुसार और 30 से 50 ग्राम साधारण नमक प्रतिदिन दें, ताकि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और वो अनावश्यक बीमारियों का शिकार न बने।
1: डॉक्टर साहब, चरही के पास क्या नमक का ढोका भी रख सकते हैं?
0: हाँ, चरही में सेंधा नमक का ढेला जो है रख सकते हैं, कि जितनी आवश्यकता होगी उतना पशु जो है चाट लेगा।
1: डॉक्टर साहब, जो संतुलित आहार है उसमें सूखा चारा और हरे चारे की बात हो गई, दाना मिश्रण कितना देना है इस मौसम
0: दाने में जो होता है, सबसे पहली बात जो है, पशु आहार दे रहे हैं
1: में?
0: या दाना दे रहे हैं तो उसको नमी वाली जगह पर न रखें। अगर नमी वाली जगह पर रखेंगे तो उसमें फफूंद लग सकती है, फंगस लग सकती है, और ये फफूंद युक्त दाना खिलाने से या तो अफरा की समस्या होगी या विषाक्तता, टॉक्सिसिटी, एफ्लाटॉक्सिसिस की टॉक्सिसिटी हो सकती है।
1: यानी सावधानी की जरूरत है।
0: सावधानी की जरूरत है। और दाना जो होता है, 1.5 से 2 किलोग्राम दाना शारीरिक भार मेंटेन करने के लिए
1: अतिरिक्त होगा।
0: अतिरिक्त देना चाहिए, जो ये तो देना ही देना है सभी पशुओं को 1.5 से 2 किलो, और प्रति 2.5 से 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना अतिरिक्त देना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रही आहार व्यवस्था खान पान की बात। अब ये बताएं कि बरसात का मौसम है, पशुओं का रखरखाव भी महत्वपूर्ण है,
0: बिल्कुल, और
1: उनकी
0: रख
1: आवास व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है।
0: हाँ, पशुओं का आवास और रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है। पशुशाला को जो है हमेशा सूखा और हवादार रखें,
1: जी
0: वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। फर्श पर पानी का भराव न होने दें, जिससे खुरपका, मुंहपका या फूट रॉट की बीमारी से बचाव हो सके। पशु के शेड के चारों ओर पानी जमा न होने दें, ढलानदार फर्श बनाएं, फर्श को सूखा रखें। यदि फर्श कच्चा है तो हफ्ते में 2 बार चूना छिड़कें, ताकि जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएं। नमी को रोकने के लिए पशु शेड में हवा का आवागमन बेहतर है।
1: जी जरूरी है।
0: अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो नमी बनी रहेगी और पशुओं में भी फंगस इन्फेक्शन हो सकता है स्किन में।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ ईंटे की दीवार है पशुशाला में, तो वहाँ उसकी भी सफाई जरूरी है?
0: उसकी सफाई जरूरी है, चूने से पुताई करनी चाहिए उसकी।
1: अच्छा
0: चूना जो होता है कि एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो रहा रखरखाव और आवास व्यवस्था। इस समय मच्छर और मक्खियों का प्रकोप बढ़ता है, तो इसके प्रबंधन के लिए करें क्या?
0: हाँ, बारिश में मक्खी, मच्छर और किलनी बढ़ जाती हैं। इनसे बचाव के लिए नीम का तेल या फिनाइल का छिड़काव करें, और बाड़े में नीम और कपूर का धुआं करें। बारिश की शुरुआत से पहले ही गला घोटू, लंगड़ा बुखार, BQ, खुरपका, मुंहपका एवं लंपी स्किन डिसीज का टीकाकरण अनिवार्य रूप से करवा लें।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ अगर पशु का टीका नहीं लगा है तो क्या अभी भी लग सकता है?
0: हाँ, बिल्कुल लग सकता है। अगर छूटा हुआ है तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें, और जो पशु छूट गए हैं टीकाकरण से उनको टीका लग जाएगा। वैसे ये टीका कायदे से मानसून से पहले लग जाना चाहिए,
1: सभी टीका,
0: सभी टीका, चारों टीका।
1: लेकिन अगर छूटा है तो अपने नज़दीकी राजकीय पशु चिकित्सालय के पशु डॉक्टर साहब से संपर्क करें।
0: संपर्क करें और वो टीकाकरण करवा देंगे।
1: डॉक्टर साहब, क्या इस समय पेट के कीड़ी की दवा दे सकते हैं?
0: पशु चिकित्सक की सलाह से पेट के कीड़ों की दवा अवश्य खिलाएं, जिससे कि पेट के कीड़े खत्म हो सकें।
1: और जो बाह्य परजीवी हैं

0: उनके प्रबंधन के लिए।
1: बाह्य परजीवी के लिए ब्यूटॉक्स साइपरमेथ्रिन पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध है। अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और लगाने की स्प्रे करने की दवा जो है पशु चिकित्सालय से मिल जाएगी।
0: डॉक्टर साहब, इस मौसम में अक्सर थनैला की भी शिकायत होती है।
1: हाँ, थनैला की शिकायत होती है, नमी की वजह से थनैला की शिकायत होती है। थनैला में जो होता है कि पशु का ऐन सूज जाता है, उसमें जो है गर्मी सी महसूस होती है। इसके अलावा जो है कभी कभी जो होता है उसमें से पानी जैसा स्राव निकलता है, कभी कभी रक्त युक्त स्राव निकलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि रक्त युक्त स्राव के साथ साथ छीछड़े और फटे दूध जैसे थक्के निकलते हैं। ये
0: जी
1: सब मास्टाइटिस की पहचान है। मास्टाइटिस को बचाने के लिए ये करना है कि पशु को दूहने से पहले और दूध निकालने के बाद 1:1000 पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से थन की धुलाई करें लाल दवा से, और दूध निकालने के पश्चात पशु को जो है आधे घंटे तक जमीन पर बैठने न दें, क्योंकि आधे घंटे तक जो पशु की दुग्ध नाल कैनाल है वो खुली रहती है, उसके द्वारा संक्रमण प्रवेश करता है।
0: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे बरसात में पशुओं के खान पान और उनके रखरखाव के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके पशुपालन निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 94-177-202, 94-100-77-202, 94-177-202।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं पशुपालक भाइयों बहनों का बरसात में पशुओं के खान पान और उनके रख रखाव के बारे में डॉक्टर साहब?
1: हरे चारे और सूखे चारे का अनुपात जो है 60-40 का अनुपात होना चाहिए। दाना जो है मेंटेनेंस के लिए 1.5 से 2 किलो प्रति पशु होना चाहिए। अगर 2.5 से 3 किलो प्रति दूध पर 1 किलो अतिरिक्त कंसंट्रेट या दाना देना चाहिए। सभी निवारक टीके जैसे HS, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, BQ, FMD, LSD पशु चिकित्सक की सलाह से अनिवार्य रूप से लगवाएं। संक्रमण फैलाव पर रोक बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग करें और उसकी नांद व बर्तन अलग रखें। पशु शेड में नियमित रूप से चूने का छिड़काव करें ताकि नमी और जीवाणु नष्ट हों।
0: डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और बरसात के मौसम में पशुओं का खान पान क्या हो और उनका रखरखाव कैसे हो, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ओम भैया, देखो समय हुई गवाह है कि अपने पंचभाइन का अपने कार्यक्रम के माध्यम से एक गौनाई सुनवाई दिन जाए।
3: हाँ भैया, देखो इतनी बढ़िया जानकारी हो एक बात, अगर गौने सुने मिल जाते तो वही क्या आनंद दुगना तिगना चौगुना हो जाते।
2: बिल्कुल, आओ सुना जाए।

0: ओम भैया।
1: हाँ पूर्व भैया,
0: देखो आज के किसान के अंतर्गत अपने बीच में है
1: प्रहलाद कुशवाहा भैया, तो आओ जाना जाए उनकी कहानी उन्हें की जुबानी।
2: किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं उन्नाव जनपद के बांगरमऊ ब्लॉक के गनीपुर बेहटा गांव, जहां के प्रगतिशील किसान प्रहलाद कुशवाहा भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। प्रहलाद कुशवाहा भैया नमस्कार।
3: जी डॉक्टर साहब नमस्कार, समस्त किसान भाइयों बहनों को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: प्रहलाद भैया, आप नॉन मेसी खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
3: डॉक्टर साहब, इस समय हमारे खेत में 2 एकड़ मक्का लगा हुआ है, 1 एकड़ में बाजरा की फसल है, बाकी मूंगफली की फसल है। डॉक्टर साहब
2: कुल रकबा कितना है आपका?
3: जी कुल खेती की जमीन डॉक्टर साहब बात करें तो हमारे पास 2 एकड़ है, बाकी हमने कुछ जमीन जो है लीज पे ले रखी है।
2: तो मक्के की कौन सी वैरायटी है?
3: डॉक्टर साहब बीज है 33-360।
2: हाँ,
3: और दूसरी एक वैरायटी हमने लगा रखी है इसी कंपनी की 33-266, और एक और वैरायटी है जो की है 81-81।
2: तो इन तीनों वैरायटी की क्या खासियत महसूस कर रहे हैं?
3: मक्के की अगर हम बात करें इन वैरायटियों की, तो बहुत ही बेहतरीन वैरायटियां हैं ये। और अभी इस वर्ष डॉक्टर साहब आपने देखा कि बहुत भयंकर बरसात हुई, और ऐसी बरसात में जो है ये वैरायटियां हैं ये सहनशील हैं।
2: अच्छा।
3: और बात करें अगर जो है इन वैरायटियों की, तो ये अन्य वैरायटियों की तुलना में थोड़ा जल्दी तैयार और जल्दी पकने में सहयोगी हैं। अभी हमारी मक्के की ये फसल लगभग डॉक्टर साहब 70 दिन की हो रही है और चबाने योग्य हो गई है। बहरहाल ये जितनी भी वैरायटियां हमने लगा रखी हैं बहुत ही बेहतरीन वैरायटियां हैं, और अभी तक जो है जब से हमने बोया है तब से लेकर अभी तक पौधों में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पत्तियां नीचे से लेकर ऊपर तक हरी भरी हुई हैं और पौधा बहुत ही अच्छा और जबरदस्त है डॉक्टर साहब।
2: तो बुआई की बात करें, 2 एकड़ आपका मक्का है, तो बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के और फसल की कटाई तक मक्के में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं आप?
3: जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर देते हैं, जिससे जो है खरपतवार जो है नष्ट हो जाते हैं, आधे खरपतवार हमारे ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं, और जो कीट पतंगे खरीफ की फसल में लगते हैं उनके अंडे बच्चे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं ग्रीष्मकालीन जुताई से। फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब हम अपने खेत में सड़ी हुई गोबर की पाँच डालते हैं, उसको खेत में मिला देते हैं, और हम ट्राइकोडर्मा ब्यूवेरिया बेसियाना का जो है बना लेते हैं पाँच में मिला करके, उसको जो है बुआई से पहले शाम के समय जुताई के समय डाल देते हैं। फिर उसके बाद में हम मक्के की बुआई सीधी लाइनों में करते हैं, और बुआई के समय हम आधी मात्रा में दानेदार डीएपी खेत को देते हैं, और बाकी का जो है बीज जो है हम अपने नैनो डीएपी से शोधित करते हैं डॉक्टर साहब, और बीज का शोधन हम

0: को शर्मा से भी साथी में करते हैं। जब हमारी फसल 15 दिन की हो जाती है तब हम उसमें जो है दानेदार यूरिया का प्रयोग करते हैं, वो भी आधी मात्रा में। शेष जो हमारी होती है स्मार्ट उर्वरक नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, इसकी जो है हम 30 दिनों पर स्प्रे कर देते हैं। तो ये सब कुछ हमने किया हुआ है, तो इससे जो है हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है डॉक्टर साहब। और इसमें बात की जाए इस वर्ष डॉक्टर साहब थोड़ा जैसे कीट पतंगे की, तो हमने कीट पतंगा देखा इस वर्ष अन्य वर्षों की तुलना में थोड़ा कम लगा डॉक्टर साहब।
1: जो भी हानिकारक कीट लगते हैं, बीमारियां लगती हैं, उनके लिए आप क्या जैविक उपाय भी अपनाते हैं क्या?
0: हाँ डॉक्टर साहब, हमने जैविक उपाय पूरे खेत में जो है ये नीले पीले स्ट्रिक ट्रैप लगा दिए और फेरोमोन ट्रैप भी लगाए थे। और हमने एक जैविक उपाय बनाया था डॉक्टर साहब, जिसमें नीम की पत्तियां थी और आंख की पत्तियां थी और कुछ अन्य पत्तियां थी जैसे धतूरा की पत्तियां थी। तो इन सभी पत्तियों को हमने एक ड्रम में सड़ा लिया था और सड़ाने के बाद में फिर हमने उसका स्प्रे कर दिया था और साथ ही में साथ नीम ऑयल का भी स्प्रे किया था, तो जिसका रिजल्ट डॉक्टर साहब हमको बहुत अच्छा देखने को मिला और रसायन हमको ना मात्र जो है डालना पड़ा।
1: यानी इस समय आपकी फसल एकदम रौनक पर है?
0: जी डॉक्टर साहब, इस समय हमारी फसल एकदम रौनक पर है और भुट्टे चबाने योग्य हो गए हैं डॉक्टर साहब इस समय।
1: और पूरी फसल में भुट्टे आ गए हैं?
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, पूरी फसल में भुट्टे आ गए हैं और दाने भी पड़ चुके हैं, बस चबाने योग्य मक्का हो चुकी है डॉक्टर साहब।
1: चूंकि पिछले कई वर्षों से लगातार आप मक्का उत्पादन से जुड़े हैं, खरीफ मक्का करते हैं, तो एकड़ में कितना लागत गिरती है, उत्पादन एकड़ में कितना ले लेते हैं और आपकी बचत कितनी होती है?
0: देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जो है लागत की, तो पिछले कई वर्षों से हम करते चले आ रहे हैं, तब तो हमको बीज जो है मोल खरीदना पड़ता था, लेकिन अब की साल हमको कंपनियों ने बीज जो है हमको ये सब निशुल्क दिया हुआ था और इसकी वजह से हमें जो बीज का खर्चा आता था वो एकदम से नहीं पड़ा। हाँ, और बात करें अगर लागत की, तो लागत डॉक्टर साहब पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष तो बिल्कुल हमारी ना मात्र लागत आई है, क्योंकि हमने टोटल जो स्मार्ट उर्वरक का प्रयोग किया हुआ है, दानेदार खाद का प्रयोग तो हमने बिल्कुल आधा ही कर दिया, शेष तो हमने जो है पशुओं की सड़ी हुई पांच डाली हुई थी। और रही बात लागत केवल निगरानी की डॉक्टर साहब आई है, और अगर बात करें एकड़ पीछे लागत हमारी जो कुछ भी आई होगी, मुश्किल का ये मान के चलिए एकड़ पीछे 5000 मुश्किल का मान लीजिए डॉक्टर साहब, इस वर्ष की बात अगर हम करें तो आई है। और उत्पादन डॉक्टर साहब जिस तरह से हमें फसल दिख रही है उस हिसाब से हम एकड़ पीछे लगभग 20-25 क्विंटल तक जो है एकड़ में पैदावार ले लेंगे।
1: तो आपका मुनाफा होगा कितना?
0: अब इस हिसाब से डॉक्टर साहब समझ लीजिए कि एक एकड़ में अगर 5000 रुपए की लागत है, जब 25 क्विंटल हम बहुत कम मान रहे हैं, अगर पैदावार हो जाएगी तो 20 रुपए का भी रेट रखो तो 50000 रुपए का हमारा मक्का एक एकड़ में तैयार हो जाएगा। 5000 रुपए हमने लागत रख दी, शेष 45000 रुपए हमारा एकड़ पीछे बच जाएगा डॉक्टर साहब।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है मक्का उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: मैं तमाम किसान श्रोता भाई बंधुओं से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है महंगी दानेदार खाद के पीछे थोड़ा कम भागिए, और अब आप जो है ये जो मार्केट में नई स्मार्ट उर्वरक आ गई हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए। जो लोग कहते हैं कि स्मार्ट उर्वरक अच्छा कार्य नहीं करते हैं, तो वो लोग आकर के हमारे खेत पर देख लें, हम आपको लाइव दिखाएंगे कि देखिए हमारे खेत में स्मार्ट उर्वरक कैसे काम करते हैं। हाँ, स्मार्ट उर्वरक कार्य करते हैं जब आप जो है अपने खेतों में सड़ी हुई पांस डालेंगे और आधी मात्रा में दानेदार खाद डालेंगे, तो स्मार्ट उर्वरक बहुत अच्छे कार्य करते हैं। और आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कम लागत में अगर आपको अधिक उत्पादन है पाना, तो स्मार्ट उर्वरक को होगा आप सभी लोगों को अपनाना।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा फोन नंबर है 6392-17-96-40, 6392-17-96-40, 6392-17-96-40।
1: प्रहलाद कुशवाहा भैया, आज आपसे टेलीफोन लाइन के माध्यम से इतनी अच्छी बात हुई, आप अपने खेत पर थे, हम स्टूडियो में थे, और जो मक्का उत्पादन की कहानी थी आपकी जुबानी हम सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ओम भैया।
4: हाँ पूर्व भैया,
3: अपने किसान भाई का अपने कार्यक्रम का पता बता दो।
4: बिल्कुल भैया, आप किसान भाई देखो अपन कार्यक्रम सुनत है, उनका कई स्वागत है और अपन प्रतिक्रिया देख चाहते हैं, तो अपन जो चिट्ठी पाती का जो पता है वो है भैया कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, जो पिन कोड है भैया 226001।
3: तो मेल का भी पता बता दीजिए।
4: हाँ भैया, मेल का पता है farmandhome@gmail.com। देखो अब चलक हो रही भैया बिरिया, पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से अपनाया नई दिल्ली घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साझा संकल्प को परिणामों में बदलना सदस्य देशों की सामूहिक जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सेवाकाल को लेकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा प्रदेशव्यापी सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया नए भारत का विजन। प्रदेश भर में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। शाम 6 बजे तक 1,20,00,000 से अधिक मामलों का हुआ निस्तारण। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 2 दिवसीय एआई मंथन 2.0 का शुभारंभ। देश भर से आए विशेषज्ञों ने एआई उपयोगिता पर की चर्चा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव

0: प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अब इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदलना उनकी साझा जिम्मेदारी है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: 7 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में शासन प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस सेवा काल को लेकर प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन मिलकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान की कार्य योजना साझा करते हुए कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन प्रदेश भर में सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन हर ग्राम पंचायत, नगर निकाय और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान में आशीर्वाद का दिया जलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को नए भारत का विजन दिया है।
2: प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई 2014 से लेकर के उनकी जो ये यात्रा है, ये नए भारत का दर्शन पूरे भारतवासियों को कराता है। एक नया विजन उन्होंने देश को दिया, चाहे वह एक भारत श्रेष्ठ भारत का हो, चाहे वह आत्मनिर्भर और विकसित भारत का हो। इसके लिए व्यापक कार्य योजना उन्होंने बनाई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देशवासियों को दिया, वेलफेयर की वे स्कीमें दी जो कभी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फ्रेजाइल 5 से दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में भारत को स्थापित करने का मॉडल प्रस्तुत किया।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की वडनगर से काशी तक की यात्रा को भी अभियान से जोड़ा गया है। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण और भव्य दिव्य कुंभ का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विरासत और विकास को एक साथ आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व कई अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ विश्वविद्यालय में गोमती पुस्तक महोत्सव के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 9 दिनों तक चलने वाले गोमती पुस्तक महोत्सव 2026 में पुस्तकों के विमोचन के साथ लेखकों से संवाद और उनकी रचनात्मक यात्रा को समझने का अवसर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 57,600 ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। इनमें नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बच्चे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स जरूर पढ़नी चाहिए और आत्मसात करनी चाहिए।
2: आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स, अभी मैं आ रहा था, मैंने बच्चों को एग्जाम वॉरियर फिर वहां वितरित की। हर बच्चे को इसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। केवल स्कूली छात्र के लिए ही नहीं है, हर युवा के लिए है, हर नागरिक के लिए है, क्योंकि उसको किसी न किसी अवसर पर किसी न किसी परिस्थिति में उन परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है।
0: इस अवसर पर नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन प्रोफेसर मिलिंद मराठे ने मुख्यमंत्री का शॉल उड़ाकर और पुस्तक भेंट कर स्वागत किया। 9 दिवसीय महोत्सव में पुस्तक प्रदर्शनी के साथ साहित्यिक संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल गतिविधियां, कार्यशालाएं और तकनीक से जुड़े आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पावन ग्रंथ समूची मानवता को समरसता, सेवा, सत्य एवं करुणा का अमर संदेश प्रदान करता है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राज्य में शाम 6 बजे तक 1,20,00,000 से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि का सेटलमेंट हुआ। लोक अदालत में मोटर वाहनों

0: पारिवारिक राजस्व समेत विभिन्न प्रकार के शमनीय मामलों का निस्तारण किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव डॉ. मनु कालिया ने आयोजन को उत्साहजनक बताया।
1: बहुत दिनों से लोक अदालत का प्रचार प्रसार कर रहे थे हम लोग, तो उसमें बहुत ही हमें उत्साहजनक जो रिस्पांस मिला है। पेंडिंग केसेस जो लोक अदालत में जिनका निस्तारण हुआ है अभी 6 बजे तक जो हमारे पास न्यूज है, तो पेंडिंग केसेस 521,428 केसेस का निस्तारण हुआ है, जिसमें फैमिली कोर्ट, एमएससीटी, कंपाउंडेबल मैटर्स, सिविल वाद और अन्य श्रेणी के वाद शामिल है। और प्री लिटिगेशन के जो टोटल वाद है वो 1,15,24,062 अभी तक हमारे पास आए हैं, कि जिनका डिस्पोजल हुआ है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज जनभवन, उत्तर प्रदेश और छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय AI मंथन 2.0 का शुभारंभ विश्वविद्यालय परिसर स्थित वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सभागार में हुआ। कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न आयामों, शिक्षा, शोध, स्वास्थ्य, कृषि, शासन, रोजगार और तकनीकी विकास में इसकी संभावनाओं सहित विश्वविद्यालय प्रशासन में AI की उपयोगिता पर देश भर से आए विशेषज्ञों और शिक्षाविदों द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों में बच्चों से जुड़ी सूचनाओं की निगरानी, विद्यालय प्रबंधन और शैक्षिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में वर्ष 2026-27 के लिए MIS, UDIS Plus और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के प्रभावी संचालन एवं उपयोग के लिए 6,55,00,000 रुपये जारी किए गए हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार विद्यालय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ हर बच्चे की शैक्षिक प्रगति पर प्रभावी नजर सुनिश्चित कर रही है। MIS और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम से बच्चों से जुड़ी जानकारी के बेहतर उपयोग को नई मजबूती मिलेगी। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। फरुखाबाद बलिया में गंगा नदी, शाहजहांपुर में रामगंगा और अयोध्या बाराबंकी व तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने आज तहसील रामनगर में सरयू नदी के कटान से प्रभावित ग्राम हेतमापुर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है।
2: हमने उनकी लिस्ट बना ली है, जिन जिन के घर अनफॉर्चुनेटली कट गए उनको 1,20,000 की जो शासकीय सहायता है वो दी जा रही है। हमने जगह भी आइडेंटिफाई की है कि कहाँ पे उनको रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी जो नॉर्मल सहायताएं दी होती हैं, चाहे किट हो या कुछ भी व्यवस्था हो, हमारी प्रशासनिक टीम लगातार यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ संवाद कर रही है।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से अपनाया नई दिल्ली घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साझा संकल्प को परिणामों में बदलना सदस्य देशों की सामूहिक जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सेवाकाल को लेकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा प्रदेशव्यापी सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया नए भारत का विजन। प्रदेश भर में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। शाम 6 बजे तक 1,20,00,000 से अधिक मामलों का हुआ निस्तारण। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 2 दिवसीय AI मंथन 2.0 का शुभारंभ। देशभर से आए विशेषज्ञों ने AI उपयोगिता पर की चर्चा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ज पर और FM 100.3 पर प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे वार्ता। विषय है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता के अंश। वार्ताकार हैं प्रोफेसर मुश्ताक अली।
4: राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भारत में 1857 की क्रांति से मानी जाती है और उसकी समाप्ति 1947 में आज़ादी मिलने से होती है। यह संयोग ही है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की शुरुआत

भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के 1850 में पैदा होने की तिथि से मानी जाती है, यानी राष्ट्रीय आंदोलन और हिंदी साहित्य का आधुनिक काल लगभग साथ साथ चलते हैं। बल्कि यह कहना अत्युक्ति न होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव हमारे समाज और साहित्य पर गहरा पड़ा और उस दौर में जो साहित्य लिखा गया उसे राष्ट्रीय आंदोलन का साहित्य कहने में कोई संकोच नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन की यों तो कई विशेषताएं हैं, लेकिन उसकी सर्वाधिक बड़ी विशेषता उसका अहिंसात्मक और नैतिकता से भरपूर होना रहा है, जिसका प्रतिबिंब उस दौर के साहित्य में दिखाई पड़ता है। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन अनेक मुखी रहा है, वैसे ही उस दौर के साहित्य में न केवल राजनीतिक भावनाओं से ओतप्रोत साहित्य लिखा गया, सामाजिक, नैतिक तथा आर्थिक सुधारों और उन्नति संबंधी विचारधारा के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना को भी उभारा गया। राष्ट्र के प्रति प्रेम राष्ट्रीय चेतना का मूल आधार माना जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति उस दौर के साहित्य में कई रूपों में दिखाई देती है। कहते हैं, परतंत्र और दलित देश के लिए यह बड़े अभिमान की बात होती है कि उसका अतीत महान हो, उसको जागृत करने के लिए उसके गौरवपूर्ण अतीत का चित्रण कवियों का धर्म माना जाता है। यही कारण है कि भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतवर्ष के महान और गौरवपूर्ण अतीत का उल्लेख अपनी रचनाओं में बारंबार किया है। प्रताप नारायण मिश्र ने लोकोक्ति शतक में कहा है कि अपनापन, अपना आचार तथा अपनी जाति यदि अहितकर हो जाए तो भी उसका निरादर नहीं करना चाहिए। पितर प्रलाप में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भारत के अतीत गौरव का स्मरण करते हुए रघुवंशी तथा चंद्रवंशी प्रतापी राजाओं की वीरता, दानशीलता तथा ऐश्वर्य आदि का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले यही सभ्यता फैली, सभी प्रकार की कलाओं, विद्याओं आदि का मूल स्रोत भारत ही था। इसी तरह बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने स्फुट कविता में प्राचीन भारत के तेज, प्रताप, बुद्धि गौरव तथा यश का वर्णन किया है। कविताओं की तरह नाटकों में भी भारत की प्राचीन संस्कृति के महात्म्य को दर्शाया गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय के दोनों नाटकों प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय में यही बात उजागर होती है। भारतेंदु युगीन निबंधों में वैचारिकता और व्यक्ति व्यंजकता तो मिलती ही है, लेकिन अपने अतीत के प्रति मोह भी दिखाई पड़ता है। प्रताप नारायण मिश्र ने पवित्रता नामक निबंध में तो लिखा है कि भारत की पूर्णोन्नति का एक बड़ा कारण यह भी था कि स्त्रियां बहुधा पतिव्रता होती थीं। पौराणिक गूढ़ार्थ में वे प्राचीन संस्कृति तथा पुराणों में आस्था व्यक्त करते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने रुचना या पसंद शीर्षक लेख में भारत के संगीत, शिल्प और विद्या आदि की प्रशंसा की है। यह बात सच है कि भारतेंदु युग राष्ट्रीय भावना के जन्म तथा शैशव का युग था और ज्यादा ध्यान सामाजिक सुधारों एवं आर्थिक सुधारों तक सीमित था, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से राष्ट्रीयता की भावना विशेष बलवती हुई। स्वर्णिम अतीत का चित्रण तो कवि पहले से करते आ रहे थे। मातृभूमि के प्रति आदर एवं देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कविताओं का दौर शुरू हुआ। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने मातृभूमि शीर्षक कविता में मातृभूमि को ईश्वर की सगुण मूर्ति माना। वे लिखते हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, है मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। गुप्त जी की तरह श्रीधर पाठक की अनेक कविताओं में स्वदेश प्रेम की भावना के दर्शन किए जा सकते हैं। अपने समय के मशहूर कवि माधव शुक्ल के भारत गीतांजलि संग्रह में देश प्रेम की भावना व्यक्त करने वाली अनेक कविताएं संकलित हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता विनोद में संकलित जन्मभूमि शीर्षक कविता के बारे में स्वयं लिखा है कि जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिसका अन्न खाया है और अमृतोपम जल पिया है,

वह पुण्य भूमि यही भारत है। इसकी सेवा से हम जगत में सम्मान पा सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति में राष्ट्र कवि बाबू मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उर्दू के मशहूर कवि अल्ताफ हुसैन हाल ही के मुसद्दस के तर्ज पर लिखी गई भारत भारती हिंदी पाठकों द्वारा बहुत समादृत हुई। भारत के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों को समेटे हुए इस पुस्तक के बारे में गुप्त जी ने स्वयं लिखा है कि जिन सिद्धांतों का निरूपण हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले कर चुके थे, उन्हीं का समर्थन अब यूरोप के विद्वान करते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में गिने जाने वाले जयशंकर प्रसाद ने महाराणा प्रताप का महत्व काव्य में राणा प्रताप के चरित्र की उच्चता प्रदर्शित की है। जिनके चरित्र चित्रण से प्रभावित होकर अब्दुल रहीम खान खाना अकबर से राणा के साथ संधि की प्रार्थना करते हैं। राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत कवियों ने जहां भारत के स्वर्णिम अतीत और मातृभूमि के प्रति भाव प्रवण कविताएं लिखी, वहीं बंग भंग को लेकर संपूर्ण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रजा लामबंद हुई। तत्कालीन वाइस राय लॉर्ड कर्जन के शासन की निर्मम आलोचना को साहित्य में स्थान मिला। भारत मित्र के संपादक बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभु के नाम से जो चिट्ठे लिखे, उसमें लॉर्ड कर्जन के शासन प्रणाली की कड़ी आलोचना की। कर्जन के दो मुख्य कामों विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार का उल्लेख करते हुए गुप्त जी ने उनको शो बताया, ड्यूटी नहीं। बंग विच्छेद शीर्षक चिट्ठे में गुप्त जी ने लिखा कि यह बंग विच्छेद बंग का विच्छेद नहीं है, बंग निवासी इससे विच्छिन्न नहीं हुए, वरंच और युक्त हो गए। रही राष्ट्रीयता के स्वरूप की बात, तो जिन कवियों अथवा लेखकों का संपर्क इंडियन नेशनल कांग्रेस से अधिक रहा, उन्होंने पूर्णतः राष्ट्रीय दृष्टिकोण ही ग्रहण किया और प्रत्येक जाति वाले तथा प्रत्येक धर्मावलंबी को भारतीय माना। प्रेमघन ने स्वदेश बिंदु के अंतर्गत कामना की कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, ईसाई सभी जात के व्यक्तियों में प्रेम बढ़े और सभी भारतीय भाई सुखी हों। प्रेमघन जी ने जिस प्रकार काव्य में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, उसी प्रकार अपने निबंधों में भी मुसलमानों का भारत में अस्तित्व वह ठीक ऐसा ही मानते हैं जैसे बौद्ध, जैन, वैष्णव और शाक्तों का। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने तो अपने बलिया वाले भाषण में स्पष्ट कहा था कि यह समय इन झगड़ों का नहीं, हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए, जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो सबका आदर कीजिए, जो जिस योग्य हो उसको वैसा मानिए, छोटी जात के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी ने आजादी की चिंगारी को हवा देने वाली पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी। यह कविता देशभक्त की भावना से उत्प्रोत है जिसमें एक फूल अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वह उन वीरों के चरणों में समर्पित होना चाहता है जो देश के लिए शहीद हो रहे हैं। यह कविता यहाँ प्रस्तुत है। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कविता झांसी की रानी भले 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को केंद्र में रखकर लिखी गई हो, लेकिन यह कविता पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा स्रोत बनी रही। इस कविता की शुरुआती पंक्तियां इस प्रकार है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। असहयोग आंदोलन भी राष्ट्रीय आंदोलनों का एक अहम हिस्सा है जिसके संकेत तत्कालीन साहित्य में पर्याप्त मात्रा में दिखाई देते। असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ

0: ब्रिटिश हुकूमत द्वारा दी गई उपाधियों का बहिष्कार भी किया गया। दरअसल उपाधिधारियों को जनता अच्छी दृष्टि से नहीं देखती थी और उन्हें सरकारी पिट्ठू समझती थी। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास विदा में माधव बाबू को सर की उपाधि से नवाजा गया था, लेकिन उपन्यासकार की सहानुभूति माधव बाबू के प्रति नहीं दिखाई देती, इसके उलट वह उन पर व्यंग ही करता है। इसी तरह सुदर्शन ने अपनी कहानी सत्य मार्ग में दिखाया है कि मोहम्मद अब्बास जब कभी उपाधि की बात भूल जाते हैं तब वे देश की अधोगति पर आंसू बहाते थे। कहीं कहीं पिकेटिंग के संबंध में लेखकों ने दुकानदारों के नैतिक पतन का चित्रण भी किया है। प्रेम प्रसून की कहानी चकमा में दिखाया गया है कि दुकानदार किस प्रकार स्वयं सेवकों को धोखा देकर अपना कार्य सिद्ध करते। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में हिंदू मुस्लिम दंगे भी देश की एकता में कैसे बाधा उत्पन्न करते हैं, इसका वर्णन उस दौर के साहित्यकारों ने दोनों कौमों को जोड़ने के लिए किया। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास कायाकल्प में इसका बखूबी उल्लेख मिलता है। इस विषय को केंद्र में रखकर उन्होंने कई कहानियां भी लिखी। इसी तरह पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी खुदा राम में हिंदू मुस्लिम दंगों के चित्र हैं। इस कहानी में दंगों के चित्र अंकित कर उन्होंने हिंदू मुस्लिम भ्रातृभाव पैदा करने की कोशिश की है। खुदा राम कहानी के अंत में वे लिखते हैं कि इस पवित्र जुलूस के नेता थे खुदा राम, उनके पीछे हिंदू मुसलमान बच्चे, बच्चों के पीछे दोनों जात की माताएं और सबके पीछे मुसलमान पुरुष जुलूस के सशस्त्र रक्षकों की तरह चल रहे थे। प्रकृति पुलकित कलेवरा थी, तारिकाएं खिलखिला रही थीं, चंद्रमा हंस रहे थे, यह दृश्य पृथ्वी का स्वर्ग था। ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष की भावना राष्ट्रीय आंदोलन की एक अहम खासियत रही। 1928 से 1938 के बीच लिखे साहित्य में भी असंतोष की भावना को साहित्यकारों ने उभारा। निराला जी ने अपने उपन्यास अलका में शासन व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त किया। जमींदार प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, डिप्टी साहब जैसे हाकिम गांव के दौरे पर जब आते हैं तो गांव वालों को मुफ्त में सामान देना पड़ता तथा उनकी बेगार करनी पड़ती। पुलिस हो या अदालत, दोनों ग्रामीणों का शोषण करते हैं। निराला जी की तरह प्रेमचंद के उपन्यास गबन में भी दिखाया गया है कि पुलिस किस तरह झूठे गवाहों को तैयार करती है, गबन के नायक रमानाथ को फंसाने के लिए कैसे वो हथकंडे अपनाती है। उसे सरकारी गवाह बनाया जाता है, लेकिन अंत में अपनी आत्मा की पुकार सुन वह अपना बयान बदल देता है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर मुश्ताक अली की वार्ता, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता के अंश। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत के कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं रमा सेन। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं जयदेव शर्मा कमल का लिखा ये गीत।

0: सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज की कलाकार थी रमा सेन। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बज रहे हैं और समय हो गया है चित्रपट संगीत का। श्रोताओं नमस्कार, आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो साथी रोशनी बंसल। उम्मीद करती हूं कि आज रात आप अपने घरों में आराम से होंगे। दिन भर के कामकाज से थोड़ी फुर्सत मिली होगी, कोई खाना खा रहा होगा, कोई खाने की तैयारी कर रहा होगा, कोई अपने परिवार के साथ बैठा होगा और कोई शायद अभी रास्ते में ही होगा। दिन भर हम न जाने कितनी बातें करते हैं, कितने काम करते हैं, लेकिन रात में जब थोड़ा समय मिलता है तो मन करता है कि कुछ देर बस चुपचाप बैठें और कोई अच्छा गीत सुने। कभी कभी किसी गीत के साथ कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कोई दोस्त, कोई जगह, कभी कोई अपना, और बिना किसी वजह के भी मन खुश हो जाता है। तो चलिए आज रात कुछ देर ऐसे ही बातें करते हैं, कुछ पुराने नए गीत सुनते हैं। सबसे पहले सुनिए ये प्यारा सा गीत।

रात में पुराने गाने सुनने का अपना ही मज़ा है। दिन भर चाहे कितनी भी भाग दौड़ रही हो, कोई अच्छा गीत सुनते ही मन थोड़ा शांत हो जाता है। कभी लगता है कि बस सुनते ही रहें इसे, और कभी ऐसा होता है कि गीत के साथ कोई पुरानी याद भी आ जाती है। आपको क्या कभी ऐसा महसूस किया होगा? कोई गीत सुनते ही स्कूल के दिन याद आ गए, किसी पुराने दोस्त की याद आ गई, या फिर घर की कोई ऐसी बात जिसे याद करके आज भी अच्छा लगता है। बचपन में तो छोटी छोटी बातों में ही कितनी खुशी मिल जाती थी। कभी बारिश में भीगना, कभी दोस्तों के साथ खेलना, कभी घर में सबके साथ बैठकर खाना। तब हम ये नहीं सोचते थे कि कल क्या होगा, बस उस दिन में खुश रहते थे। अब जिंदगी में काम बढ़ गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि उस बचपन की थोड़ी सी खुशी आज भी हमारे पास रहनी चाहिए। इस बात पर लीजिए, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

बचपन की बात निकली है तो एक बात और याद आ जाती है। तब हम किसी से मिलने के लिए फ़ोन नहीं करते थे, बस घर से निकल गए और दोस्त के घर पहुंच गए। किसी के साथ बैठकर बातें करनी है तो बैठ गए, कोई नाराज़ हो गया तो थोड़ी देर बाद फिर दोस्ती हो गई। अब सब कुछ बदल गया है। किसी से बात करनी हो तो पहले फ़ोन करना पड़ता है, फिर समय मिलाना पड़ता है, और कभी कभी अपने ही लोगों से बात करने का समय नहीं मिल पाता। लेकिन आज रात एक छोटी सी बात कहूँगी, अगर आपके घर में कोई आपके

पास बैठा है तो उससे दो बातें कर लीजिए। अगर कोई अपना दूर है तो उसे फ़ोन कर लीजिए, पूछ लीजिए कि उसका दिन कैसा रहा। क्योंकि हम अक्सर उन लोगों को याद करते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास हैं उन्हें समय देना भूल जाते हैं। और जब कभी कोई गीत सुनते हुए पुरानी याद आ जाए तो उसे याद भी कर लीजिए, लेकिन आज के अपने लोगों को भी महसूस कीजिए। इसी बात के साथ अब सुनते हैं फिल्म जब वी मेट का ये गाना।

अभी जो गीत आपने सुना उसके साथ शायद किसी की कोई याद जुड़ी होगी। ऐसा ही होता है ना, कुछ गीत सुनकर हम कहीं और चले जाते हैं, कभी किसी जगह, कभी किसी पुराने समय में। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे दिन आते हैं जब काम बहुत होता है, मन परेशान होता है और लगता है कि सब कुछ एक साथ ठीक हो जाए, लेकिन हर बात का हल उसी समय मिल जाए ये ज़रूरी नहीं। कुछ बातें धीरे धीरे ठीक होती हैं, कुछ बातें समय के साथ समझ आती हैं, और रात का ये समय हमें यही मौका देता है कि थोड़ी देर अपने लिए दिन के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें। आज क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ और कल क्या बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अभी इन बातों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिन बीत गया है, अब थोड़ा आराम कीजिए और इसी आराम के साथ सुनिए फिल्म आनंद का ये गीत।

कभी कभी लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत जाता है। अभी तो सुबह हुई थी और अब रात हो गई, और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि कितने साल बीत गए। कभी स्कूल के दिन याद आते हैं, कभी कॉलेज के दिन, कभी कोई दोस्त जिससे अब पहले जैसे मुलाकात नहीं होती, और कभी कोई ऐसा व्यक्ति याद आ जाता है जिसे हम भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। शायद हर याद को भुलाना ज़रूरी नहीं है, कुछ यादें हमारे साथ रहती हैं क्योंकि वो हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं। लेकिन आज की रात एक बात और याद रखने की है, जो लोग अभी हमारे साथ हैं उन्हें भी समय दीजिए, किसी की बात सुन लीजिए, किसी के साथ बैठ जाइए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ बातें बाद में याद आती हैं लेकिन कुछ पल आज ही जीने होते हैं। अब सुनते हैं फिल्म बाज़ार का ये बहुत ही प्यारा गीत, फिर छिड़ी रात।

आज रात कुछ बातें हुई, बचपन की याद आई, कुछ पुराने गीत सुने, कुछ लोगों की याद आई और समय के बारे में भी सोचा। लेकिन शायद ज़िंदगी की सबसे अच्छी बात यही है कि हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। कभी किसी से प्रेम करना, कभी किसी को जाने देना, कभी अपने भीतर के बच्चे को बचाए रखना और कभी समय के साथ आगे बढ़ जाना। हम सब के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे हम पीछे छोड़ आते हैं। कोई दोस्त, कोई जगह, कोई रिश्ता या कोई ऐसा समय जब ज़िंदगी थोड़ी सरल हुआ करती थी। लेकिन शायद हमें हर चीज़ वापस पाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को बस याद रखना भी काफ़ी है। और जो लोग आज हमारे पास हैं उन्हें समय देना भी उतना ही ज़रूरी है। कभी कभी हम दूर बैठे किसी व्यक्ति को याद करते रहते हैं लेकिन हमारे पास बैठे व्यक्ति से ठीक से बात भी नहीं कर पाते। इसलिए आज रात अपने आसपास के लोगों को थोड़ा टटोलिए, किसी से पूछिए कि उसका दिन कैसा रहा, किसी की बात सुनिए और अगर कोई गीत सुनते हुए कोई पुरानी याद आ जाए तो उसे भी थोड़ी देर के लिए आने दीजिए। क्योंकि हर याद हमें पीछे खींचने के लिए नहीं होती, कुछ यादें हमें ये बताने आती हैं कि हमने ज़िंदगी में कितना कुछ अच्छा जिया है और शायद यही इस पूरी बातचीत का मतलब भी है। जो बीत गया उसे प्यार से याद रखिए, जो आज आपके पास है उसे महसूस कीजिए और कल की ओर थोड़ा सुकून लेकर बढ़िए। कल फिर सुबह होगी, फिर काम होंगे, फिर वही भागदौड़ शुरू होगी, लेकिन आज की रात को थोड़ा अपने लिए रखिए। तो आज के चित्रपट संगीत से मुझे अनुमति दीजिए। उम्मीद करती हूँ आज रात के कुछ गीत और कुछ बातें आपके साथ थोड़ी देर और रहेंगी। आप जहाँ भी हों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास के लोगों को थोड़ा समय देना मत भूलिएगा।

यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है सबरस कार्यक्रम, जिसमें नरेंद्र चंचल के स्वर में सुनेंगे आप ये भजन।

आप सुन रहे थे आबिदा परवीन के स्वर में सूफी गीत। सबरस कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालिंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिक

0: प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य

0: में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
1: क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटीज और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
0: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
1: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: I would like to say that the outcome document,
3: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
2: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय

0: अर्थव्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
1: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़

0: चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आर्यना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आर्यना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोफ को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालिंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वर्षा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। BRICS nations adopt New Delhi Declaration 2026, reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation. Declaration calls for economic and developmental cooperation among member states, urges dialogue and diplomacy to resolve disputes, particularly in West Asia. New Delhi says adoption of the declaration among defining outcomes of India's BRICS chairship. Prime Minister Narendra Modi says gap between decisions and outcomes must be bridged through partnership and collective action. Emphasizes BRICS moving forward with approach of taking everyone along. Prime Minister Modi and President of China Xi Jinping stress for strategic and long-term perspective of ties in their bilateral meeting, assert differences should not become disputes. Mr. Modi holds a series of bilateral meetings with his counterparts from BRICS countries. CBI secures extradition of red notice fugitive Amritpal Singh from Moldova, and in US Open, defending champion Aryna Sabalenka to take on Elena Rybakina in women's singles title clash tonight. The BRICS nations adopted the New Delhi Declaration on the first day of the summit at Bharat Mandapam in New Delhi today. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. It highlighted the need to tackle hunger and poverty and strengthen the global response to climate change. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now theirs.

0: shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
1: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता. रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है. आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है. अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले.
0: Here is more from our correspondent.
2: BRICS member countries expressed deep concern over continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. They urged to ensure protection of civilians and civilian infrastructure in accordance with purposes and principles of the Charter of the United Nations. BRICS members further expressed serious concern over deliberate attacks on civilian infrastructure and peaceful nuclear facilities under full safeguards of the International Atomic Energy Agency. BRICS leaders also called for implementation of the relevant UNGA and UNSC resolutions and urged all parties to ensure the maintenance of ceasefire and full and unhindered humanitarian access in the Gaza Strip. They strongly condemned any acts of terrorism as criminal and unjustifiable regardless of their motivation. They condemned the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April last year in the strongest terms. BRICS members reaffirmed commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations, including the cross-border movement of terrorists, terrorism financing, and safe havens. With BRICS team, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
0: The 18th BRICS summit kicked off this afternoon with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action.
1: Global South aaj vaishvik sankaton ki front row mein hai, lekin decision making ki back row mein hai. Hame is pyramid of privilege ko प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो. इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें.
0: द प्राइम मिनिस्टर सेड ब्रिक्स कंट्रीज विल हैव टू वर्क ऑन अ न्यू एंड एम्बिशियस एजेंडा फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स.
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले. अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा. इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी. ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए.
0: The Prime Minister also proposed to establish a seafarers' emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times.
1: क्या हम seafarers' emergency support network बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की maritime authorities और missions को जोड़ा जाएगा. इससे distress alerts, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है.
0: Prime Minister Modi said the time has come to translate the unity and consensus among BRICS countries into concrete outcomes on the global stage. He said resilience, innovation, cooperation and sustainability have been India's foremost priorities as the chair.
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है. रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं. इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है.
0: After the conclusion of the session on the first day, Prime Minister Modi and the BRICS leaders planted saplings at the venue.

0: नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर इथोपिया, मलेशिया और वियतनाम के वज़राए आज़म के साथ साथ अबू ज़हबी के वलीअहद शहजादे के साथ दो तरफा बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स रुकन ममालिक ने मगरबी एशिया में जारी बढ़ती कशीदगी पर तश्वीश का इजहार किया और ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल बरतने के साथ साथ ऐसी कार्रवाइयों से गुरेज करने पर जोर दिया जिससे सूरत हाल में मजीद कशीदगी पैदा हो। उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और उसूलों के मुताबिक शहरियों और शहरी बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। ममालिक ने बातचीत और सिफारतकारी के जरिए कोशिशों में इजाफे की हौसला अफजाई की ताकि खत्ते में देरपा अमन, सलामती और इस्तेहकाम के सिलसिले में तवील मुद्दती आपसी समझबूझ पैदा हो सके। ब्रिक्स रुकन ममालिक ने बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात के तहत शहरी बुनियादी ढांचे और पुरम न्यूक्लियाई सहूलतों पर जानबूझ कर किए गए हमलों पर भी गहरी तश्वीश जाहिर की। उन्होंने गुज़श्ता बरस 22 अप्रैल को दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की कि जो जम्मू कश्मीर में किया गया था। ब्रिक्स रुकन ममालिक ने सरहद पार दहशतगर्दों की नकलो हरकत, दहशतगर्दी की माली एयानत और उसके लिए महफूज पनाहगाहों समेत हर तरह की दहशतगर्दी से निमटने के अज़्म का भी एयादा किया। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजारत खारजा ने आज कहा है कि भारत की ब्रिक्स की सदारत के दौरान मुख्तलिफ सतहों पर एक साल तवील राबतों के सबब ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में नई दिल्ली एलानिए पर इतफाक राय हो पाया है। आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में मीडिया से बातचीत करते हुए इक्तिसादी ताल्लुकात शोबे के सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली एलानियों को इख्तियार किया जाना भारत की सदारत के अहम नतायज में से एक है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की सदर नशीनी लोगों पर मरकूज रही है। जनाब दलेला ने भारत की सदारत के दौरान अपने तआवुन के लिए ब्रिक्स ममालिक का शुक्रिया अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में मलेशिया के सरमायाकारी तजारत और सनत के वजीर दातुक सेरी जोहारी अब्दुल गनी के साथ दो तरफा मीटिंग की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग के दौरान तरफैन ने भारत मलेशिया इक्तिसादी शराकत दारी का जायजा लिया और बाहमी तजारत और सरमायाकारी को फरोग देने, बाजार तक रसाई को बेहतर बनाने और सप्लाई चेन राबतों को मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि भारत बाहमी तौर पर और भारत आसियान तरीक़ेकार के तहत तजारत और इकतसादी तल्लुकात के तमाम तर इम्कानात की खातिर मलेशिया के साथ करीबी तौर पर इश्तराक के लिए मुसलसल पुरअज़्म है। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज भारत आसियान बुनियादी ढांचे, सरमायाकारी, बैंक, AIIB शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। वजीर ख़जाना ने नई दिल्ली में AIIB की सदर जू जियाई से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजारत ख़जाना ने कहा कि भारत में बुनियादी ढांचे और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की तरजीहात में मदद फराहम करने, मकामी करेंसी में माली मदद में इजाफे, निजी शोबे की शराकत दारी को बढ़ाने और AIIB की आलमी मौजूदगी के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। मरकजी जाँच ब्यूरो CBI ने रेड कॉर्नर नोटिस पर अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मलडोवा से भारत लाने में कामयाबी हासिल कर ली है। वजारत खारजा, वजारत दाखिला और पंजाब पुलिस के साथ तालमेल कायम करके CBI इस मतलूबा मफरूर मुलजिम को भारत लाई है। पंजाब पुलिस की चार अहलकारों की एक टीम को मफरूर मुलजिम को वापस लाने के लिए मलडोवा भेजा गया था। तहकीकाती एजेंसी ने कहा है कि पंजाब में रजिस्टर्ड संगीन नौयत के कई फौजदारी केसों में उसकी तलाश थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यहूदियों के नए साल रोश हशनाह के मौके पर इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू, इसराइल के अवाम और दुनिया भर में यहूदी बिरादरी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि यह नया साल हर एक के लिए अम, तंदुरुस्ती और तरक्की लेकर आएगा। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि गैर मुल्की करेंसी से मुतल्लिक नॉन रेजिडेंट बैंक और दिगर स्कीमों के जरिए आने वाली रकूमात में काफ़ी इजाफा हुआ है। एक प्राइवेट टेलीविज़न चैनल के साथ इंटरव्यू में RBI के गवर्नर ने कहा कि बड़ी रकूमात की आमद से भारत के मैक्रो इक्तसादी बुनियादी अवामिल में एतमाद की अक्कासी होती है और मुख्तसर मुद्दत के अंदर गैर मुल्की सरमाए को रागिब करने की सलाहियत का इजहार भी होता है। बैंकारी निज़ाम में इजाफी नकद रकम की दस्तियाबी के बारे में जनाब मल्होत्रा ने कहा कि नकद रकम के बंदोबस्त के लिए रिज़र्व बैंक के पास मुनासिब तरीक़ेकार हैं

और वो ज़रूरत के लिहाज से इनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर में 10 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। इनमें कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपुरा, बारामूला और सुपोर शामिल हैं। तलाशी की यह कार्रवाई सरहद पार दहशतगर्दी की एक साजिश के सिलसिले में की गई है, जिसमें दहशतगर्द तंजीम लश्कर ए तैयबा के पाकिस्तान से काम करने वाले आका और मकामी कारिंदों के मुबैना नेटवर्क के मुलविस होने की बात कही गई है। तलाशी की कार्रवाई के दौरान इस केस से व्यवस्था काबिले एतराज मवाद जब्त किया गया, जिसकी जांच की जा रही है। US ओपन टेनिस में आज रात खवातीन सिंगल्स के फाइनल में दिफाई चैंपियन अरियाना सवलेंका और एलिना रवकीना का मुकाबला होगा। मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में कल अलेक्जेंडर ज़वरेव और बेन शेल्टन आमने सामने होंगे। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने ज़्यादा मजबूत कसीर रुखी निज़ाम और इश्तराक बढ़ाने के अपने अहद का इरादा करते हुए नई दिल्ली एलामिया 2026 मंजूर किया है। इसमें मेंबर मुल्कों के माबेन और ज़्यादा इकतसादी और तरक्याती इश्तराक के लिए कहा गया है। तनाज़ात खासतौर पर मगरबी एशिया के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर दिया गया है। भारत ने कहा है कि नई दिल्ली एलामिया का मंजूर होना भारत की ब्रिक्स सदारत के अहम नतायज में से एक है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फैसलों और नतीजों के दरमियान फ़र्क को साझेदारी और इज्तिमाई इकदामात के जरिए दूर किया जाना चाहिए। वज़ीरे आज़म ने इस बात को उजागर किया कि ब्रिक्स हरेक को साथ लेकर चलने की हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी दोतरफा बातचीत में ताल्लुकात के कलीदी और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र पर जोर दिया। जनाब मोदी ने ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए आज़म के साथ दो तरफा बातचीत की। CBI रेड कॉर्नर नोटिस के तहत मफरूर मुलजिम अमृतपाल सिंह को मोल्डोवा से भारत ले आई है और US ओपन टेनिस में आज रात खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पिछली बार की चैंपियन अरियाना सवलेंका और एलिना रेवेंका आमने सामने होंगी। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति को अगर किसी एक शब्द में समझना हो तो संभवतः वो शब्द होगा जीवन। हम किन परंपराओं को सजोते हैं, किन नदियों के किनारे अपनी स्मृतियां छोड़ते हैं, किन पर्वों में सामूहिक उल्लास के रंग भरते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या गाते हैं, किस भाषा और बोली में अपनी पीड़ा दर्ज करते हैं, इन सब में हमारी संस्कृति सांस लेती है। और इसीलिए भाषा भी केवल संवाद का माध्यम नहीं है। भाषा में हमारी स्मृतियां हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी जीवन दृष्टि है। जरा सोचिए, हमारी दादी नानी की कही कोई पुरानी बात, गांव की कोई लोक कथा, किसी त्योहार का गीत, इस रिश्ते को पुकारने का अपना अलग ढंग, क्या ये महज शब्द है? नहीं, इन शब्दों में एक पूरी जीवन पद्धति होती है। एक समाज, उसकी स्मृतियां, उसकी परंपराएं और उसकी संवेदनाएं। दरअसल भाषा और बोलियां संस्कृति की सबसे जीवंत आवाज हैं। हम जैसा जीते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हमारे देश की खूबसूरती ही इसकी विविधता है। यहाँ भाषा बदलती है तो उसके साथ लोक बदलता है, लय बदलती है, संबोधन बदल जाते हैं, लेकिन भावनाओं की धड़कन वही रहती है। हिंदी की अपनी खूबसूरती भी इसी में है कि उसने इस विविधता से संवाद किया। अलग अलग भारतीय भाषाओं, बोलियों और लोक परंपराओं से शब्द और भाव ग्रहण किए, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं से भी। इसीलिए हिंदी कोई बंद कमरा नहीं, बल्कि कई दिशाओं से आती हुई सांस्कृतिक हवाओं के लिए एक खुली खिड़की है। और जब कोई भी भाषा संस्कृति को अपने भीतर समेटती है

0: तो वो सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं रहती, वो हमें अपने होने का अर्थ भी बताती है। भाषा से संस्कृति की ओर और संस्कृति से प्रकृति की ओर, अब एक ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता केवल पैरों से नहीं स्मृतियों और संवेदनाओं से भी तय होता है। नर्मदा, जिसे भारत की जीवनदायिनी नदियों में से एक माना जाता है, जिसके तटों पर सभ्यताएं, लोक विश्वास और अनगिनत कथाएं आकार लेती रही हैं। विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में सुनिए प्रख्यात चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़ के स्वरों में उनकी नर्मदा परिक्रमा के वृत्तांत का एक अंश, तीरे तीरे नर्मदा।
1: हम लोग नर्मदा पदयात्रा कर रहे थे और अमरकंटक जा रहे थे। छिनगांव का कुआं गांव के बाहर एक घाटी में था। मेरे साथी बड़े सवेरे वहां जाकर नहाए। मैं गया जरूर पर नहाया नहीं, ठंड के कारण हिम्मत ही न हुई। मन को समझाया, नहाऊंगा तो नर्मदा में, कुओं तालाबों पर नहीं। कई हंसा मोती चुगे, कई भूखे रही जाएं। छिनगांव से बरछा, कच्ची धूल भरी सड़क से उतरने लगे तो नीचे दूर मैदान में से बहती हुई धूप नहाई नर्मदा दिखाई दी। अब प्रायः अमरकंटक तक नर्मदा मैदान में से ही बहती है। पंचमनाथ पुजारी जब 48 बरस का था तभी पत्नी का देहांत हो गया था, अभी 70 का है और पूरी तरह से स्वस्थ है। कहता है, मैं बाहर भी हूं और भीतर भी हूं। अगर हम लोग भी बीच बीच में भीतर चले जाया करें और देखते रहें कि कहीं हमारी आत्मा को फफूंद तो नहीं लग गई तो कितना अच्छा हो। दूसरे दिन भी लगातार पानी बरसता रहा, हम कहीं जा नहीं सकते। लेकिन किसानों को कई दिनों से इस वर्षा की प्रतीक्षा थी, उनकी फसल सूख रही थी, उसे नया जीवन मिला। वैसे किसानों को इससे कहीं अधिक पानी की जरूरत थी। बादलों को आकाश से नीचे उतारने की विद्या केवल वनों को आती है और हम अपने अधिकांश वन काट चुके हैं। अब बादलों को आकाश की अटारी से नीचे धरती पर भला कौन उतारे। रात लुकामपुर में रहे, रात्रि के अंतिम प्रहर में ओस गिरनी शुरू हो गई थी। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से ओस की बुंदनियां, सवेरे घना कोहरा। कोहरे के छटने का काफी इंतजार किया लेकिन छटा नहीं तो कोहरे और ओस की फुहार में ही चल दिए। चलते चलते आसपास के सौंदर्य को मन में उतारता जाता, सोचता क्या इस सौंदर्य की गूंज अपनी कृतियों में पैदा कर सकूंगा। लेकिन इसकी चिंता अभी क्यों करूं, अभी तो इसका भरपूर आनंद लूं, अपने हृदय में उतार लूं और पकने के लिए वहीं छोड़ दूं। समय आने पर वह स्वयं बाहर आएगा, इसमें समय लगता है। अगर मैं कलाकार हूं तो मुझ में धैर्य होना चाहिए। दोपहर को खाना नहीं बनाते लेकिन रामघाट के प्रपातों को देखकर लगा कि आज खाना यही बने। देर तक मैं उन प्रपातों के पास मड़राता रहा। शाम तक दूधी संगम पहुंच गए लेकिन एक ग्रामीण ने कहा कि आप दूधी पार करके हर्रा जाइए, वहां कहीं न कहीं रहने की व्यवस्था हो जाएगी। आधी रात को आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्र था, चंदन का घाट और पूनो का चांद। अपनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान मुझे कई पूर्णिमाएं देखने का अवसर मिला है और हर बार मैंने नई नई उपमाओं से चांद और चांदनी का वर्णन किया है। सवेरे आगे बढ़े, बसंतपुर और कंचनपुर होते हुए ठाड़ पातर पहुंचे। इस बार की यात्रा में एक सुखद परिवर्तन देखने मिला। अधिकांश गांव में प्राथमिक पाठशालाएं खुल गई हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जहां भी शाला मिली हम वहां जरूर गए और शिक्षक से अनुमति लेकर मैं बच्चों को नर्मदा के बारे में बताता। अगर बच्चे जरा बड़े होते तो अपनी पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा में से उनके गांव से संबंधित अंश पढ़कर सुनाता। नर्मदा तट के कई गांवों में मैंने बच्चों के समक्ष रचना पाठ किया। उसी निष्ठा से

0: जिस निष्ठा से नवंबर 2001 में भोपाल के भारत भवन में साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के समक्ष किया था, ठाड़ पाथर की पाठशाला को देखते ही मेरी बांछें खिल गई। प्यारे बच्चों, हर बच्चे को सबसे अधिक प्यार अपनी माँ से होता है, माँ के बिना वह रह नहीं सकता। इससे हुआ यह कि जो भी चीज हमें बहुत प्यारी होती है उसे हम माँ कहने लगे, जैसे हमारा देश, हम उसे भारत माता कहते हैं। इसी प्रकार यह जो नर्मदा बह रही है ना, वह हमें इतनी प्यारी लगती है कि हम उसे भी माँ कहते हैं, नर्मदा मैया। बच्चों, तुम कितने भाग्यवान हो कि नर्मदा की गोद में पल बढ़ रहे हो। पता नहीं बड़े होकर तुम इसी गांव में रहोगे या और कहीं जाओगे। जहां भी जाओ अपनी इस नदी को कभी मत भूलना। तुम जहां भी जाओगे इस नदी का एक अंश तुम्हारे साथ जाएगा।
1: ये थे चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृत लाल वेगड़। स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी जबलपुर। देश के मध्य में नदी की धारा से अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां संस्कृति केवल उत्सव नहीं समुदाय की सामूहिक स्मृति और प्रकृति के साथ उसके रिश्ते की अभिव्यक्ति है। मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसने वाला गारो समुदाय सूर्य देवता को समर्पित जिस उल्लासपूर्ण नृत्य उत्सव के साथ अपनी सामुदायिक जीवन ऊर्जा को व्यक्त करता है वो है वांगला। और इसी वांगला के लोकरंग को समेटे है हमारी अगली प्रस्तुति, ये लघु रूपक आशीर्वाद मिसी सालजोंग का।
2: हरे भरे पहाड़, बादलों से घिरा आसमान और इसके बीच गूंजती ढोल की सामूहिक थाप, ये है मेघालय का गारो समुदाय का वांगला। एक ऐसा लोक उत्सव जिसमें संगीत है, नृत्य है और प्रकृति के प्रति आभार की भावना भी।
3: भारत के पूर्वोत्तर की जनजातीय परंपराओं में गारो समुदाय की अपनी विशिष्ट पहचान है। गारो समुदाय मुख्य रूप से मेघालय में निवास करता है, हालांकि असम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी इनकी बसावटें हैं।
2: वांगला फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला पारंपरिक उत्सव है। ये मूलतः गारो समुदाय के सूर्य देवता मिसी शालजो के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि के उत्सव का अवसर है।
3: और इसकी सबसे खास पहचान है ढोल की सामूहिक थाप। शायद इसी वजह से वांगला को कहा जाता है 100 ढोलों का उत्सव।
2: इस जीवंत परंपरा की खूबसूरत झलक इस साल दिल्ली में आयोजित नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट फेस्टिवल यानी नेस्ट फेस्ट 2026 में भी देखने को मिली।
3: लेकिन आखिर वांगला नृत्य की खासियत क्या है, इसकी प्रस्तुति में कौन सी लय और भाव छुपे हैं?
4: मेरा नाम अनालिशा है, मैं मेघालय से हूँ, गारो ट्राइब से। तो ये हमारा वांगला डांस जो है वो एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स ने शुरू करा था। जो ट्राइब है मेघालय की उसका एक गॉड है जो कि हम बोलते हैं मिसी सालजोंग, जो कि सन के गॉड हैं। तो हम उनको हमारी अच्छी हार्वेस्ट को प्रेज करने के लिए या फिर वर्शिप करने के लिए हम ये वांगला डांस परफॉर्म करते हैं। 100 ड्रम्स वांगला ये एक फेस्टिवल है, इस पे हम वांगला परफॉर्म करते हैं। हमारा जो ड्रम्स होता है हम खुद ड्रम्स बजा के हम डांस करते हैं। जो लड़के लोग होते हैं वो ड्रम्स, हमारे ड्रम जो होते हैं उसको दामा बोलते हैं, लंबे ड्रम होते हैं, वो लड़के लोग डांस के टाइम पे उसको कैरी करते हैं और वो बजाते हैं उस टाइम पे, तो वही हमारा इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक हो जाता है।
2: पारंपरिक दामा ढोल की थाप पर जब कलाकार एक साथ कदम मिलाते हैं तो जैसे पूरी प्रस्तुति में एक लय सी दौड़ जाती है।
3: ढोल की यही धुन वांगला को गति देती है, 100 ढोलों के उत्सव की पहचान भी देती है।
2: वांगला की खूबसूरती सिर्फ इसके लय और

0: कदमों में नहीं, इसके रंगों में भी दिखाई देती है। पारंपरिक वेशभूषा के रंग बिरंगे परिधान और आभूषण इस नृत्य को एक अलग विजुअल पहचान देते हैं।
1: आइए सुनते हैं अनालिशा को।
2: जब हम ये डांस परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली हम लोग अपना ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं। ट्रेडिशनल अटायर जैसे कि हम लोग सर पे बांधने का कपड़ा पहनते हैं, रैप अराउंड स्कर्ट होता है। मैं अगर गारो में बोलना चाहूँ तो एक दोमे होता है, दोमे जो होता है वो हम सर पे लगाते हैं, वो मुर्गी के पंख होते हैं, और एक खोतप होता है वो हम सर पे बांधते हैं, कपड़ा जैसा होता है। तो फिर हम इयररिंग्स भी पहनते हैं, उसको हम नाथपशी बोलते हैं, और नेकलेस भी पहनते हैं, लंबे लंबे नेकलेस, उसको हम रुकतुक बोलते हैं या फिर रुकमच्छू। और हम जो बेल्ट पहनते हैं उसको हम सेंखी बोलते हैं, और जो हम हाथ में जो चूड़ियां पहनते हैं उसको हम जक्सान बोलते हैं। हाँ, और जो हम नीचे जो रैप अराउंड स्कर्ट पहनते हैं उसको हम मंदा बोलते हैं।
1: इस पूरी प्रस्तुति का नेतृत्व करने वाला एक खास कलाकार भी होता है जिसे कहा जाता है मदग्रिक। आइए सुनते हैं रियोशन से।
3: तो जो मदग्रिक का जो ड्रेस है वो सबसे अलग होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा वॉरियर होता है जो अपने कम्युनिटी को लीड करेगा। तो उसका जो कपड़ा होता है उसका पंडरा होता है, जो वो गमछा की तरह उसको पहना जाता है उसको पंडरा कहते हैं, और इसको रुकमच्छू कहते हैं, जो हम गले में पहनते हैं उसको रुकमच्छू कहते हैं। और उसके बाद हम डोमे भी पहनते हैं। डोमे बेसिकली जो बर्ड है, वाइल्ड बर्ड्स से उनको बनाया जाता है।
0: तो ये है गारो समुदाय का वांगला, जहाँ ढोल की हर थाप में उत्सव की खुशी है, हर कदम में सामूहिकता की लय है, और हर रंग में अपनी संस्कृति पर गर्व।
1: समय बदला, जीवन शैली बदली, लेकिन वांगला की थाप आज भी गूंज रही है, अपनी परंपरा, अपनी पहचान और अपनी जड़ों को साथ लेकर। संस्कृति भारती के लिए मैं हूँ प्रांजल।
0: और मैं नेत्रा।
4: आशीर्वाद मिसी सालजोंग का। गारो समुदाय के वांगला नृत्य उत्सव पर केंद्रित लघु रूपक अभी आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। लोक से शास्त्र, परंपरा से पर्व, और अब गणपति बप्पा की भक्ति और उत्सव धर्मता के रंग। भारत के अलग अलग हिस्सों में पर्वों की अपनी अपनी छवियां हैं, अपनी ध्वनियां हैं, अपनी परंपराएं हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तो जैसे सार्वजनिक जीवन और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा ही है। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति गणपति बप्पा मोरया।

पुणे का गणेशोत्सव आज जिस तरह से पूरे जोश और उत्साह से मनाया जाता है, उसकी शुरुआत के पीछे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का बड़ा योगदान है। सन 1893 में लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। उस समय गणपति की पूजा ज्यादातर घरों में ही होती थी। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव के बहाने लोगों को एक साथ लाया। गणेशोत्सव को उन्होंने अनंत चतुर्दशी तक मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे पूजा के साथ भजन, कीर्तन, भाषण

0: और तरह तरह के कार्यक्रम भी होने लगे। उस समय देश अंग्रेजों के शासन में था, इसलिए इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों में जागरूकता और देश के लिए कुछ करने की भावना भी पैदा होने लगी। शुरुआत में सन 1893 में पुणे में 3 और मुंबई में 2 जगह सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया गया था। धीरे धीरे यह उत्सव पुणे से निकलकर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों तक और अब तो सारे देश में ही नहीं विदेश में भी पहुंच गया है। पुणे के गणेशोत्सव की एक खास पहचान है यहाँ के प्रतिष्ठा प्राप्त 5 गणेश, जिसे मराठी में मानाचे 5 गणपति कहते हैं। इनमें श्री कस्बा गणपति को पुणे का ग्राम दैवत माना जाता है।
1: नमस्ते, मैं नीलेश वकील कार्याध्यक्ष, मैं बात कर रहा हूँ पुणे के प्रथम नामांकित मंडल से, श्री कस्बा गणपति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल से। 1893 में यानी 1893 में ये गणेशोत्सव मंडल की हमारे स्थापना हुई और तब से ये

0: इनमें श्री कस्बा गणपति को पुणे का ग्राम देवत माना जाता है।
1: नमस्ते, मैं नीलेश वकील कार्याध्यक्ष, मैं बात कर रहा हूँ पुणे के प्रथम नामांकित मंडल से, श्री कस्बा गणपति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल से। 1893 में यानी 1893 में ये गणेशोत्सव मंडल की हमारे स्थापना हुई और तब से ये उत्सव चलते आ रहा है। पहला मान विसर्जन का यानी पहला नंबर हमको दिया जाता है। गणेशोत्सव क्या है तो कलावंत, विचारवंत, बुद्धिवंत इन लोगों का उत्सव यानी गणेशोत्सव, यानी सब लोग आके ये उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। गणेशोत्सव की और एक खासियत है कि सामाजिक काम यानी सोशल वर्क। इसी तरह से हम लास्ट 25 साल से ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं।
0: इसके बाद तामड़ी जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, तुलसीबाग और केसरीवाड़ा के गणपति आते हैं।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित तिलक, मैं अध्यक्ष हूँ केसरी गणेश उत्सव का। अलग अलग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं केसरीवाड़ा में, कोई लेक्चर्स हो, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स रखे जाते हैं, कॉम्पिटिशन रखी जाती है, ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है। ऐसे पूरे 10 दिन कार्यक्रम केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से किया जाता है। अगर कोई प्रेजेंट इशू हो तो उसके ऊपर भी लेक्चर्स ये केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से हमेशा कंडक्ट किया जाता है।
0: गणपति की स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी के विसर्जन तक पूरा शहर जैसे उत्सव में डूबा रहता है। कहीं ढोल ताशों की गूंज सुनाई देती है तो कहीं सुंदर सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई देते हैं।

0: श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति के बारे में हेमंत रास ने बताते हैं।
1: जय गणेश। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणेशोत्सव 135 साल यहाँ पुणे में विराजमान हो रहे हैं। अभी श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति का परमानेंट मंदिर हो गया है। यहाँ बहुत बड़ी भीड़ रहती है। उत्सव में 10 दिन में 2 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस साल हमने वृंदावन का प्रेम मंदिर यहाँ मंडप में बनाया है, जो दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के दान पेटी में जो भाविक अपना योगदान देते हैं, उससे हम मानव सेवा का महामंदिर बनाते हैं।
0: भाऊ रंगारी गणेशोत्सव के अध्यक्ष संजीव जावड़े,
2: ये जो उत्सव जो चालू हुआ वो 1892 में भाऊ रंगारी इन्होंने चालू किया उनके साथीदारों के साथ, और उन्होंने एक मूर्ति बनाई जो राक्षस को वध करती है, और ये मूर्ति इको फ्रेंडली है। और 1892 से आज तक हमारे ट्रस्ट ने किसी के पास चंदा लिया नहीं है। हम गुलाल नहीं यूज करते, और तीसरी बात यानी हमारे जो उसमें म्यूजिक या गीत जो रहते वो भक्ति गीत रहते, और वो भी मॉडरेट लेवल नॉइस पे।
0: पुणे का गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि लोगों को साथ लेने वाला, हमारी संस्कृति से जोड़ने वाला एक खास उत्सव बन गया है।
3: गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति आपने सुनी आकाशवाणी पुणे के सौजन्य से। उत्सव हमें जोड़ते हैं और शिक्षा हमें सशक्त बनाती है। साक्षरता केवल अक्षरों को पहचान लेने का नाम नहीं, ये अपने अधिकारों को समझने, अपने निर्णय स्वयं लेने और दुनिया को नए नजरिए से देखने की क्षमता भी है। शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में अब एक ऐसी कहानी जिसने साक्षरता की उपलब्धि को एक भौगोलिक पहचान से जोड़ दिया, मिजोरम की उस यात्रा की कहानी जिसने उसे साक्षरता के शिखर तक पहुंचाया। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति साक्षरता का मिजो शिखर।
4: साक्षरता का अर्थ केवल वर्णमाला पहचानना या हस्ताक्षर करना नहीं है। वास्तविक साक्षरता वो है जो नागरिक को अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और समाज के प्रति उसके योगदान का एहसास भी कराए। हाँ, शुरुआत जरूर अक्षरों की पहचान से होती है।
5: सितंबर का ये समय देश भर में पठन पाठन और गुरु परम

0: परंपरा के सामाजिक महत्व पर मंथन का अवसर देता है। ये समय हमें ये देखने का अवसर भी देता है कि नीतियाँ कागजों से उतरकर धरातल पर कितना प्रभाव छोड़ रही हैं।
1: इसी उजाले की मिसाल बनकर उभरा है भारत के पूर्वोत्तर का सुंदर राज्य मिजोरम। भारत सरकार के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम ने 98.2% की कार्यात्मक साक्षरता हासिल करके देश में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है।
0: पर जानते हैं, दुर्गम पहाड़ियों और बीहड़ रास्तों के बीच बसी आबादी में इतना बड़ा बदलाव केवल कागजी दावों से नहीं होता। जब जमीन पर जाकर एक एक घर का सर्वे किया गया तो देखा गया कि आखिरी पड़ाव पर लगभग 3000 ऐसे लोग बचे थे जो अक्षरों की दुनिया से दूर थे।
1: और यहाँ मिजोरम की सांस्कृतिक चेतना का एक सुंदर रूप देखने को मिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं तलांगना। जैसे ही सर्वे के आंकड़े सामने आए तो बिना किसी आर्थिक लाभ की परवाह किए लोकल वॉलंटियर्स और युवा खुद आगे आ गए।
0: इन युवाओं ने गांव-गांव जाकर अपने से बड़ों को पढ़ाना शुरू किया और एक अनोखा कम्युनिटी बॉन्ड बना, यानी तलांगना। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आधुनिक कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल को समझने के लिए आइए सुनते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल परिसर के प्राध्यापक डॉक्टर वनलाल रोहता को।
2: मिजोरम में जीवन को करीब से देखने और समझने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि मिजो समुदाय का पढ़ना पुस्तकों और शिक्षा के साथ ऐतिहासिक रूप से एक गहरा और विशिष्ट संबंध रहा है। जब ईसाई मिशनरी मिजोरम आए तो उन्होंने रोमन लिपि का प्रयोग करते हुए मिजो भाषा के लिखित रूप को विकसित और प्रचलित किया। मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ने की संस्कृति केवल उच्च शिक्षित लोगों तक सीमित नहीं थी। परिवारों में मनोरंजन और रुचि के लिए पढ़ने की भी एक मजबूत परंपरा रही है। सोशल मीडिया के दौर से पहले माता पिता द्वारा बच्चे को सोने से पहले कहानियां सुनना या सुनाना काफी आम बात थी। मेरा मानना है कि मिजोरम की उच्च साक्षरता दर की जड़ें समुदाय की मजबूत सहभागिता की संस्कृति में निहित है। मिजो दर्शन में निहित त्रावमेना अर्थात बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और उनकी सहायता करना, उल्लास अर्थात समाज के सभी वर्गों के लिए आजीवन सीखने की अवधारणा, या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भी इसी सामुदायिक भावनाओं को महत्व दिया गया है। किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए 95% साक्षरता को मानक माना गया है। उल्लास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मुझे इसमें स्वयं सेवी शिक्षकों की भूमिका लगती है। मिजोरम में इन स्वयं सेवी शिक्षकों में विद्यार्थी, शिक्षक, संसाधन व्यक्ति और क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर के समन्वयक शामिल रहे हैं। उन्होंने विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, व्यायाम पुस्तकालय और आवश्यक पड़ने पर शिक्षार्थियों के घरों तक जाकर भी सीखने सिखाने की गतिविधियां संचालित की।
3: कम्युनिटी हॉल्स, व्यायाम लाइब्रेरीज एंड वेयर नेसेसरी इवन इन लर्नर्स होम्स एज़ वेल टू देयर ओन सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट।
0: मिजोरम के पहाड़ों पर जब सुबह सुबह धुंध छटती है तो किसी घर के बरामदे में बैठा बुजुर्ग या स्कूल की ओर बढ़ती कोई छोटी बच्ची, दोनों के हाथों में एक चीज समान मिलती है, एक खुली हुई किताब। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं हूँ प्रांजल।
4: अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति साक्षरता का मिजो शिखर, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। विश्व के या देश के अलग अलग हिस्सों को हम समझना चाहें, उन्हें जानना चाहें, तो करनी पड़ती है यात्राएं। और इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। और पर्यटन की यही मानवीय भूमिका हमें एक दूसरे महत्वपूर्ण दिवस की ओर ले जाती है, विश्व शांति दिवस। हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में इस

दिवस की घोषणा की थी और 2001 में इसे अहिंसा और युद्ध विराम के दिवस के रूप में निर्धारित किया। 2026 में विश्व शांति दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी डे, यानी शांति में निवेश हर व्यक्ति के लिए हर जगह हर दिन। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने विचार, कर्म, कला और जीवन से भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री नारायण गुरु, स्वाधीनता और राष्ट्र चेतना के पुरोधा दादा भाई नौरोजी और अमर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर एनी बेसेंट, महान दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और संगीत की दुनिया की दो महान स्वर साधिकाएं एम एस सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर, जिनके सुरों ने भारतीय संगीत को देश और दुनिया तक का विस्तार दिया। इन सभी महान विभूतियों के कृतित्व और व्यक्तित्व को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक आनंद वैद्य का शास्त्रीय गायन। अजमेर राजस्थान के निवासी आनंद वैद्य जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अजमेर की श्रीमती श्यामल नवरे जी और सांगली के पंडित A.R. पटवर्धन जी से प्राप्त की। तत्पश्चात किराना घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित अजय पोहनकर जी के मार्गदर्शन में आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय ख्याल गायकी की शिक्षा ग्रहण की। पिछले 30 से अधिक वर्षों से देश के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे आनंद वैद्य सुरमणि और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के युवा शास्त्रीय गायक पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। आनंद वैद्य जी अपने कार्यक्रम की शुरुआत राग गोरख कल्याण से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल के बोल हैं धन धन भाग जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं जा जा रे जा पथिकवा जो तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अकबर हुसैन और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं राजेंद्र बनर्जी।

अभी आपने सुना राग गोरख कल्याण। आनंद वैद्य अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग जोग। विलंबित ख्याल के बोल हैं पेहरवा को बिरमायो, जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं साजन मोरे घर आए, जो तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आपने सुना आनंद वैद्य का गाया राग जोग। इसके साथ ही आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन में बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृत

0: the need to further promote cultural exchanges, business linkages, and greater mobility between the two countries. A special cultural performance, Navarasa, the universe of shared emotions, was presented during the BRICS Leaders Summit Gala dinner hosted by the Prime Minister today at Bharat Mandapam in New Delhi. The cultural event featured the BRICS Symphony, One Rhythm, Many Cultures, bringing together musicians from BRICS members and partner countries in a unique collaborative musical performance. And in US Open tennis, defending champion Arina Sabalenka will take on Elena Rybakina in the women's singles final tonight. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हो चुके हैं। हमारी ये सभा यही विराम लेती है। कल प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।